ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की चौथी तिथि, तदनुसार 26 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 22 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने को हैं, कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि किसी प्रदर्शनकारी के विरुद्ध पहले से पुलिस रिपोर्ट दर्ज है तो उसे वापस लिया जाएगा। NEET UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजा के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
1: वहीं CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर

0: इसका सीधा प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक 2 चरणों में किया गया। इसके अंतर्गत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने 3 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मोल्दोवा और उत्तर मैसेडोनिया की किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली राजकीय यात्रा थी, जबकि रोमानिया की 3 दशक से अधिक समय बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली राजकीय यात्रा रही। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी कर 5वां जत्था सकुशल गंगटोक लौट आया है। यात्रा के सफल समापन पर सिक्किम पर्यटन विकास निगम ने कल गंगटोक में एक सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान यात्रियों ने अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा किए और पवित्र कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर झील की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है चिंतन।

जीवन में अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि ये जीवन का शाश्वत नियम है। आप जिस भी वस्तु पर अधिक ध्यान देते हैं वही चीज़ जीवन में सक्रिय हो जाती है। अगर सुख पर ध्यान केंद्रित करोगे तो जीवन में सुख में वृद्धि होगी, और दुख पर ध्यान केंद्रित करोगे तो जीवन में दुख ही दुख प्राप्त होंगे। जीवन में जिस वस्तु की हम उपेक्षा करने लगते हैं वही वस्तु धीरे धीरे अपने अस्तित्व को हमारे जीवन में खोना शुरू कर देती है। भले ही वो प्रेम हो, करुणा हो, जीवन का उल्लास हो अथवा सुख ही क्यों ना हो। जहाँ सकारात्मक सोच जीवन में सुख की जननी होती है, वहीं नकारात्मक सोच जीवन को दुख और विषाद से भी भर देती है। इसलिए अपने दृष्टिकोण को, अपनी सोच को सदैव सकारात्मक रखना चाहिए, ताकि दुख और विषाद जैसे काल्पनिक शत्रुओं का समूल नाश हो सके।

भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं और भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा से बड़ी कोई शक्ति नहीं। जब जीवन में चारों तरफ निराशा हो, तब ईश्वर की भक्ति ही मन को सच्चा सुकून और सही रास्ता दिखाती है।

संसार की सभी वस्तुएं केवल भ्रम देती हैं, जबकि प्रभु की भक्ति शाश्वत संतोष देती है। जैसे ही हृदय में ईश्वर का वास होता है, मन के सारे विकार अपने आप दूर हो जाते हैं।

ईश्वर की कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। जो भी होता है वो प्रभु की मर्जी से होता है। उनके चरणों में किया गया समर्पण ही जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है।

श्री राम के वनगमन पर अयोध्या वासियों का आर्तनाद सुना नहीं जाता। जब राजा दशरथ की मूर्छा दूर हुई तो उन्होंने मंत्री सुमंत्र को बुलाकर कहा, श्री राम वन जा रहे हैं किंतु अब भी मेरे प्राण शरीर नहीं छोड़ रहे। ना जाने किस सुख की आशा में ये अब भी इस शरीर में टिके हुए हैं। फिर कठिनाई के साथ मन में धीरज धारण कर उन्होंने सुमंत्र से अनुरोध किया कि वे दोनों सुकुमारों और सुकुमारी जानकी को रथ में बिठा वन दिखाकर 4 दिनों में वापस लौट आवे। यदि दृढ़ प्रतिज्ञ दोनों कुमार ना भी लौटें तो उनसे आग्रह करना कि वे सुकुमारी सीता को लौटा दें। यदि सीता वन देखकर डरें तो उनसे कहना कि सास ससुर का ऐसा संदेश है कि पुत्री तुम लौट आओ। यदि वो लौट आई तो मेरे प्राणों को थोड़ा सहारा मिल जाएगा। इतना कहकर राजा एक बार फिर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। राजा की आज्ञा के अनुसार सुमंत रथ लेकर श्री राम, सीता और लक्ष्मण के पास पहुंचे। हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर सिया समेत दोनों भाई रथ पर चढ़कर वन की ओर चले। व्याकुल अयोध्यावासी उनके रथ के पीछे दौड़े।

लगते चले। श्री राम उन्हें वापस चले जाने को कहते हैं तो वो लौटने लगते हैं, किंतु प्रेमवश फिर रथ के पीछे दौड़ने लगते हैं। राम के विरह में शोकाकुल अयोध्यावासी चित्रलेखित से हो चले हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। नीचे प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे मनोरंजन और जानकारियों का कार्यक्रम सुबह सुहानी। लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम शुभ प्याग में सुबह 7:40 पर, और प्रातः 8:30 का समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम गाने सुहाने का। सजी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम प्रसारित किया जाएगा सुबह 9:00। आज इस कार्यक्रम में जिस विषय पर बात होगी वो है डायलिसिस, जीवन की नई डोर। और इस विषय के संबंध में जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीतीश ठाकुर, और श्रोता उनसे जानकारी हासिल कर सकते हैं आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियो के टेलीफोन नंबर पर जो है 01892224391। गीतों का कारवां ये कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 10:00 और 10:30 का समय है लोकगीतों के कार्यक्रम पहाड़ों के सुर का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएगी सुबह 10:55 पर। तराने मन के ये कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 11:30 पर, और दोपहर 12:00 का समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम सैनिकों के लिए का। दोपहर 12:30 पर सुनिएगा बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा। प्रादेशिक समाचार आप सुना करते हैं आकाशवाणी के शिमला केंद्र से सुबह 9:20

0: सुबह 10:45 पर, दिन में 3 बजे, शाम 6 बजे और 7:45 पर। समाचार संध्या 8:45 पर, न्यूज़ एट 9 रात्रि 9 बजे, समाचार प्रभात 8 बजे और मॉर्निंग न्यूज 8:15 पर आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगे। विविध भारती के कार्यक्रम दिन में 1:10 पर आकाशवाणी मुंबई से रिले किए जाएंगे। भजन सुनिएगा शाम 5:10 पर और शाम 5:25 का समय है कार्यक्रम युवा मंच का, शामी गजल। इस कार्यक्रम में गजलों का लुत्फ उठाइए शाम 6:05 पर। और महिलाओं के लिए सजीव फोन इन कार्यक्रम मिंजरा प्रसारित किया जाएगा शाम 6:30 पर। खेती बाड़ी कार्यक्रम आप सुनेंगे सायं 7:10 पर और मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सबरस प्रसारित किया जाएगा रात्रि 8 बजे। कार्यक्रम हिमवीर्स आकाशवाणी शिमला से रिले किया जाएगा रात्रि 8:15 पर और 8:30 का समय है देशभक्ति गीतों का। एक ही कलाकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:15 पर और आज इस कार्यक्रम में निर्माता निर्देशक राजकुमार संतोषी की फिल्मों के गीत हम आपको सुनवाएंगे। रात 9:30 पर सुनिएगा गीतों की महफिल और रात्रि 10 बजे रविवासरीय संगीत सभा आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएगी। तो ये था कार्यक्रम विवरण, आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः स्वपदात् त्यागपत्रं दत्त्वा तत् प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने समर्पितवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे श्री प्रधानः अवदत् यत् गत 10 दिनेषु छात्राणां विरोध प्रदर्शनानन्तरं उत्पन्नया परिस्थित्या सः अत्यन्तं व्यथितः अभवत्। एतद् स्वस्य प्रतिष्ठायाः विषयः नास्तीति इत्यपि तेन उक्तम्। असौ नवदिल्ल्यां जन्तरमन्तरस्थले विद्यमानां स्थितिं समग्रदेशस्य परिस्थितिं चावलोक्य निर्णयम् अकरोत्। श्रीप्रधानः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः मार्गदर्शनाय, विश्वासाय, निरन्तरसहयोगाय च कृतज्ञतामपि प्रकटितवान्। असौ एतदपि उक्तवान् यत् राष्ट्रसेवा तस्य जीवनस्य सर्वोच्च प्राथमिकता अस्ति, सहैव जीवनपर्यन्तं तस्यै समर्पितः भविष्यतीति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः केन्द्रीय मंत्री परिषदः धर्मेन्द्र प्रधानस्य त्यागपत्रं तत्क्षण प्रभावेण स्वीकृतवती। धर्मेन्द्र प्रधानस्य त्यागपत्रानन्तरं केन्द्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी नूतन शिक्षा मंत्री भविष्यति। वर्तमान दायित्वेन सह शिक्षा मंत्रालयस्य दायित्वमपि तस्मै समर्पितम्।
2: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एंड आई विल विथ फुल स्ट्रेंथ आई विल ट्राई टू वर्क विथ ऑल ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्ट।
1: राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया, रोमानिया देशानाम् आधिकारिक यात्रां सम्पन्नं कृत्वा अद्य प्रातः नवदिल्लीं प्रत्यागतवती। अस्यां यात्रायाम् अनेकानि ऐतिहासिक सोपानानि स्थापितानि, तेषु कस्यापि भारतीय राष्ट्रपतेः मोल्दोवा उत्तर मैसेडोनिया देशयोः प्रथमा आधिकारिक यात्रा, सहैव 3 दशकानन्तरं रोमानिया देशस्य प्रथमा आधिकारिक यात्रा सम्मिलिता अस्ति। समग्र यात्रावधौ राष्ट्रपति पदासीना मुर्मुः विभिन्न देशानां राष्ट्राध्यक्षैः सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ताः अकरोत्। व्यापार मञ्चान् सम्बोधितवान्।

0: राष्ट्रपति तथा भारतीय प्रवासी समुदायस्य सदस्यैः सह संवादमपि अकरोत्। प्रशासनं श्वः लोकसभायां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकं 20-26 इति प्रस्तुतं करिष्यति। एतत् विधेयकं सोमवासरस्य लोकसभा कार्यसूचौ समाविष्टम्। एतेन सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमः 20-24 इत्येतस्मिन् संशोधनं भविष्यति। केन्द्रीय मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह एतत् विधेयकं लोकसभायां प्रस्तोष्यति। उल्लेखनीयमस्ति यत् गतशुक्रवासरे केन्द्रीय मंत्रिमण्डलेन प्रश्नपत्रस्य गोप्यता भंगे परीक्षासु च अनुचित साधन प्रयोग प्रकरणेषु द्रुत न्यायालयानां स्थापनाय दोषिषु च कठोरतर दण्डविधानं सुनिश्चेतुं प्रारूप विधेयकं अनुमोदितम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य पूर्वाह्ने 11 स्वीय मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे देशवासिभिः साकं विचार विनिमयं करिष्यति। मन की बात इति मासिक कार्यक्रमस्य इदं 37-100 संस्करणं भविता। अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः प्रसारयिष्यते। अयं कार्यक्रमः आकाशवाणी दूरदर्शनं प्रधानमंत्री कार्यालयः सूचना प्रसारण मंत्रालयः इत्येतेषां यूट्यूब वाहिनीष्वपि द्रष्टुं शक्यते इति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य सायं 4:30 दृश्य श्रव्य परांतरजालीय माध्यमेन 26,000 विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रमस्य सहभागिभिः सह संवादं साधयिष्यति। 20-20 पुरुष क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन 30-स्पर्धात्मक श्रृंखलायाः द्वितीय क्रीडायां जिम्बाब्वे दलं 90 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
1: नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है। वहीं सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय समय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री आज शाम 4:30 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक 2 चरणों में किया गया।

0: अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा किए और पवित्र कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर झील की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस वर्ष नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा के कुल 10 जत्थे भेजे जाने हैं। भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबलों में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप जीती है। फाइनल में अनाहत ने मिस्र की रुकैया सलेम को हराया। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने मिस्र के खिलाड़ियों के 16 साल के वर्चस्व को भी समाप्त कर दिया। अब उनकी नजर लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Sunil Verma. The CJP has withdrawn its agitation after the government agreed to its demands. Union ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh held a third round of discussions with the CJP delegation yesterday, focusing on its demands for reforms in the examination system and measures to prevent paper leaks. Addressing a joint press conference with CJP delegation in New Delhi, Mr. Nadda said that during the meeting, the government agreed to the demands of CJP that no action should be taken against the protesters and no FIRs should be filed against them.
2: जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। कंसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल, दैट विल बी गिवन टू देम।
1: On the 5-point charter given by the CJP for reforms in examinations, Mr. Nadda said that the government will deeply think about the charter and will do whatever is possible after holding deliberations with the CJP. Union Minister Prahlad Joshi will be the new Education Minister following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi has been assigned the charge of the Ministry of Education in addition to his existing portfolio. Mr. Joshi is currently serving as the Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution and New and Renewable Energy. President Draupadi Murmu has accepted the resignation of Dharmendra Pradhan from the Union Council of Ministers with immediate effects. The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha tomorrow. The bill is listed in the business of the House for Monday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. On Friday, Union Cabinet had approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure strict punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It'll be the 136th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It'll also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the Prime Minister's Office and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Prime Minister Modi will interact with participants of the Viksit Vibrant Village Program 2026 via video conferencing this evening. Over 400 youth participants representing every state and union territory will interact with the Prime Minister. The Viksit Vibrant Village Program 2026 was organized in two phases from 4th to 30th of last month, covering 74 vibrant villages across Ladakh, Himachal Pradesh and Uttarakhand. Kargil Vijay Divas is being observed today across the country to honour the bravery of Indian soldiers who sacrificed their lives during the Kargil War of 1999. The day marks

0: सुबह सुहानी।
1: श्रोताओ गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपकी सुबह को खूबसूरत बनाने लेकर आए हैं हम वो प्यारा सा एहसास जो आपको मिलता है कार्यक्रम सुबह सुहानी में। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ वंदना रैना। जी श्रोताओ, कभी आपने सोचा है कि जिंदगी कितनी ही अजीब है? सुबह उठो, भागो और फिर वही शाम की थकन। ऐसे में रविवार आता है हमारे जीवन में थोड़ा आराम देने के लिए। तो चलिए आज के इस भागदौड़ के समय में, आज इस रविवार में सब करते हैं थोड़ा धीमे, थोड़ा आहिस्ता और थोड़ा आराम से, और साथ ही रेडियो के पुराने और सुनहरे तार जोड़ते हैं आपके दिल से, क्योंकि वक्त बदलता है पर दिलों तक पहुंचने वाली आवाज़ कभी पुरानी नहीं होती। तो चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत, और ये गीत है आप सभी श्रोताओं के लिए।

जी श्रोता, इस खूबसूरत से गीत के बाद अब हम बात करते हैं आज के सुविचार की। जिंदगी अनमोल है, इसे निराशा में ना खोएं। सूरज कितना भी उजाला हो, वो हर अंधेरे को दूर कर देता है और हर सुबह एक नया उजाला लेकर आती है। उसी तरह किस्मत चाहे बदले ना बदले, लेकिन आपकी मेहनत, आपका हौसला हर वक्त को बदल सकता है। जी श्रोताओं, कितनी गहरी बात है ना ये, जो बीत गया उस पर रोए बिना आने वाले कल को बेहतर बनाने की जिद कीजिए, हौसला दिखाइए। और इस खूबसूरत के गीत के बाद एक खूबसूरत सा गीत अपने सभी श्रोताओं को हम सुनाते हैं, जो है पूरे जोश से भरा हुआ, उमंगों से भरा हुआ और सुकून से भरा हुआ।

पराया धन फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत श्रोता आपने सुना आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों का गाया हुआ। कार्यक्रम में अब बात करते हैं आज विशेष की। साल 1876 से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो आज ही के दिन इंडियन एसोसिएशन की कलकत्ता में स्थापना हुई थी और साल 1965 में आज ही के दिन मालदीप ब्रिटेन के कब्जे से आजाद हुआ। फ्रांस ने मुरुओरा द्वीप में परमाणु परीक्षण किया 26 जुलाई सन 1974 को और आज ही के दिन श्रीलंका ने क्रिकेट का एशिया कप जीता साल 1997 में। महान महिला एथलीट जैकी जाइनर कर्सी ने एथलेटिक्स से संन्यास लिया 26 जुलाई सन 1998 को और आज ही के दिन पाकिस्तान ने परमाणु शक्ति संपन्न क्रूज मिसाइल बाबर हत्फ 7 का सफल परीक्षण किया साल 2007 में। आज ही के दिन वर्ष 1844 में प्रमुख शिक्षाविद गुरुदास बनर्जी का जन्म हुआ और यूरोपीय वैज्ञानिकों ने सौरमंडल के बाहर एक और नए ग्रह की खोज की साल 2008 में। वर्ष 2009 में विजय दिवस की

वर्षगांठ पर भारत ने अपनी पहली न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत को लॉन्च किया और महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर, जो कि लिटिल मास्टर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, उनका जन्म हुआ 26 जुलाई सन 1950 को।

कार्यक्रम सुबह सुहानी, श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। श्रोताओं, 26 जुलाई का दिन हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरव का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन साल 1999 में भारतीय सेना ने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए पाकिस्तान को कारगिल की लड़ाई में हराया था। और ये युद्ध करीब 84 दिन तक चला था और देश की रक्षा के लिए हमारे 545 वीर सैनिक शहीद हुए थे। कारगिल युद्ध लद्दाख के द्रास और कारगिल सेक्टर की ऊंची पहाड़ियों पर लड़ा गया और भारतीय सैनिकों ने दुर्गम पहाड़ियों और शून्य से नीचे के तापमान में टाइगर हिल जैसी मुख्य चौकियों पर तिरंगा फहराया था। और 26 जुलाई के दिन यानी कि आज के दिन मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। शहीद सैनिकों की स्मृति में कारगिल युद्ध स्मारक की स्थापना की गई और स्मारक के बाईं तरफ कारगिल समर में वीरगति को प्राप्त सैनिकों के नाम और विवरण के शिलालेख हैं और विजय पथ के दोनों तरफ उन नायकों की प्रतिमाएं हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपना पराक्रम दिखाया था। कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन यानी कि कारगिल विजय दिवस के दिन देश के वीर जवानों के साहस, शौर्य और उनके सर्वोच्च बलिदान को याद कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाती है।

श्रोताओ, कार्यक्रम सुबह सुहानी सुनने के लिए आपने ट्यून किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज़। और कार्यक्रम में आप बात करते हैं मैनग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में, जो कि हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। इसे यूनेस्को द्वारा साल 2015 में मान्यता दी गई थी और इस दिन को मनाने का उद्देश्य चक्रवात, तूफान और तटीय कटाव से बचाव करना, साथ ही भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखना, मछलियों और अन्य जीवों को आश्रय देना और साथ ही मैनग्रोव वनों के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। हमारे देश

0: में, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन और तमिलनाडु में पिचावरम प्रमुख मैनग्रोव क्षेत्र हैं।
1: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
2: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
1: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ।
2: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
1: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
2: जल्दी विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
0: और श्रोता, कार्यक्रम में अब हम आपको जानकारी दे रहे हैं आज के मुख्य समाचारों की। नीट पेपर लीक विवादों के बीच धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कैबिनेट मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर अपना 36 दिनों से चल रहा विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया है। इसके साथ ही पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए सरकार संसद में एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पेश करेगी, जिसके तहत हर राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यूरोप के 3 देशों की ऐतिहासिक यात्रा के बाद आज भारत वापस लौट आई हैं। और भारत की अनाहत सिंह जूनियर स्क्वैश विश्व चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी हैं।

और मानसून की भारी बारिश से बढ़ती आफत के कारण लाहौल स्पीति चंबा सीमा पर हुआ भीषण सड़क हादसा और इसके साथ ही मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है भारी बारिश का और पर्यटकों को और स्थानीय लोगों को सलाह दी है कि वो नदी नालों के करीब बिल्कुल ना जाएं। इसके साथ ही लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण राज्य में 121 से अधिक सड़कें यातायात के लिए बंद हो गई हैं और कई इलाकों में बिजली के ट्रांसफार्मर भी ठप हैं। 27 और 28 जुलाई को अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके साथ ही श्रोताओं, आज से सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला शुरू हो रहा है जो 2 अगस्त तक पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और इस 8 दिवसीय मेले का शुभारंभ करेंगे हमारे राज्यपाल श्री कविंद्र गुप्ता। और इसी के साथ अपनी 25 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षक संघ और प्रदेश सरकार के बीच में टकराव बढ़ गया है जिसके तहत शिमला में राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। और कारगिल युद्ध की पुण्यतिथि के अवसर पर मंडी में शहीद वीर जवानों की स्मृति में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया और वीर परिवारों को सम्मानित भी किया गया। तो श्रोताओं, आज के सुबह सुहानी कार्यक्रम में बस इतना ही। चलते चलते आप सभी श्रोताओं का मनोरंजन करते हैं इस गीत के साथ।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ रिले की जाएंगी।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के,
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
4: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार के साथ सहमति के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार का लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा। प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला टीम ने रजत पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
6: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
5: नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
6: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
5: वहीं CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय समय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आंदोलनकारियों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
7: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और

0: सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। श्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वो नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।
1: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति में वो व्यथित थे। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इस कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक 2 चरणों में किया गया। इसके तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन देशव्यापी ऑनलाइन क्विज के माध्यम से किया गया, जिसमें 3 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने स्थानीय समुदायों के साथ रहकर स्वच्छता अभियान, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता अभियान, युवा सम्मेलन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वृक्षारोपण, मिनी मॉडल पंचायत जैसी गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने स्थानीय कारीगरों से संवाद किया और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थानों का भी दौरा किया। इस पहल के माध्यम से युवाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को निकट से जानने का अवसर मिला। नितिका के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 1999 के करगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्य कार्यक्रम लद्दाख के द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक में आयोजित किया जा रहा है।
3: द्रास में आज 27वें करगिल विजय दिवस

0: के मौके पर मुख्य समारोह कारगिल वॉर मेमोरियल में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होंगे और केनोपात पर पुष्प चक्र अर्पित कर कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री वर्चुअल वॉक थ्रू पोर्टल का उद्घाटन करेंगे, वीर भूमि और हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस का दौरा करेंगे और शौर्य विजय यात्रा मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। कारगिल विजय दिवस का ये मौका भारत के बहादुर फौजी जवानों के हौसले, कुर्बानी और मुल्क की हिफाजत के लिए उनकी अटल वफादारी को याद करने का एक गौरवमय और जज्बाती मौका है। आकाशवाणी समाचार के लिए द्रास से मैं इनायत अली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि 1999 में करगिल की दुर्गम चोटियों पर असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वाले वीर सैनिकों के प्रति राष्ट्र सदा कृतज्ञ रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने भी करगिल युद्ध में बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी में करगिल युद्ध के वीर योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह के साथ विशेष वार्ता प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 12:30 बजे आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में कल तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज बारिश की संभावना है। और अब बात खेलों की करते हैं। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल में अनाहत ने मिस्र की रुकैया सलीम को हराया। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने मिस्र के खिलाड़ियों के 16 साल के वर्चस्व को भी समाप्त कर दिया। वहीं भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद फरहत। जंतर मंतर पर करीब एक महीने से चल रहे प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर कई अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है, प्रधान का इस्तीफा, प्रदर्शन खत्म, सरकार ने CJPay के सभी 3 मांगे मानी। दैनिक जागरण लिखता है, आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद CJPay ने प्रदर्शनकारियों से घर लौटने की अपील की। पत्र ने एक विशेष आलेख प्रकाशित किया है, परीक्षा सुधार पर भी CJPay ने सरकार को सौंपा चार्टर। पेपर लीक मामलों की जाँच 2 महीने में होगी पूरी। वही नव भारत टाइम्स लिखता है, बंद मेट्रो स्टेशनों के दरवाजे खुले, इंटरनेट सर्विस भी शुरू। सारनाथ को विश्व धरोहर का दर्जा, उत्तर प्रदेश को मिला 4th स्थान, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया गौरव का दिन, कई अखबारों की सुर्खी है। चौथे साल टैक्स भरने में कंपनियों से आगे आम करदाता, डायरेक्ट टैक्स का बदलता ट्रेंड, कंपनियों को मिलता है 28%, आम करदाताओं को 6% तक रिफंड, दैनिक भास्कर में है। वहीं हिंदुस्तान ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर करगिल विजय दिवस को याद किया है। शीर्षक दिया है, ऑपरेशन विजय के सबक हमारे बहुत काम आए। पत्र लिखता है, करगिल युद्ध 12,000 से 18,000 फुट ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर लड़ा गया था। उस युद्ध में हमने अपने कई जाबाजों को खोया था। ऑपरेशन सिंदूर का विश्लेषण करने के बाद एक बात साफ हो जाती है, अगर करगिल युद्ध के समय हमारे पास आज जैसे उन्नत हथियार होते तो हमें सैनिकों और साजो सामान का नुकसान

0: सिर्फ विक्टोरियस स्टाइल कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम अब हर सफर बनाएगी और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ। इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हर ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। नियम एवं शर्त लागू।
1: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
2: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
3: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
4: गाने सुहाने, ये कार्यक्रम श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, अरिजीत सिंह का गाया हुआ फिल्म क्रिएचर 3D से।

0: सिर्फ
1: स्टेप इनटू द वर्ल्ड ऑफ नेक्सा अपग्रेड विद एक्सक्लूसिव ऑफर्स अक्रॉस द नेक्सा रेंज
2: दिस मॉनसून सीजन मेक एवरी ड्राइव फील स्मूदर एंड एवरी जर्नी स्पेशल
1: प्रेजेंटिंग द बोल्ड बलिनो द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टाइल टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी
2: इक्विप्ड विद फीचर्स लाइक अ 360 डिग्री कैमरा हेड्स अप डिस्प्ले एंड अ सेफ्टी थ्रू 6 एयरबैग्स
1: एंड नाउ इट्स योर्स एट एन इफेक्टिव प्राइस ऑफ जस्ट ₹5.59 lakh यस ₹5.59 lakh वैलिड टिल 31st जुलाई ओनली
2: डोंट मिस आउट विजिट योर नियरेस्ट नेक्सा शोरूम एंड ब्रिंग होम द बोल्ड बलिनो टुडे TNC apply
3: Nexa
0: सिर्फ उन
4: कम समय में ज्यादा मुनाफा बस एक क्लिक में कमाल है
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए RBI कहता है
6: जानकार बनिए सतर्क रहिए
7: श्रोता लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत और ये खूबसूरत सा गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म वीर से आवाजें हैं रूप कुमार राठौर और श्रेया घोषाल की

0: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
1: सीमा, सुना है तुम? सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी? सब ठीक है ना?
2: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
3: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
4: श्रोताओ, अब हम आपको याद दिला दें कि आज सुबह 9 बजे से 10 बजे तक प्रसारित होगा स्वास्थ्य संबंधी सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम। और आज इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय रहेगा डायलिसिस, जीवन की नई डोर। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीतीश ठाकुर। श्रोता भी उनसे जानकारी हासिल कर सकते हैं और अपने प्रश्न, अपनी कोई समस्या है तो उसे पूछ सकते हैं। उसके लिए हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर रहेगा 01892224391। फ़ोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 01892224391। तो आज सुबह सुनना ना भूलिए कार्यक्रम आरोग्यम। और हमारा ये कार्यक्रम आप मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। गाने सुहाने, ये कार्य

कार्यक्रम श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत जो हमने लिया है फिल्म जय हो से। गायक कलाकार हैं शान, श्रेया घोषाल और शवाब साबरी। बोल लिखे हैं समीर ने, धुन बनाई है साजिद वाजिद ने।

और श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए सोनू निगम और श्रेया घोषाल को फिल्म कृष में। गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार राजेश रोशन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने सुहाने। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 9 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है स्वास्थ्य संबंधी सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम। आज कार्यक्रम आरोग्यम में हम बात करेंगे डायलिसिस जीवन की डोर इस विषय पर। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीतीश ठाकुर। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम आरोग्यम।

0: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम आरोग्यम में मैं हूं वंदना रैना और इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं सेहत है तो सब कुछ है, लेकिन कई बार हम अपने शरीर के छोटे छोटे संकेतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। थकान, पैरों में सूजन, बार बार कमजोरी आना, और जब तक हमें सच का पता चलता है तब तक हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग यानी कि हमारी किडनी काफ़ी हद तक प्रभावित हो चुकी होती है। और आज कार्यक्रम आरोग्य में हम बात करेंगे एक ऐसे शब्द की जिसे सुनकर लोग अक्सर घबरा जाते हैं। वो शब्द है डायलिसिस। क्या डायलिसिस का अर्थ जिंदगी का रुक जाना है? क्या डायलिसिस कराने वाला व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है? क्या इसे टाला जा सकता है? और अगर डायलिसिस की सलाह डॉक्टर ने दे दी है तो हमें क्या करना चाहिए? इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट यानी कि किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीतीश ठाकुर। तो डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू
0: जी। और सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि किडनी आखिर हमारे शरीर के कौन कौन से महत्वपूर्ण काम करती है।
1: सबसे पहले मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, आपने मुझे बुलाया है यहाँ पर
0: जी।
1: और मुझे उम्मीद है कि सेशन से जो किडनी रिलेटेड जो क्वेरीज हैं लोगों की और जो भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं स्पेशली डायलिसिस को लेके, उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी लोगों को। तो किडनीज एक बहुत ही छुपा हुआ ऑर्गन है, ना दिखता है ना पता चलता है कि वो काम क्या करता है। एग्जैक्टली जैसे आपने पूछा कि काम क्या करता है, लोगों को लगता है कि किडनी का काम सिर्फ यूरिन बनाने का है, लेकिन ऐसा नहीं है। किडनी के बहुत सारे काम हैं, उसमें यूरिन बनाना एक काम है। उसके अलावा किडनी जो है वो ब्लड बनाती है। किडनी में जो हार्मोन रिलीज़ करती है जिससे हमारा ब्लड बनता है। किडनी बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम, फॉस्फोरस जो हमारी हड्डियों के जो एक मिनरल्स हैं उनका जो बैलेंस मेंटेन करना है उसके लिए किडनी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। किडनी हमारे बॉडी में जितने भी इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं जैसे प्रोटीन हो गया, हॉर्मोन्स हो गए, उनको ब्रेक डाउन करके वापस से रीअब्सॉर्ब करके हमारे शरीर में वापस से वो पहुंचाना, ये भी किडनी ही करती है
0: जी। और डॉक्टर साहब, अब यहाँ पे आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से शुरुआती संकेत हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि हमारी किडनी जो है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रही है।
1: तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन जब किडनी फेल होना शुरू होती है
0: जी।

0: जो आपने लक्षण बताए, अगर किसी भी पेशेंट को, किसी भी व्यक्ति को पता चलते हैं तो उसे तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए।
1: बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि हमें सिम्टम्स आने का वेट नहीं करना चाहिए,
0: अच्छा
1: क्योंकि अगर हम किडनी को पहली या दूसरी स्टेज में पकड़ लें, किडनी जिसमें
0: जी
1: सिम्टम नहीं आता है,
0: जी
1: तो उस स्टेज में हम थ्रू मेडिसिंस, थ्रू
0: जी
1: लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन उस स्टेज को वहीं रोक सकते हैं या उसको स्लो कर सकते हैं,
0: जी
1: किडनी का प्रोग्रेशन जो है।
0: जी लेकिन डॉक्टर साहब बात वही है ना कि जर्नल एक आम धारणा होती है, जब तक हम अच्छी तरह से बीमार नहीं पड़ते हैं,
1: डेफिनेटली
0: छोटे से जो कारण हमें दिखते हैं या सिम्टम्स हमें दिखते हैं, हम घर पे ही उनका इलाज कर लेते हैं, और
1: डेफिनेटली
0: जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में हमें सिम्टम्स दिखना शुरू होते हैं तो तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आप क्या सुझाव देंगे हमारे सुनने वालों को कि कब उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
1: यदि पेशेंट एकदम स्वस्थ है,
0: जी
1: अगर डायबिटीज़ नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, या
0: जी
1: कोई बीमारी नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं लेते हैं, तो भी साल में एटलीस्ट एक बार किडनी रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं वो करवाने चाहिए, क्योंकि किडनी जो डिज़ीज़ है वो यंग्स में भी होती है, वो ओल्ड पॉपुलेशन में भी होती है। तो एटलीस्ट साल में एक बार यूरिन यूरिन प्रोटीन की जांच करवाना
0: जी
1: और किडनी का जो क्रिएटिनिन लेवल्स है वो चेक करवाना, वो करवाना ही चाहिए, हर मरीज, हर इंसान को करवाना चाहिए। और अगर पेशेंट को बीमारी है जैसे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, ऐसे में हर 3 महीने में या हर 6 महीने में किडनी की जांच ज़रूर होनी चाहिए।
0: जी जी अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बात की हाइपरटेंशन की, हाई ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह की, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इनका क्या रोल है, ये किडनी के कितने बड़े दुश्मन हैं?
1: आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में
0: जी
1: जो किडनी के मरीज़ हैं
0: जी
1: उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का ही है।
0: जी
1: उसका मेन कारण भी यही है कि जो एक तो डायबिटीज़ जो है उसको अच्छे से मैनेज नहीं किया जाता है, दूसरा जो है पेशेंट से अपनी शुगर चेक कराता है, किडनी की जांच करवाते, सालों तक किडनी की जांच नहीं करवाते,
0: जी
1: और जब वो करवाना शुरू करते हैं, जब पेशाब में झाग आना या सूजन आनी शुरू होती है, तब वो जांच कराना शुरू करते हैं, तब तक किडनी की स्टेज जो है प्रोग्रेस कर चुकी होती है।
0: जी डॉक्टर साहब एक श्रोता लाइन पर हैं तो उनसे बात कर लेते हैं। हेलो
2: नमस्कार
0: नमस्कार।
2: मैडम,
0: जी
2: नमस्कार
0: नमस्कार
2: मैडम,
0: जी, कार्यक्रम आरोग्यम है और अपना नाम बताइए।
2: मेरा नाम संजय है जी।
0: जी डॉक्टर नीतीश ठाकुर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, बताइए क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे।
2: अच्छा डॉक्टर साहब नमस्कार जी।
1: नमस्कार।
2: हाँ डॉक्टर साहब, मैं एक शुगर का मरीज हूँ।
1: हाँ जी।
2: और अमोनिया प्रॉब्लम आती है मेरे को, मतलब मेरा खून जो है कम होता है।
1: ठीक है, अनीमिया होता है आपको? हाँ जी।
2: हाँ जी, तो मेरा ब्लड जो है 7 ग्राम आ जाता है,
1: ठीक है
2: फिर वो आयरन वगैरह से बढ़ाते हैं थोड़ा सा,
1: ठीक है
2: पर मेरे पाँव में सोजस आ जाती है।
1: ठीक है,
2: पाँव में जो है ना सोजस आ जाती है मेरे पाँव में, ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कारण हो सकता है? ये किडनी का कारण तो नहीं हो सकता?
1: बिल्कुल। एक तो जो आपने बताया खून की कमी होना, खून
2: हाँ
1: की
2: जी
1: कमी होना के बहुत से कारण होते हैं, उसमें एक कारण डेफिनेटली किडनी तो होता ही है, उसके अलावा कई
2: अच्छा,
1: बार आंत के रास्ते बहुत ब्लीडिंग होती है पेशेंट्स को, जो उनको पता नहीं चलता
2: मैं
1: है।
2: ब्लाइंड हूँ।
1: अच्छा,
2: हाँ
1: ओके।
2: जी
1: तो चलो, तो उसमें अगर ब्लीडिंग हो तो उसकी जांच होती है बेसिकली कि आपके स्टूल में कहीं ब्लड का लीकेज तो नहीं हो रहा है, तो पहले तो
2: अच्छा
1: वो रूल
2: जी
1: आउट करते हैं हम। दूसरा, आपने
2: अच्छा,
1: बताया कि आपको आयरन चढ़ाना पड़ता है, यानी आयरन की कमी जो है वो
2: हाँ
1: भी,
2: गोली देते हैं।
1: हाँ, तो आयरन की कमी की वजह से भी खून कम हो जाता है, पैरों में
2: हाँ
1: सूजन जो है, और क्योंकि आप डायबिटिक भी हैं तो
2: जी
1: अनीमिया और साथ में पैरों की सूजन, मेरा पहला इंस्टिंक्ट तो यही होगा कि शायद आपको किडनी रोग ना हो, पहले मैं आपकी किडनी की जांचें ही करवाऊंगा, उसके बाद मैं
2: अच्छा
1: बाकी
2: जी
1: चीज़ें देखूंगा, अगर किडनी सही काम कर रही है फिर मैं बाकी आंतों को देखना देखना है, लीवर को देखना है या हार्ट को देखना है,
2: अच्छा,
1: जिसकी वजह से पैरों में सूजन आ सकती है।
2: क्योंकि मैंने धर्मशाला में ना MD सुगंधी मैडम है, तो उन्होंने मेरे को जो है B12 के 18 टीके लगाने के लिए बोला हुआ है,
1: ठीक है,
2: और साथ में उन्होंने मेरे को आयरन की रोज की एक गोली खाने को बोला है।
1: ठीक
2: टेस्ट
1: है।
2: उन्होंने सभी लिए, मेरे किडनी का भी लिया था, हार्ट का भी लिया था, हार्ट प्रॉब्लम भी है मेरे को,
1: जी
2: ब्लड प्रेशर भी है, तो
1: जी
2: ये सारे ले थे। अब लीवर के तो नहीं इसमें फंक्शन कोई होगा सर?
1: लीवर भी एक कारण होता है जिसकी वजह से पैरों में सूजन आती है,
2: हाँ
1: तो
2: जी
1: मेरा वही कहने का मतलब है कि क्यों आ रही है, पहले तो हम ये देखेंगे कि लीवर है, किडनी है, हार्ट है, या प्रोटीन की ही कमी है शरीर में।

0: उसकी वजह से भी पैरों में सूजन आती है। तो पहले कारण देखा जाता है, उसके बाद ही उसका इलाज किया जाता है।
1: हाँ, तो कारण तो यही कर रहे हैं, विटामिन B12
2: जी जी
1: और आयरन।
2: आपको जो डॉक्टर ने सजेस्ट किए हैं ना, विटामिन B12 के, आयरन के, जो भी, पहले उस कोर्स को पूरा कर लीजिए, फिर देखिए फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है ना, उसके बाद
1: अच्छा
2: फिर आप
1: अच्छा
2: डॉक्टर साहब को फिर से संपर्क कर सकते हैं।
1: ठीक है मैम,
2: जी, कार्यक्रम
1: ठीक
2: में
1: है,
2: कॉल करने के
1: थैंक
2: लिए
1: यू।
2: धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं किडनी के रोग के बारे में, तो अब आते हैं जो हमारा आज का मेन विषय है
0: जी
2: कि आखिर डायलिसिस होता क्या है और इसकी ज़रूरत कब पड़ती है। इसके बारे में आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन एक और श्रोता लाइन पर आ चुके हैं।
0: जी
2: हेलो,
1: हेलो बंदना जी, नमस्कार।
2: नमस्कार राणा जी, अपना प्रश्न पूछिए डॉक्टर साहब से।
1: डॉक्टर नमस्कार। डॉक्टर
0: नमस्कार जी।
1: साहब, मेरा छोटा सा प्रश्न है कि
0: जी
1: देखिए, हमारे शरीर में दो गुर्दे होते हैं, किडनी जिसको बोलते
0: हाँ
1: हैं,
0: जी।
1: क्या दोनों एकदम खराब हो जाती हैं या एक खराब हो जाती है? अगर एक खराब हो जाती है तो दूसरी के ऊपर इंसान जो है वो जीवन यापन कर सकता है?
0: ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। तो डेफिनेटली जब पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, किडनी की रिपोर्ट थोड़ी ख़राब होती है, तो उनका पहला सवाल यही होता है कि क्या दोनों किडनीज ख़राब हैं या एक ही ख़राब है। यदि किसी इंसान की सिर्फ एक किडनी ख़राब है, तो दूसरी किडनी एकदम नॉर्मल है, तो वो पूरा जीवन बिना दवाई के आराम से व्यतीत कर सकता है, क्योंकि एक किडनी भी बहुत होती है आपका पूरा किडनी का जो फंक्शन है उसको कंप्लीट करने के लिए। जब दोनों किडनीज, जब वो किडनी भी इन्वॉल्व हो जाती है किसी बीमारी की वजह से या किसी दवाई की वजह से, तभी किडनी की प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। तो इसका, आपके सवाल का जो जवाब यही है कि एक किडनी पे भी इंसान जो है वो पूरा जीवन बहुत आराम से निकाल सकता है, और दोनों किडनी ख़राब होने पे ही किडनी की रिपोर्टें ख़राब होती हैं, एक किडनी ख़राब होने पे
1: ठीक
0: नहीं
1: है जी,
0: होती।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। अक्सर
0: जी
1: आगे आपका कार्यक्रम सुनते रहेंगे, आप बहुत कुछ बताएंगे।
2: जी जी राणा
1: धन्यवाद।
2: जी, आपका भी प्रश्न पूछने के लिए धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, आप बता रहे हैं डायलिसिस के बारे में।
0: जी, तो डायलिसिस क्या है बेसिकली? जब हमारी किडनीज काम करना जब बिल्कुल ही बंद कर देती हैं, बिल्कुल ही बंद कर देने का मेरा मतलब है किडनी का एक फिल्ट्रेशन रेट होता है, जैसे 100 ml/min, यानी 1 मिनट में 100 ml ब्लड वो फिल्टर करती है।
2: जी
0: जब वो रेट घटते घटते घटते 10 ml से भी नीचे चला जाता है, तो हम मान के चलते हैं किडनी का फंक्शन जो है वो शरीर को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में पेशेंट्स को जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वेट लॉस हो जाना, सूजन आ जाना, सांस फूल जाना, लंग्स में पानी भर जाना, ये बहुत फ्रीक्वेंट होने स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में हम डायलिसिस के लिए एडवाइस करते हैं। डायलिसिस बेसिकली एक आर्टिफिशियल वे है जो किडनी के काम को मिमिक करता है, जैसे
2: जी
0: किडनी फिल्टर करती है, खून की सफाई करती है, वैसे ही डायलिसिस एक मशीन है, मशीन में एक फ़िल्टर लगा होता है जो हमारे ब्लड को क्लीन करता है और वापस हमारे बॉडी के अंदर उस साफ खून को अंदर डालता है, ताकि जो पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं उससे उनको रिलीफ मिलता
2: जी और डॉक्टर साहब, एक और कॉलर लाइन पर आ चुके हैं,
0: है। जी
2: तो उनसे बात कर लेते हैं। हेलो
3: हेलो,
2: जी, नमस्कार, अपना नाम बता दीजिए।
3: मैं शिवेन बोल रहा हूँ।
2: जी क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से?
3: मैं पूछना चाहूंगा कि वेदर चेंज होते ही कोल्ड और कफ हो जाता है, हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें ताकि बार बार बीमार ना पड़े?
2: जी आपका ये प्रश्न जो है वो विषय से संबंधित नहीं है। आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं किडनी रोग, उसके विषय के बारे में और साथ ही डायलिसिस के बारे में। तो डॉक्टर साहब, अब डायलिसिस का जब भी हम नाम सुनते हैं तो एकदम से जो मरीज़ हैं वो घबरा जाते हैं, तो
0: जी
2: हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या वाकई जब डायलिसिस करवाते हैं तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है?
0: नहीं जी, ऐसा पहली बात तो कि मरीज़ घबरा जाते हैं,
2: जी
0: उसका एक रीज़न है। एक तो लोगों के अंदर एक ये धारणा है कि जब हम डायलिसिस पे पेशेंट चला गया तो उसका जीवन ख़त्म हो गया, जबकि
2: जी
0: ऐसा नहीं है, उसका जीवन शुरू हो रहा है। हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, हमें बीमारी से लड़ना होता है, हमें इलाज से नहीं लड़ना होता।
2: जी
0: गलती यहाँ होती है कि जो मरीज़ हैं वो इलाज से लड़ रहे हैं, डायलिसिस नहीं कराना है,
2: जी
0: डिले कर रहे हैं उस चीज़ों
2: जी
0: को,
2: जी
0: जबकि डायलिसिस बहुत अच्छी एक पद्धति है जिससे पेशेंट की लाइफ बढ़ती है।
2: जी
0: यदि समय पर डायलिसिस शुरू किया जाए, जब डॉक्टर ने बोला आपने उसी समय शुरू कर लिया, तो उसका जीवन जो है 10 साल 15 साल बहुत आराम से बढ़ जाता है।
2: जी
0: लेकिन क्योंकि पेशेंट्स डायलिसिस से इतनी ज़्यादा उनको रिलक्टेंस है कि नहीं करवाते हैं, वो
2: जी भ्रांतियाँ काफ़ी हैं
0: बहुत
2: डायलिसिस
0: भ्रांतियाँ
2: के
0: हैं,
2: लिए।
0: और तो वो 1 साल 2 साल डिले करके फिर डायलिसिस पे आते हैं।
2: जी
0: तो 1-2 साल जो किडनी 10% से नीचे काम कर रही थी, उसकी वजह से जो बॉडी के अंदर जो नुकसान हो रहा है
2: जी
0: वो परमानेंट होता है,
2: जी
0: डायलिसिस उसको ठीक नहीं कर पाएगी। तो फिर जब पेशेंट डायलिसिस पर जाता है तो

0: उनको लगता है कि हम डायलिसिस से पहले तो ठीक थे, डायलिसिस से हमारा जीवन जो है वो क्षीण होता जा रहा
1: जी
0: है, जो कि एक भ्रांति है।
1: जी और एक और श्रोता लाइन पर हैं। हेलो
2: हेलो।
1: जी, नमस्कार जी, अपना नाम बताएं।
2: हाँ जी, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
1: जी, जांगड़ी जी, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से?
2: ये जो किडनी की समस्या है, ये आमतौर पे केवल नशीली चीजों के सेवन से ज्यादा होता है या फिर जो सामान्य दिनचर्या में सामान्य ढंग से जीवन जीने वाले व्यक्ति को भी हो सकता है?
0: बिल्कुल सही सवाल है आपका। सामान्य जीवन में सामान्य व्यक्ति को भी किडनी रोग हो सकता है। उसमें बेसिकली जेनेटिक कॉजेज़ ज़्यादा कॉमन होते हैं, जो आंशिक बीमारियां होती हैं कि आपको अपने फादर से मिली है या मदर से मिली है, आपको कोई बीमारी नहीं है बट फिर भी आप किडनी रोग ग्रसित हो सकते हैं। दूसरा एक कारण और भी होता है, नशीली दवाइयां तो चलो एक कारण है ही, बट क्या होता है जैसे पैरों में दर्द हो रहा है, घुटने दर्द हो रहे हैं, कंधा दर्द हो रहा है, तो हम जाके एक पेन किलर खा लेते हैं, और बार बार जब हम पेन किलर्स खाते रहते हैं तो वो पेन किलर्स भी हैं जो मेडिसिन्स हैं वो भी हमारी किडनी को नुकसान पहुँचाती है। तो बिना डॉक्टर की सलाह के जो हम केमिस्ट से मेडिसिन्स ले लेते हैं, एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, पेन किलर्स ले लेते हैं, ये भी हमारी किडनी को नुकसान पहुंचाती है।
2: जी
0: जी
1: जी और कुछ
2: धन्यवाद।
1: पूछेंगे जांगड़े साहब?
2: जी नहीं, धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद कार्यक्रम में आपका भी। और डॉक्टर साहब, बात आपने की जेनेटिक की,
0: हाँ जी,
1: तो क्या ये किडनी की जो बीमारी है वो सिर्फ जीन से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रेवल करती है?
0: वो भी एक किडनी होने का कारण है।
1: कारण है जी।
0: मेजर कॉज जो हमारा किडनी डिजीज़ का, एटलीस्ट जो अब तक इंडिया में और वर्ल्ड में है, वो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है। उसके बाद फिर जो ये पेन किलर्स, ओवर द काउंटर
1: जी
0: मेडिकेशन
1: जी
0: जिसको हम बोलते हैं,
1: जी
0: जिसका क्रॉनिक सेवन होता है, उसकी वजह से किडनी डैमेज होती है।
1: जी
0: तीसरा फिर इसमें आंशिक भी आता है, जिसमें पोलिसिस्टिक किडनी डिजीज़ हो गई या और भी बीमारियां हैं जो
1: जी
0: हमें थ्रू जेनेटिक्स हमें मिलती
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: जिसकी वजह से किडनी जो एक समय के बाद ख़राब होना शुरू हो जाती है।
1: तो आप हमारे श्रोताओं को क्या कहेंगे कि सेल्फ मेडिकेशन घातक है?
0: डेफिनेटली डेफिनेटली
1: जी
0: ओवर द काउंटर मेडिकेशन कभी भी नहीं करना चाहिए किसी भी
1: जी
0: मरीज़ को।
1: जी जी जी और डॉक्टर साहब, जब कोई पेशेंट है जिसको आपने सजेस्ट किया है कि उसे डायलिसिस करवाना है, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि सप्ताह में, एक हफ्ते में ये कितनी बार किया जाता है और इस पूरी प्रक्रिया में, डायलिसिस में कितना समय लगता है?
0: एक आम डायलिसिस जो है, जो नॉर्मल डायलिसिस है, उसका एक सेशन जो है वो 4 घंटे का होता है।
1: जी
0: हफ्ते में कितनी बार करना चाहिए, जो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं उसमें ये पाया गया है कि हफ्ते में जो 3 बार डायलिसिस करवाते हैं
1: जी
0: उनका जीवन हफ्ते में जो 2 बार करवाते हैं उनसे बेटर है।
1: जी
0: हार्ट की प्रॉब्लम्स कम होती हैं, मोर्टेलिटी रेट कम होते हैं,
1: जी
0: तो कायदे से तो हफ्ते में 3 बार डायलिसिस सबसे अच्छा विकल्प है अगर आप डायलिसिस करवा रहे हैं तो।
1: जी जी जी और डॉक्टर साहब, अब आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि सुबह के 9:18 होने को हैं और थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। तो मिलते हैं सुबह 9:30 पर आपसे भी और अपने श्रोताओं से भी।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें हिम परिवार।

0: से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। सरकार कल लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 करेगी पेश। कारगिल विजय दिवस पर आज देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को राष्ट्र कर रहा नमन। चंबा का 8 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला आज से शुरू। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता करेंगे मेले का विधिवत शुभारंभ। और प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी। मौसम विभाग ने 28 जुलाई से मॉनसून के रफ्तार पकड़ने की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 136वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी व दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। सरकार कल लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने और कदाचार पर कड़ी सजा सुनिश्चित करने संबंधी विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनका मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित।
2: कारगिल विजय दिवस आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 1999 के कारगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफल और कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। इस अभियान के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले में उन क्षेत्रों को वापस हासिल किया था जिन पर पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने घुसपैठ की थी। मुख्य कार्यक्रम लद्दाख के द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि 1999 में कारगिल की दुर्गम चोटियों पर असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वाले वीर सैनिकों के प्रति राष्ट्र सदा कृतज्ञ रहेगा। चंबा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला आज से शुरू हो रहा है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता इस 8 दिवसीय मेले का शुभारंभ करेंगे। ऐतिहासिक लक्ष्मी नारायण मंदिर में मिर्जा परिवार की ओर से तैयार मिंजर को राज्यपाल मंदिर में अर्पित करने के बाद शोभा यात्रा भगवान रघुनाथ मंदिर पहुंचेगी और मेले का विधिवत शुभारंभ होगा। अतिरिक्त उपायुक्त अमित मेहरा ने बताया कि मेले के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक और खेल गतिविधियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। इस बीच जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक जागरूकता व सहायता शिविर भी लगाया जाएगा।
4: मिंजर महोत्सव जो है 26 तारीख से 2 तारीख तक मनाया जा रहा है। गवर्नर साहब इनॉग्रेट करेंगे और इसकी क्लोजिंग CM साहब 2 तारीख को करेंगे। हमारी दोनों समय शुरुआत में और आखिर में शोभा यात्रा होती है, लेकिन हम एक SHG मेला करवा रहे हैं जिसमें हमारे लगभग 16 स्टॉल जो हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लगेंगे और वो अपने जो यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स हैं, लोकल कलाकृतियां हैं, लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट है, उसको वहां पे प्रदर्शित कर

0: वहीं पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि मेले को शांतिपूर्ण व सुरक्षित ढंग से सफल बनाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
1: इस बार हमें जो 650 पुलिस पर्सनल डिप्लॉयड है टोटल इंक्लूडिंग होमगार्ड्स। हमने पूरे लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम से देखते हुए जवान जो भी मेजर मेला को चार भागों में विभाजित किया है और उसमें हमारे अधिकारी भी तैनात है वहाँ, और इसके अलावा भी हमने एक एंटी ईव टीचिंग महिलाओं के भी एक स्क्वाड बनाया हुआ है जो सीक्रेटली ऑपरेट करेगा।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो ने शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर रहे 400 से अधिक युवा प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करेंगे। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक 2 चरणों में किया गया। इसके तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन देशव्यापी ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया, जिसमें 3 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने स्थानीय समुदायों के साथ रहकर स्वच्छता अभियान, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता अभियान, युवा सम्मेलन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वृक्षारोपण, मिनी मॉडल पंचायत जैसी गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने स्थानीय कारीगरों से संवाद किया और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थानों का दौरा भी किया। लाहौल स्पीति जिले में स्पीति मैराथन 2026 का आयोजन 28 व 30 अगस्त को किया जाएगा, जिसमें देश व विदेश के धावक हिमालय की चुनौतीपूर्ण वादियों में अपनी प्रतिभा और साहस का प्रदर्शन करेंगे। भारतीय सेना की पहल से आयोजित ये प्रतियोगिता खेल के साथ साथ स्पीति की प्राकृतिक सुंदरता, साहसिक पर्यटन और हिमालयी संस्कृति को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक अवसर भी है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
2: लाहौल स्पीति एक बार फिर खेल, पर्यटन और रोमांच का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। स्पीति मैराथन 2026 का आयोजन 28 और 30 अगस्त को किया जाएगा, जिसमें देश विदेश के धावक हिमालय की चुनौतीपूर्ण वादियों में अपनी प्रतिभा और साहस का प्रदर्शन करेंगे। मैराथन की शुरुआत 28 अगस्त को 77 किलोमीटर के कुंजम ला चैलेंज से होगी। इसके बाद 30 अगस्त को 42.195 किलोमीटर फुल मैराथन, 21.1 किलोमीटर हाफ मैराथन और 10 किलोमीटर रन आयोजित की जाएगी। पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आयोजकों ने अधिक से अधिक प्रतिभागियों से इस अनूठे आयोजन का हिस्सा बनने का आह्वान किया है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ आज शिमला के चौड़ा मैदान में विरोध रैली करेगा। प्राथमिक शिक्षक संघ की कल सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के साथ हुई बैठक असफल होने पर संघ ने ये निर्णय लिया है। शिक्षक संघ ने सरकार की ओर से न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम में संशोधन के लिए कमेटी गठित करने के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए अधिसूचना को पूरी तरह से वापस लेने की मांग दोहराई। संघ ने रैली के बाद मांगे न माने जाने तक स्कूल शिक्षा निदेशालय परिसर में क्रमिक अनशन शुरू करने का भी निर्णय लिया है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है। इसके प्रभाव से वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 4 जिलों कांगड़ा, शिमला, मंडी और सिरमौर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य आपदा परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश में अब तक 134 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं, वहीं 78 ट्रांसफार्मर और 35 पेयजल योजनाएं बाधित हैं। इधर विभाग ने 28 से 30 जुलाई तक मॉनसून के फिर से रफ्तार पकड़ने की संभावना जताई है, जिसके तहत प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने हाईकोर्ट के हवाले से सुर्खी दी है, हिमाचल में बीएड काउंसलिंग पर रोक से इनकार। हिमाचल दस्तक लिखता है, सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू के आह्वान पर राजनीतिक दलों ने निकाला कैंडल जुलूस। पंजाब केसरी ने सुर्खी दी है, जल शक्ति विभाग में इस वित्त वर्ष 4000 पद भरे जाएंगे। दैनिक जागरण की सुर्खी है, इंस्पेक्टर मनाते रहे मौज, टिकट काट खुद निरीक्षण करते रहे परिचालक। दिव्य हिमाचल के शब्द हैं, चंबा में आज से सजेगा अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला। मौसम पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, मंडी धर्मपुर हाईवे समेत 134 सड़कें अब भी ठप, 28 तक बारिश के आसार। अंत में मुख्य समाचार।

एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। सरकार कल लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 करेगी पेश। कारगिल विजय दिवस पर आज देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को राष्ट्र कर रहा नमन। चंबा का अंतर्राष्ट्रीय 8 दिवसीय मिंजर मेला आज से शुरू। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता करेंगे मेले का विधिवत शुभारंभ। और प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी। मौसम विभाग ने 28 जुलाई से मॉनसून के रफ्तार पकड़ने की जताई संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 10:45 पर। नमस्कार।

0: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें, अधिकार जाने।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। नीचे प्रस्तुत है स्वास्थ्य संबंधी सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से कार्यक्रम आरोग्य में आप सबका स्वागत है। और अपने सुनने वालों को हम बता दें कि हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 01892224391। और आज कार्यक्रम में जिस विषय पर डॉक्टर नीतीश ठाकुर हमें जानकारी दे रहे हैं वो है डायलिसिस, जीवन की नई डोर। तो डॉक्टर साहब, कोई प्रश्न पूछने से पहले एक श्रोता जो है वो लाइन पर आ चुके हैं, तो पहले उन्हीं से बात कर लेते हैं। हेलो।
3: हेलो, नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
3: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ।
2: जी राकेश जी, प्रश्न पूछिए अपना डॉक्टर साहब से। विषय पता है ना आपको?
3: जी, डायलिसिस के बारे में।
2: जी
3: है,
2: जी
3: जी, इसके बारे में पूछना चाहता हूँ कि जो जैसे कि जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, क्या उनमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, और हो सकती तो किस तरह से उपचार किया जाता है, मेरा ये सवाल है।
4: जी, आप पूछ रहे हैं छोटे बच्चों में भी क्या किडनी प्रॉब्लम्स होती हैं? जी बिल्कुल होती हैं, और कुछ जेनेटिक कॉज होते हैं, कुछ इन्फेक्शन के वजह से कई बार किडनी ख़राब हो जाती है, छोटे बच्चों की इम्यूनिटी भी कम होती है। तो ऐसे केस में कोशिश तो पहले यही होती है कि दवा देकर ही हम किडनी को चला पाएँ, बट अगर ऐसी नौबत आती है कि किडनी फंक्शन अच्छा नहीं कर रहा है, तो बच्चों में भी डायलिसिस की जाती है। उनके अलग लाइन्स आती हैं, उनके अलग फिल्टर्स आते हैं, तो उनमें भी डायलिसिस करने का प्रावधान होता है।
3: जी, धन्यवाद
2: जी। प्रश्न पूछने के लिए आपका धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे आपने माना किसी मरीज को डायलिसिस सजेस्ट कर दिया है और वो उसको करवा भी रहा है, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या वो उसे जीवन भर करवाना पड़ेगा, या कुछ समय बाद किडनी वापस से ठीक होकर अपने फंक्शन खुद करना शुरू कर देती है?
4: तो डायलिसिस दो तरह की होती है, एक तो होती है इमरजेंसी डायलिसिस।
2: जी,
4: मान लीजिए कोई पेशेंट है, किडनी रोग नहीं था उसको पहले कभी, या कोई बीमारी भी नहीं थी, सडनली किसी वजह से भी इन्फेक्शन या दवाई या कुछ और कारण से उसकी किडनी सडनली शट डाउन हो जाती है।
2: जी,
4: तो ऐसे केस में जब हम डायलिसिस करते हैं तो वो टेम्परेरी ही होती है, हम किडनी को टाइम देते हैं हील करने का।
2: जी,
4: तो उस हीलिंग के टाइम देने के लिए हम पेशेंट की डायलिसिस करते हैं।
2: जी,
4: तो ऐसे केसेस में किडनी जो होती है वो रिकवर कर जाती है और अपने नॉर्मल फंक्शन पर भी आ जाती है।
2: जी,
4: दूसरा होता है कि कोई पेशेंट है जो किडनी की अर्ली स्टेज पे है, मान लीजिए स्टेज 2 स्टेज 3 पे, उसमें कुछ किसी कारण से किडनी में इन्फेक्शन या कुछ भी कारण से उसकी किडनी शट डाउन हो जाती है, तो उस पेशेंट में भी रिकवरी का स्कोप रहता है और मे बी 2 से 3 महीने में किडनी चलने की उम्मीद रहती है। लेकिन जो पेशेंट जिसको हम सालों से देख रहे हैं कि किडनी का मरीज़ है, धीरे धीरे धीरे क्रिएटिनिन उसका बढ़ रहा है, स्टेज उसका बढ़ता जा रहा है, जब वो पेशेंट डायलिसिस पे आता है, तो उन पेशेंट्स में जो डायलिसिस होती है वो पूरी उम्र ही चलती है, फिर उसमें फिर ये प्रावधान नहीं है कि किडनी वापस ठीक हो जाए।
2: जी, और डॉक्टर साहब, एक शब्द आता है जब भी डायलिसिस की बात आती है, फिस्चुला।
4: जी,
2: तो इसके बारे में आप बताइए कि ये होता क्या है और इसकी देखभाल करना क्यों ज़रूरी होती है?
4: देखिए, जब डायलिसिस जो है वो खून की सफाई है, तो खून के लिए एक ब्लड स्पेसिफिक

0: फ्लो चाहिए मशीन को काम करने के लिए।
1: जी
0: तो उसके लिए हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो हम गले में एक जो मोटी नस होती है उसमें लाइन डाल के उससे ब्लड निकाल सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन अगर अगर कोई पेशेंट जो हमें पता है कि अब पूरी उम्र डायलिसिस पे ही जाने वाला है, उस पेशेंट में हम फिस्टुला बनवाते हैं। फिस्टुला बेसिकली हम हाथ में एक आर्टरी और वेन को जोड़ देते हैं, उससे क्या होता है जो वेन होती है वो फूल जाती है और उसका प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसमें जब हम नीडल डालते हैं तो बहुत अच्छा एक ब्लड फ्लो आता है जिससे डायलिसिस बहुत अच्छे से होती है। फिस्टुला किसी भी जिस भी पेशेंट को फिस्टुला है वो उसकी लाइफ लाइन ही है,
1: जी
0: क्योंकि फिस्टुला जो है उससे जो डायलिसिस होती है, एक तो डायलिसिस बहुत अच्छी होती है और फिस्टुला में इन्फेक्शन होने का रिस्क भी नहीं होता है, और फिस्टुला लंबा चलते हैं 5 साल 10 साल, ये फिस्टुला बहुत आराम से निकाल देते हैं। तो फिस्टुला की केयर करना, केयर करने का मतलब ये है कि फिस्टुला वाली आम में कभी बीपी चेक ना करना,
1: अच्छा
0: फिस्टुला वाली
1: जी
0: आम में कभी इंजेक्शन ना देना,
1: जी
0: फिस्टुला वाली आम पे हाथ रख के सोना नहीं है,
1: जी
0: ठीक है, फिस्टुला वाली आम पे कोई टाइट बैंडेजिंग वगैरह नहीं करनी है, तो क्योंकि फिस्टुला को प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम फिस्टुला पे प्रेशर देते हैं तो फिस्टुला कई बार बंद भी हो जाता है, फिर उसको
1: जी
0: खोलना बहुत मुश्किल होता है।
1: जी
0: जी
1: और डॉक्टर साहब, जो किडनी के पेशेंट हैं या डायलिसिस के पेशेंट हैं, उनको खान पान में क्या क्या उनके बदलाव आ जाते हैं? और पानी जो है, स्पेशली बोलते हैं पानी लिमिटेड मात्रा में
0: हाँ
1: उनको
0: जी,
1: देना होता है, तो इस बारे में कुछ बताइए।
0: एक्चुअली जो खान पान में जो परहेज़ है वो पेशेंट की कौन सी स्टेज पर है पेशेंट है उसके हिसाब से इंडिविजुअलाइज ही होता है। कोई अगर अर्ली स्टेज में है तो उसमें इतने परहेज़ नहीं होंगे, उनको हम यही बोलते हैं कि आप पेन किलर मत खाइए या कोई ऐसी दवा मत खाइए जिससे किडनी ख़राब हो सकती है। जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है, जब स्टेज बढ़ती है तो बॉडी के अंदर पोटेशियम और फॉस्फोरस, ये
1: जी
0: दो जो हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि कम पोटेशियम वाला खाना दे पेशेंट को
1: जी
0: और कम फॉस्फोरस वाला खाना दे।
1: जी
0: कम पोटेशियम वाले खाने में जैसे लौकी हो गई, टिंडा हो गया, ये सब सब्जियां रहती हैं देने के लिए।
1: जो बेल पे लगती
0: हाँ
1: हैं, है
0: जी
1: ना?
0: हाँ
1: जी
0: जी, और जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, पालक हो गया, मेथी हो गई,
1: जी
0: उसको हम अवॉइड करने को बोलते हैं। सेम गोज़ विद द फ्रूट्स एज वेल, कि फ्रूट्स जिसमें पोटेशियम हाई है जैसे केला हो गया, नारियल पानी हो गया, उसको देने से हम मना करते हैं।
1: मना करते हैं। जी
0: और जो कम पोटेशियम वाले, इसमें एप्पल होता है और ये अपना अमरूद होता है, वो
1: जी
0: हम दे सकते हैं पेशेंट
1: और
0: को।
1: सिट्रस फ्रूट कितने दे सकते हैं?
0: सिट्रस फ्रूट यूजली हम अवॉइड करते हैं, उसमें भी पोटेशियम की मात्रा ठीक ठाक ही होती है।
1: जी
0: तो
1: जी
0: पेशेंट की किडनी स्टेज पे डिपेंड करता है,
1: जी
0: स्टेज 4 स्टेज 5 वालों को तो मना ही
1: जी
0: होता है
1: जी
0: कि आप
1: जी
0: मत लीजिए।
1: जी और डॉक्टर साहब, एक और श्रोता लाइन पर हैं, लेकिन उनसे संपर्क टूट गया है हमारा। तो श्रोता, हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में आप भी, कोई अगर आपकी समस्या है तो उसके विषय में जानकारी हासिल कर सकते हैं। डायल करें 01892224391। हेलो
2: हेलो,
1: जी, नमस्कार, अपना नाम बताइए।
2: नमस्कार जी, मैं विनोद शर्मा बोल रहा हूँ जी, हेलो,
1: जी कहाँ से बोल रहे हैं विनोद जी?
2: उनके पास से जी।
1: जी अपना प्रश्न पूछिए डॉक्टर साहब से।
2: अच्छा नमस्कार, अच्छा
0: नमस्कार जी।
2: जैसे अभी पेशेंट ने पूछा कि पेन किलर खाने से या वो किडनी खराब होती है, इसमें कितना टाइम लगता है? जैसे आम आदमी बुखार होता है, ज्वाइंट पेन होती है, घुटनों में दर्द होती है, तो मैक्सिमम डॉक्टर पेन किलर पैरासीटामोल देते हैं।
0: देते हैं, बिल्कुल देते हैं। हाँ जी, टाइम डिपेंड करता है कि आपका किडनी फंक्शन जब आपने दवाई खाई उस समय कैसा था।
2: हाँ
0: कई बार
2: जी
0: क्या होता है, किडनी की बीमारी इतनी छुपी हुई होती है कि रिपोर्ट्स में भी नॉर्मल दिख रही होती है, लेकिन जैसे ही आप वो दवाई खाते हो वो उजागर हो जाती है। तो ऐसे में तो एक डोज भी बहुत होती है किडनी का फंक्शन ख़राब करने के लिए।
2: जी
0: और जिसकी किडनी सही है, कोई बीमारी नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, बार बार सेवन करने से फिर वो जो है किडनी की जो किडनी को क्षति पहुँचाता है वो।
2: जी तो डॉक्टर, मैंने एक पेशेंट देखा है,
0: जी
2: उसकी 28 साल जैसे चुई, 28 साल कम, ज्यादा से ज्यादा
0: हाँ जी,
2: डायलिसिस से जीते रहे वो, और एक पेशेंट 3 ही महीने में खत्म हो जाता है, उसका क्या कारण होता है?
0: आप बता कहना चाह रहे हो कि एक पेशेंट 28 साल डायलिसिस पे रहा और एक पेशेंट 3 महीने में ही ख़त्म हो गया।
2: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
0: इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सबसे पहले कि कौन सी एज में किडनी की बीमारी के बारे में पता चला,
2: हाँ
0: क्या
2: जी
0: उस पेशेंट ने पूरी मेडिसिंस खाई कि नहीं खाई,
2: हाँ जी
0: क्या उसको जब बोला गया डायलिसिस शुरू की जाए तब शुरू करी कि नहीं करी,
2: हाँ
0: क्या वो
2: जी
0: हफ्ते में 3 बार करा रहा था या 2 बार करा रहा था या 1 बार करा रहा था या बीच में स्किप कर दे रहा था, क्या वो परहेज कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे।
2: जी
0: इन सब फैक्टर्स की वजह से ही पेशेंट की लाइफ डिसाइड होती है कि वो आगे कितना आगे जाएंगे। जो सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं, डॉक्टर्स के एडवाइस फॉलो करते हैं, रेगुलर फॉलोअप में रहते हैं, टाइम से डायलिसिस कराते हैं, वो पेशेंट यूजली जो हैं बहुत अच्छा समय व्यतीत करते हैं। जो नहीं कर पाते हैं उन पेशेंट में प्रॉब्लम ज़्यादा आती है।
2: ठीक है जी, धन्यवाद
0: जी
2: जी।
1: धन्यवाद आपका भी प्रश्न पूछने के लिए। और डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे

0: कि पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए डायलिसिस के पेशेंट्स के लिए, इस विषय पे बात कर रहे थे हम।
1: ये भी मैम डिपेंड करता है कि पेशेंट का यूरिन आउटपुट कितना है एक दिन का,
0: जी
1: 24 घंटे में कितना यूरिन आता है। अगर उसका यूरिन आउटपुट ठीक ठाक है तो उसमें ज़्यादा हम पानी के लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन जिसका कम है जैसे स्टेज 4 स्टेज 5 में पेशेंट का आउटपुट कम हो जाता है, ऐसी स्थिति में तो फिर हमें उनको रिस्ट्रिक्ट करना ही पड़ता है, देखना पड़ता है कितना यूरिन आ रहा है, पैरों में सूजन आ रही है कि नहीं आ रही है, सांस फूल रहा है कि नहीं फूल रहा है, सुनने में कैसा लग रहा है चेस्ट उनका, तो ये सब फैक्टर्स देख के ही हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं पानी को
0: जी।
1: पर मैं ओवरऑल 1 लीटर हम यूजली बोलते हैं जिसमें पानी दूध चाय छाछ सब मिला के 1 लीटर होना चाहिए
0: एक दिन का
1: 24 आवर का
0: जी। और डॉक्टर साहब एक बात और है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो डायलिसिस करवा रहा है, क्योंकि भ्रांति है कि अगर आपने डायलिसिस शुरू कर दिया मतलब आप अब एक कमरे में बंद हो गए बेड पे हो गए, ऐसी भ्रांति है लोगों में, तो क्या वो एक सामान्य लाइफस्टाइल उसको एंजॉय कर सकता है, अपना जो डेली काम है अगर वो वर्किंग है तो उस पर जा सकता है?
1: बिल्कुल जा सकता है
0: जी।
1: डायलिसिस जो है वो 4 घंटे का ही प्रोसीजर है, बाकी दिन के 20 घंटे आपके अपने
0: जी जी।
1: पहली चीज़ तो अगर आप रेगुलर डायलिसिस का और उसमें भी 24/7 जो डायलिसिस सेंटर्स हैं 24/7 काम करते हैं
0: जी।
1: तो आप अपने स्लॉट के हिसाब से अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बुक स्लॉट बुक कर सकते हो
0: जी।
1: कि 7 से 11 करा लिया जाके सो गए सुबह काम पे चले गए
0: जी जी जी
1: जी।
0: हेलो
2: हेलो
0: जी, अपना नाम बता दीजिए।
2: राजीव सोंदल
0: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी, प्रश्न पूछिए अपना।
2: जैसे कि मैम जैसे हो रहा कि जब पैरों में तलियों में बहुत दर्द हो रही है
0: जी,
2: हाँ जी, तो इसमें सेका पड़ रहा है, गर्मी भी होती है वैसे नहीं होती है, जैसे कि सर्दी आती है तो तब नहीं होती है,
0: तो आप ये जी जी
2: गर्मी में चलते है ना, मैं तो चला नहीं जाता सुबह सुबह
0: जी। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, इनके पाँव के नीचे जो है वो दर्द होती है? हाँ जी,
1: दर्द होती है, जलन होती है,
2: दर्द होती है,
1: दर्द होती है,
2: हाँ जी, सुबह सुबह तो सर चल नहीं पाते हैं,
1: तो ऐसे
2: में चुपती है ना सर, वैसे चुपती है।
1: तो यूजली जो आप सिम्टम बता रहे हो वो किडनी का ना होके नर्वस सिस्टम का ज़्यादा लग रहा है, जो हमारी जो नसें होती हैं कई बार जब वो कमज़ोर होना शुरू होती है तो उसमें फिर जब पिल्लियों में दर्द, पैरों में झंझनाहट, सुइयां चुभना, ये सब सिम्टम्स आते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो डायबिटिक की एक स्टेज के बाद ये सिम्टम्स आते हैं, तो उसमें किडनी की वजह से होना थोड़ा कहना मुश्किल है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डिजीज़ ज़्यादा लग रही है जैसे आप मुझे बता
0: जी। और टेस्ट करवा सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं,
1: टेस्ट करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते
2: हैं
0: जी। प्रश्न पूछने के लिए आपका धन्यवाद। और डॉक्टर साहब एक बात और है कि अगर कोई व्यक्ति डायलिसिस पे है ठीक है, तो लेकिन कई बार होता है कोई ज़रूरी काम है तो जो उसको दिन डिसाइड था कि इस दिन उसने डायलिसिस करवाना है वो उसका सेशन छूट जाता है, तो इसका कितना जोखिम हो सकता है, कितनी हानि हो सकती है उस व्यक्ति को?
1: यूजली अगर डायलिसिस में हम सिर्फ खून की सफाई नहीं करते, उस पर हम पोटेशियम फॉस्फोरस ये सब चीज़ें भी निकालते हैं
0: जी
1: ना, अगर किसी पेशेंट का मान लीजिए कि पोटेशियम थोड़ा ऊपर की तरफ ही रहता है
0: जी जी
1: 5.5-6 के आसपास और डायलिसिस पे आता रहता है
0: जी,
1: अगर वो पेशेंट डायलिसिस का सेशन मिस करेगा तो ऐसे केस में पॉसिबिलिटी है कि उसका पोटेशियम एक डेंजरस लेवल पे चला जाए, उसके कार्डिक प्रॉब्लम हो सकती है, उसका हार्ट रुक सकता है और कई लोगों का सांस जल्दी फूल जाता है, तो मिस नहीं करना चाहिए, और अगर कर दिया है तो नेक्स्ट डे एटलीस्ट आपको इमीडिएटली करवाई लेना चाहिए सेशन। हाँ जी,
0: हेलो,
2: हेलो, हाँ जी, नमस्कार, नमस्कार, बोल रहे हैं।
0: हाँ जी, सबसे पहले आप रेडियो सेट से थोड़ी दूरी बना लीजिए।
2: ओके ठीक है
0: जी। अब प्रश्न पूछिए अपना डॉक्टर साहब।
2: डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
2: डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहता कि एक मेरा बेटा है पोता,
1: हाँ जी,
2: उसको ना 5 साल के बाद ना टाइप 1 शुगर हो गया है,
1: हाँ जी,
2: इसलिए ना 3 टाइम इंसुलिन हम लगाते हैं रात को,
1: हाँ जी,
2: लेंटिस का 10 का इंजेक्शन लगाते हैं,
1: हाँ जी।
2: डॉक्टर साहब एक बात है कि जब वो खाना नहीं कई बार खाता तब उसकी शुगर भी 300 से अबव आ जाती है
1: जी,
2: कई बार कुछ खा ले फिर भी आ जाती है,
1: हाँ जी,
2: कई बार ज्यादा आए तो फिर बिल्कुल डाउन आती है, जब डाउन आए तो फिर इंसुलिन लगाने के बाद भी ज्यादा आती है
1: जी,
2: ऐसा ही होता रहेगा?
1: नहीं, ऐसा तो नहीं होता है।
0: वैसे ये किडनी से रिलेटेड है भी नहीं प्रश्न है ना,
1: चलो मैं बता देता
0: हूँ। जी जी बता दीजिए।
1: मैं बता देता हूँ
2: आज किडनी के बारे में बता।
0: हाँ जी चलिए सुनिए, डॉक्टर साहब आपकी बात का उत्तर दे रहे हैं ना, सुनिए
1: क्या है। अब बहुत नई नई तरह की इंसुलिन भी आ गई है पहली चीज तो, ठीक है, और दूसरा कितना कार्बोहाइड्रेट वो डाइट में ले पा रहा है उसके बेस पे ही डोज डिसाइड की जाती है इंसुलिन की, बहुत डायनेमिक हो गया, अब फिक्स डोज इंसुलिन का

0: ज़माना ख़त्म होता जा रहा है, और जो
1: जी
0: कार्बोहाइड्रेट ड्रिवन जो एक रहता है कि कितना कार्बोहाइड्रेट लोड उसने लिया है डाइट में अपनी, उसके बेस पे कितनी
1: हाँ
0: इंसुलिन जाएगी, ये कैलकुलेट करके हम बता सकते हैं कि इतना इस मील से पहले इतना लगाना है, इस मील से पहले इतना इंसुलिन
1: जी
0: लगाना
1: वैसे तो हम डेली नोट करते हैं कि सुबह कितनी आई और क्या उसको खाने को दिया,
0: हाँ
1: फिर
0: जी
1: 12 बजे चेक करते हैं, फिर इंसुलिन लगाते हैं,
0: हाँ जी,
1: फिर रात
0: क्योंकि
1: खाने से
0: इंसुलिन
1: पहले करते हैं।
0: रिक्वायरमेंट पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। कुछ पेशेंट्स में कम इंसुलिन में
1: अच्छा
0: अच्छा रिस्पॉन्स आता है, कुछ पेशेंट्स में ज़्यादा इंसुलिन भी देनी पड़ जाती है। तो
1: जी
0: पेशेंट की टोटल इंसुलिन रिक्वायरमेंट कितनी है और टोटल
1: जी
0: डेली उसका कार्बोहाइड्रेट इंटेक कितना है पर मील
1: ठीक
0: के हिसाब
1: है
0: से, उस हिसाब से हम इंसुलिन की डोज़ को डेली बेसिस पे भी हम ऑल्टर, यूजली स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स में,
1: ठीक
0: तो
1: है।
0: उसमें वो फिर
1: तो
0: उनकी
1: सर
0: कंट्रोल
1: एक
0: होती है।
1: छोटा सा और क्वेश्चन है
0: जी
1: सर, ये जो 18 साल के, अब 13 साल का है,
0: हाँ जी
1: जब 18 साल से ऊपर हो जाएगा तो ये Type 1 शुगर जो है Type 2 बन जाएगी कि
0: नहीं
1: जा
0: जी,
1: इज ही रहेगी?
0: नहीं नहीं जी, ऐसा नहीं होता है, वो Type 1 तो Type 1 ही रहेगी।
1: अच्छा, Type 1 रहेगी।
0: हाँ जी
1: हाँ जी, डॉक्टर साहब कहते थे
0: Type 1 तो
1: अठारह
0: है कि
1: साल
0: मतलब
1: तक इसकी
0: फैक्ट्री ही
1: जरूरत
0: बंद
1: होनी
0: है
1: है।
0: आपकी पेनक्रियाज की, ना बना ही नहीं रहा है इंसुलिन वो बेसिकली।
1: हाँ,
0: टाइप
1: डेड हो
0: टू
1: गई
0: में
1: है
0: तो रेजिस्टेंस
1: पेनक्रियाज।
0: आती है कि इंसुलिन बन रही है लेकिन काम नहीं कर रही
1: हाँ नहीं, बन ही नहीं रही।
0: है। हाँ बन ही नहीं रही
1: चलिए
0: वो,
1: जी
0: उसने
1: जी
0: वही कह
1: बहुत
0: रहा हूँ।
1: अच्छा लगा आपने प्रश्न पूछा, और कार्यक्रम है आरोग्यम जो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर नीतीश ठाकुर जो हैं वो इस समय कार्यक्रम में मौजूद हैं, जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट हैं यानी कि किडनी रोग विशेषज्ञ। और श्रोता अगर उनसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं किडनी के संबंध में, डायलिसिस के संबंध में, तो डायल करें हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01892224391। हेलो,
2: हेलो
1: हाँ जी, अपना नाम बता दीजिए।
2: सर जी, नरेंद्र बोल रहा हूँ जी, खोली से। हाँ
1: जी, अपना प्रश्न कीजिए, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं सामने।
2: सर नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आज किडनी के रोग के बारे में बता रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमें अपनी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए कौन सी ऐसी चीजें खानी चाहिए ताकि हमारी जो किडनी है विभिन्न प्रकार के रोगों से बच सके और उसको स्वस्थ स्वस्थ रखा जा सके।
1: जी डॉक्टर साहब,
2: तो
1: खान पान
2: इसमें
1: के बारे में बताइए।
0: क्या खाना चाहिए से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या नहीं खाना चाहिए,
1: जी
0: है ना। जैसे अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, ये भी किडनी को कहीं ना कहीं डैमेज करती हैं। ओवर द काउंटर मेडिकेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं कि पेन किलर्स और ये सब मेडिसिन हमें नहीं खानी चाहिए। देसी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई हैं, लोकल मेडिसिन जो हर्बल मेडिसिन होती हैं लोग वो खाते हैं, वो भी किडनी को डैमेज करती हैं।
1: जी
0: तो किस चीज़ से उस किडनी डैमेज होती है ये चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ का स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना ज़रूरी है, हाइपरटेंशन है तो उसका स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना ज़रूरी है, टाइम पे मेडिसिन लेना ज़रूरी है, घर घर पे खुद मॉनिटर करना भी ज़रूरी है। पेशेंट्स क्या करते हैं कि हॉस्पिटल आएंगे 3 महीने में तभी शुगर चेक कराएंगे, 3 महीने शुगर चेक ही नहीं कराएंगे,
1: नहीं करवाएंगे
0: उनको
1: जी
0: पता ही नहीं होता कितनी शुगर चल रही है। तो घर पे सेल्फ मॉनिटरिंग ही बेसिकली इसका
1: जी
0: सोल्यूशन है कि आप घर पे मशीन्स रखिए, खुद चेक करिए और खुद
1: जी
0: मॉनिटर करो कि मेरी प्रोग्रेस कैसी चल रही है। जी
1: जी प्रश्न पूछने के लिए आपका धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं डायलिसिस के बारे में, तो एक टर्म आती है हीमोडायलिसिस और एक आती है पेरिटोनियल
0: हाँ जी
1: डायलिसिस,
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: इन दोनों में अंतर क्या है, होती क्या है ये?
0: हीमोडायलिसिस तो जैसे जब तक अभी तक हम जो डायलिसिस के बारे में बात कर रहे हैं कि
1: जी जी
0: आर्टिफिशियल रूप से एक मशीन के थ्रू, एक फिल्टर के थ्रू हम ब्लड को प्योरीफाई करते हैं बेसिकली।
1: जी
0: पेरिटोनियल डायलिसिस बेसिकली इट्स मोर लाइक सेल्फ डायलिसिस, पेट के अंदर एक झिल्ली होती है जिसे हम पेरिटोनियम बोलते हैं,
1: जी
0: जो एक फिल्टर की तरह काम करती है। तो एक कैथेटर पेट में डाला जाता है, उसके थ्रू हम एक सॉल्यूशन देते हैं, डायलिसेट बोलते हैं जिसको, जो उसको पेट में भरा जाता है
1: जी
0: और हर 4 घंटे के बाद उसको बदला जाता है।
1: जी जी
0: तो जो पेट की झिल्ली है वो खुद को खुद पूरा जो डायलिसेट और ब्लड है उसको प्योरीफाई करती है,
1: जी
0: फिर हम उसको निकाल के डिस्कार्ड कर सकते हैं। दोनों अपनी अपनी एक पद्धति है, दोनों के अपने फ़ायदे अपने नुकसान हैं। जैसे पेरिटोनियल डायलिसिस जो है वो आप खुद कर सकते हो, उसके लिए
1: जी
0: आपको ना टेक्नीशियन चाहिए ना आपको हॉस्पिटल चाहिए, आप अपने घर के कंफर्ट में कर सकते हो,
1: अच्छा जी
0: उसके साथ आप ट्रैवल कर सकते हो कि अपने आप आपको वो बैग्स लेकर जाने हैं तो आप वो बैग्स लेके कहीं भी जा सकते हो,
1: जी
0: वो बैग्स ऑल ओवर इंडिया को कहीं भी मिल भी जाएंगे।
1: जी
0: ठीक है, उसका बस एक ही ड्रॉबैक है कि एक तो आपको 24 घंटे वो
1: साथ
0: चलता
1: में
0: रहता है,
1: कैरी
0: हाँ, और
1: करना
0: वो
1: जी
0: पेट में भरना उतारना कर चलता ही रहेगा एक तो
1: जी
0: वो,
1: जी
0: दूसरा एक इन्फेक्शन का रिस्क जो है वो कम थोड़ा सा ज़्यादा होता है
1: ज़्यादा
0: पेरिटोनियल डायलिसिस में तो पेशेंट, और तीसरा है कि पेशेंट खुद कितना एडुकेटेड है या खुद कितना उसको कोई प्रॉब्लम, जैसे नज़र कमज़ोर होना है,
1: जी
0: सुनाई कम देता है, घर का एनवायरनमेंट इतना क्लीन नहीं है, घर में

0: हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो अगेंस्ट में जाती हैं पेरिटोनियल डायलिसिस के। हीमोडायलिसिस में क्या है कि आप सेंटर में गए 4 घंटे के लिए, आप आ गए 20 दिन, 20 घंटे, अब आपके यहाँ आप जो मर्ज़ी कर सकते हो। और हीमोडायलिसिस सेंटर्स भी अब हर जगह खुल रहे हैं, तो वो भी असेसिबल हैं, आप कहीं भी जाएंगे आपको हीमोडायलिसिस सेंटर्स मिल जाएंगे।
1: जी। और डॉक्टर साहब, जैसे अभी खान पान की बात चली ना, तो आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने सब्जियां बता दी ये नहीं खानी है, फ्रूट हैं ये नहीं खाने हैं, तो कई बार क्या होता है कि जो किडनी पेशेंट हैं या डायलिसिस के पेशेंट हैं, तो ओल्ड एज होंगे स्पेशली, तो उनको ये रहता है कि इतनी सारी चीज़ें हम नहीं खा रहे हैं तो हमारी सेहत कैसे बनेगी, है ना। और कहीं ना कहीं किडनी पेशेंट का हम देखते हैं कि वो एनीमिया की ओर भी जाते हैं, तो ऐसे में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे उनके लिए।
0: यूजली क्या होता है बेसिकली, जो एल्डर पॉपुलेशन आपने बोला
1: जी
0: थोड़ी रिलेक्टेंट भी होती है, ऐसी बात
1: जी
0: नहीं है।
1: जी
0: ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा परहेज़ नहीं बताते हैं, हम बोलते हैं आप एक अच्छा प्रोटीन इनटेक रखिए,
1: जी
0: उसमें अंडा चिकन फिश वगैरह हम इनक्रेज करते हैं कि आप खाइए।
1: लेकिन अगर कोई वेजिटेरियन हो,
0: अगर
1: शाकाहारी
0: वेजिटेरियन
1: है,
0: है
1: हाँ जी
0: तो पनीर है,
1: जी
0: सोया है,
1: जी
0: दालें हैं, तो आप उस वो भी खा सकते हैं।
1: जी
0: प्रोटीन पाउडर्स आ गए हैं अब तो, जो अच्छे अच्छे हाई प्रोटीन हैं, अगर वो चाहें तो वो भी ले सकते हैं।
1: जी
0: तो हमारा मेन रहता है कि पेशेंट का प्रोटीन इनटेक जो है वो अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि किडनी डिजीज़ अपने आप में कैटाबॉलिक डिजीज़ है, यानी अपने आप बॉडी को खाने वाली डिजीज़ है, तो मसल लॉस नहीं होना चाहिए पेशेंट का।
1: जी
0: दूसरा, हम सॉल्ट के लिए मना करते हैं, बस कि सॉल्ट जितना आप सॉल्ट ज़्यादा लोगे बॉडी में उतनी ज़्यादा फूलन आएगी, उतना पानी ज़्यादा होगा,
1: जी
0: कि सॉल्ट की नेचर है वो पानी अट्रैक्ट करता है बेसिकली वो, तो सॉल्ट कम लेना है। तो अचार चटनी हम इसके लिए मना करते हैं, तो फिर वो
1: जी
0: नाराज़ हो जाते हैं कि खाएंगे
1: जी
0: कैसे।
1: जी जी जी
0: तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक समय के बाद खाने को दवा की तरह ही लेना चाहिए, ताकि दवाएं कम लेनी पड़े। अगर हम
1: जी
0: खाने को खाने की तरह लेना देते रहेंगे तो दवाइयाँ बढ़ती जाती
1: जी
0: हैं फिर।
1: बहुत सही कहा
0: हाँ
1: कि
0: जी,
1: एक उम्र के बाद
0: हाँ
1: हमें
0: जी,
1: खाना दवा की तरह खाना चाहिए।
0: हाँ जी,
1: अच्छा डॉक्टर साहब, अब डायलिसिस से बेहतर क्या किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, अगर बार बार
0: बिल्कुल
1: नहीं करवाना है।
0: बिल्कुल सही बात है। मतलब वैसी ही बात है कि आपकी गाड़ी है, आपका टायर पंचर हो गया, आपने
1: जी
0: पैच लगा दिया
1: जी जी
0: और आपने नया टायर ही लगा दिया,
1: जी
0: तो नया टायर ऑब्वियसली ज़्यादा बेटर चलेगा, लंबा चलेगा,
1: जी
0: ठीक है। तो किडनी ट्रांसप्लांट बहुत बहुत डायलिसिस से मच मच बेटर ऑप्शन है, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसमें बस एक जो हर्डल्स हैं,
1: जी
0: जैसे कि डोनर का
1: डोनर
0: मिलना, अच्छे सेंटर में ट्रांसप्लांट हो पाना, उसकी मेडिकेशंस जो हैं वो पूरी उम्र चलती है उसकी भी, लेकिन दवाई खानी होती है। डायलिसिस तो आपकी बंद ही हो
1: बंद
0: जाती
1: हो
0: है,
1: जाती है
0: ठीक
1: जी
0: है। एक हाइजीन में एक लेवल मेंटेन रखना, तो अगर वो सब चीज़ें बहुत अगर हो जाएं तो ट्रांसप्लांट किसी भी एनी डे डायलिसिस से बेटर ऑप्शन ही है। बट सबके लिए ट्रांसप्लांट करवा पाना ड्यू टू फाइनेंशियल रीज़न
1: कॉस्टली रहता है ये
0: कॉस्टली, ऐसा है कि इसका वन टाइम कॉस्ट ज़्यादा होता है। लेकिन अगर
1: जी।
0: हम 3 साल 4 साल की बात करें, तो 4 साल में डायलिसिस से सस्ता पड़ता है ट्रांसप्लांट।
1: जी जी
0: तीसरे साल से तो मतलब डायलिसिस से सस्ता पड़ना स्टार्ट हो जाता है।
1: जी डॉक्टर साहब एक श्रोता लाइन पे हैं।
0: जी
1: हेलो
2: हेलो, नमस्कार मैम,
1: नमस्कार जी, अपना नाम बताएं।
2: मेरा नाम रेनू है, मैं रैन से बोल रही हूँ।
1: जी रेनू जी, प्रश्न पूछिए डॉक्टर साहब से।
2: मैं शुगर की मरीज हूँ, मैंने पिछले महीने टेस्ट करवाए तो मेरी किडनी में ना प्रॉब्लम आई, थोड़ी कैल्शियम बताया उन्होंने ना,
1: जी
2: तो फिर ये कैल्शियम कैसे हो जाता है, और जो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम है किडनी में।
0: बिना रिपोर्ट देखे तो देखो मैं नहीं बता पाऊँगा आपको कि ज़्यादा है, कम है, टेम्परेरी है या परमानेंट है। पहले जांच जो है, एक बार आप आइए मेरे पास दिखाइए, फिर मैं आपको बता पाऊँगा कि क्या करना है आगे। बट कि डायबिटीज़ के साथ किडनी प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर आपका डायबिटीज़ कंट्रोल अच्छा नहीं है तो वो किडनी प्रॉब्लम फिर वो बढ़ती है, ये तो सच बात है।
2: मुझे ना चुभन सी होती थी दाहिनी तरफ ना,
0: हाँ जी,
2: तो मैंने फिर अल्ट्रासाउंड करवाया तो उस रिपोर्ट में आया फिर आपको तो कैल्शियम बढ़ी हुई है, कैल्शियम की परत आ गई है किडनी के ऊपर।
0: हाँ तो हो सकता है स्टोन बन रहा होगा तो उसकी वजह से भी हो सकता है। बट ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि रिपोर्ट देख के ही मैं आपको सही गाइड कर पाऊँगा, ऐसे तो बड़ा मुश्किल है।
1: जी चलिए, प्रश्न पूछने के लिए आपका धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, एक और कॉन्सेप्ट आजकल सुनने में आ रहा है, वो है होम डायलिसिस,
0: जी
1: तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बता दीजिए।
0: एक्चुअली मैं जिन पेशेंट्स के लिए बार बार सेंटर पे जा पाना
1: जी
0: मुश्किल होता है, उनके पास एक ऑप्शन ये भी है कि वो अपने घर पे भी डायलिसिस मशीन रखवा सकते हैं।
1: जी
0: टेक्नीशियन जाते हैं, डायलिसिस स्टार्ट करते हैं, और जब डायलिसिस फिनिश हो जाती है और डिस्कनेक्ट करके वो आ जाते हैं।
1: जी
0: तो उसमें पेशेंट अपने घर के कंफर्ट में करवाता है,
1: जी
0: तो मेंटली भी थोड़ा सा रिलैक्स ही रहता है कि
1: जी
0: मेरे घर में ही हो रहा जो भी हो रहा है, और फिजिबल है लेकिन थोड़ा

0: है डेफिनेटली, तो जो लोग
1: जी
0: अफोर्ड कर सकते हैं तो उनके लिए होम डायलिसिस एक अच्छा ऑप्शन है।
1: जी अच्छा डॉक्टर साहब, डायलिसिस जब नाम हम सुनते हैं डॉक्टर्स स्पेशली, तो कहीं ना कहीं जो पेशेंट है उसके लिए वो एक मेंटली चैलेंज भी हो जाता है, क्योंकि वो
0: डेफिनेटली
1: एकदम से डर जाता है, घबरा जाता है. तो पेशेंट तो चलो मेंटली डिस्टर्ब हुआ, लेकिन साथ में उसकी फैमिली जो है वो इस टाइम पर किस तरह से उस पेशेंट को मोटिवेट कर सकती है और किस तरह उसे सपोर्ट कर सकती है, इस बारे में कुछ बताइए.
0: डायलिसिस फाइनेंशली, इमोशनली एंड फैमिली के लेवल पे भी बहुत चैलेंजिंग होता है। तो पेशेंट तो बेचारा आप सफ़र कर ही रहा है, साथ में फैमिली के लिए पेशेंट को लाना ले जाना, टैक्सी का किराया, ये सब
1: जी जी
0: चीज़ें बहुत से हिडन कॉस्ट होते हैं जो हम डिस्कस नहीं कर पाते। बट इसमें बस यही है कि एक पॉजिटिव माहौल घर पे रखना, उनसे
1: जी
0: बातें करते रहना,
1: जी
0: उनको समझाना कि जीवन ख़त्म नहीं हुआ, चल रहा है।
1: जी
0: वो
1: ये
0: जो
1: बात आपने सही कही,
0: हाँ
1: क्योंकि उनको लगता है कि बस अब
0: हाँ
1: हम
0: जी
1: ठीक नहीं हो
0: हाँ
1: सकते और
0: जी
1: हम रूम में बंद हो गए,
0: डेफिनेटली
1: और उसको जीवन की वो नई आशा की तरह
0: आशा
1: नहीं
0: की तरह,
1: देखते हैं, वो
0: बिल्कुल
1: सोचते हैं कि अब
0: बिल्कुल
1: हमारा एंड हो
0: बिल्कुल।
1: गया लाइफ का, ना.
0: डायलिसिस इज़ अ लाइफ स्टाइल, उसको आप उसे अपनी, अब वो बेड़ियाँ नहीं है बेसिकली,
1: जी
0: आपका
1: जी
0: जीवन
1: जी
0: बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।
1: जी
0: तो आपको खुशी रहना चाहिए कि मेरा जीवन अब यहाँ से बढ़ रहा है, तो जो भी समय आपको मिल रहा है आप उसको और खुशी से इंजॉय करो और अच्छे से उसको समझ पाओ कि
1: जी और हमारा आज का विषय भी यही है, डायलिसिस जीवन की नई डोर,
0: हाँ
1: है
0: जी
1: ना.
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी और डॉक्टर साहब, अब आप ये बताइए कि जो हमारे श्रोता हैं
0: जी।
1: वो किडनी को किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं और किस तरह रोज़मर्रा के जीवन में अपनी सावधानियां बरत के वो इस डायलिसिस से बच सकते हैं और किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं.
0: जो कॉमन चीज़ें हैं जैसे अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट रखना,
1: जी
0: डिहाइड्रेट नहीं होना, गर्मियों में पानी अच्छा पीना, ठीक है, बाहर की दवाइयाँ कोई, जो मैंने बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ कि ये ओवर द काउंटर मेडिसिंस नहीं
1: नहीं
0: खानी है,
1: लेनी.
0: और हेल्दी फूड खाना, प्रोसेस्ड फूड जितने भी हैं, जो कैंड फूड है, मैगी, ये सब चीज़ें, ये सब अवॉइड करना चाहिए, फ्रेश प्रोड्यूस खाएँ। और अपनी किडनी, अगर चाहे आप हेल्दी क्यों ना हो, साल में एटलीस्ट एक बार किडनी की जाँच करानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किडनी किसी एज देख के नहीं होती है, किसी भी एज में हो सकती है। और अगर हम उसको पहले ही पकड़ लें तो थ्रू मेडिकेशन कुछ बीमारियां ऐसी हैं किडनी जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं,
1: जी
0: और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं।
1: जी जी
0: तो अगर हमें समय रहते पेशेंट आएगा तो पेशेंट अपनी, उसकी उम्र भी बढ़ती है और उसका
1: जी
0: लाइफ स्टाइल और अच्छा होता जाता है, वो और अवेयर हो जाएगा उस चीज़ को लेकर।
1: जी
0: तो सेल्फ अवेयरनेस इज़ द गोल बेसिकली, कि खुद अपनी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, रेगुलर टेस्ट करवाओ, अच्छा खाओ, अच्छा सा हाइड्रेट रहो, और टाइम, अगर कोई मेडिकेशन आपको दी है, डॉक्टर ने लिख के दी है, तो उसको प्रॉपरली उस हिसाब से खाओ, बीपी अच्छे से कंट्रोल करो, अपना हाइपरटेंशन अच्छे से कंट्रोल करो,
1: जी
0: कोई इमरजेंसी हो रही है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाओ,
1: जाओ, बिल्कुल
0: सेल्फ मेडिकेट मत करो।
1: जी.
0: जी
1: और श्रोताओं, कार्यक्रम आरोग्य में आज हमने डॉक्टर नीतीश ठाकुर से जाना कि डायलिसिस कोई डरने की बात नहीं,
0: जी
1: बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का एक जरिया है. सही जानकारी, सही इलाज से इस बीमारी को हराया जा सकता है. और डॉक्टर नीतीश ठाकुर, आप हमारे स्टूडियो में आए,
0: थैंक
1: आपने
0: यू
1: हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ इतनी अच्छी जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी
0: जी,
1: साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: थैंक यू थैंक
1: और श्रोताओं, अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे. और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह, और तकनीकी सहयोग हमें मिला विपिन कुमार से. अब वंदना रैना को दीजिए अनुमति. याद रखिए, स्वस्थ किडनी स्वस्थ जीवन. आप सब हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहिए. नमस्कार.

अश्वनी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं कार्यक्रम गीतों का कारवा लेकर। गीतों का कारवा सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को आपकी अपनी रेडियो दोस्त प्रवीण का सुप्रीम नमस्कार।

साजन का घर इस फिल्म से हमारे श्रोता ये गीत सुन रहे हैं। इस गीत को गाया है सुरेश वाडिकर, अलका याग्निक, नदीम श्रवण का संगीत बोल।

0: गीतों का कारवां हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और अब कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक।
1: Favorite Nexa car with exclusive benefits.
2: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
1: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
2: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads up display, and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available.
1: Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
3: Nexa.
2: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
2: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just rupees 6.70 lakh.
2: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
2: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
3: Nexa.
4: स्मार्ट चले, स्मार्ट दिखे, हर सफर हो बढ़ियारे। मारुति सुजुकी सिलेरियो, खुशियों की सांवरियारे। बेहतरीन 26.68 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज, स्टाइलिश लुक्स और कंफर्टेबल ड्राइव के साथ। माइलेज का हीरो स्टाइल भी कमाल, सिलेरियो के संग हर दिन बेमिसाल। और अब पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 42,100। ऑफर का फायदा उठाइए आज ही। टीएनसी अप्लाई। विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी सिलेरियो, स्मार्ट चॉइस, स्मार्ट ड्राइव। माइलेज फिगर एज पर सर्टिफाइड टेस्ट कंडीशंस। टीएनसी अप्लाई।
0: अनजाने फिल्म का गीत अब हमारे श्रोताओं की रेडियो सेट्स पर। साधना सरगम और सुरेश वाडेकर की सुरीली आवाजें, संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने, और बोल है इंदिवर के।

अब सुनिए हिम्मतवार फिल्म से ये गीत। बाबुल सुप्रियो साधना सरगम की आवाजें हैं, संगीत नदीम श्रवण का।

0: बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है।
1: अब सुनिए सनो सरदार फिल्म से ये गीत राहत नुसरत फतेह अली खान की आवाज बोल समीर के और संगीत से सजाया है हिमेश रेशमिया ने।

इसी अंतिम गीत के साथ हमारा आज का गीतों का कारवा ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में पुनः आपसे।

हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 10:30 हो चुके हैं और हम हाजिर हैं कार्यक्रम पहाड़ों के सुर लेकर।

0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
0: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
4: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई।
3: ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो

0: इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
1: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
2: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
3: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
2: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
3: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
2: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
3: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
2: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
4: Nexa.

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कर कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे।

0: मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी व दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनका मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित।
0: चंबा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला आज से शुरू हो रहा है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता इस 8 दिवसीय मेले का शुभारंभ करेंगे। ऐतिहासिक लक्ष्मी नारायण मंदिर में मिर्जा परिवार की ओर से तैयार मिंजर को राज्यपाल मंदिर में अर्पित करने के बाद शोभा यात्रा भगवान रघुनाथ मंदिर पहुंचेगी और मेले का विधिवत शुभारंभ होगा। अतिरिक्त उपायुक्त अमित मेहरा ने बताया कि मेले के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक और खेल गतिविधियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी।
2: मिंजर महोत्सव जो है 26 तारीख से 2 तारीख तक मनाया जा रहा है। गवर्नर साहब इनॉग्रेट करेंगे और इसकी क्लोजिंग सीएम साहब 2 तारीख को करेंगे। हमारी दोनों समय शुरुआत में और आखिर में शोभा यात्रा होती है, लेकिन हम एक एसएचजी मेला करवा रहे हैं जिसमें हमारे लगभग 16 स्टॉल जो हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लगेंगे और वो अपने जो यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स हैं, लोकल कलाकृतियां हैं, लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट है, उसको वहाँ पे प्रदर्शित करेंगे।
0: वहीं पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि मेले को शांतिपूर्ण व सुरक्षित ढंग से सफल बनाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कारगिल विजय दिवस आज मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 1999 के कारगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफल और कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। इस अभियान के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले में उन क्षेत्रों को वापस हासिल किया था जिन पर पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने घुसपैठ की थी। मुख्य कार्यक्रम लद्दाख के द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व गृह मंत्री अमित शाह ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर रहे 400 से अधिक युवा प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करेंगे। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक 2 चरणों में किया गया। इसके तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। पवित्र किन्नौर कैलाश यात्रा 30 जुलाई से शुरू होगी और 10 अगस्त तक चलेगी। जिला प्रशासन की ओर से कल इस संबंध में एक बैठक कर यात्रा बारे समीक्षा की गई। एसडीएम कल्पा व किन्नौर कैलाश यात्रा आयोजन समिति के अध्यक्ष पद्म भारद्वाज ने बताया कि ऑनलाइन पंजीकरण 28 जुलाई से शुरू होगा जबकि ऑफलाइन पंजीकरण 30 जुलाई से किया जाएगा। इस वर्ष प्रतिदिन 375 श्रद्धालुओं को यात्रा की अनुमति दी जाएगी। हालांकि यात्रा की अवधि पूरी तरह मौसम की परिस्थितियों पर निर्भर रहेगी। लाहौल स्पीति जिले में स्पीति मैराथन 2026 का आयोजन 28 व 30 अगस्त को किया जाएगा जिसमें देश व विदेश के धावक हिमालय की चुनौतीपूर्ण वादियों में अपनी प्रतिभा और साहस का प्रदर्शन करेंगे। भारतीय सेना की पहल से आयोजित ये प्रतियोगिता खेल के साथ साथ स्पीति की प्राकृतिक सुंदरता, साहसिक पर्यटन और हिमालयी संस्कृति को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक अवसर भी है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
3: लाहौल स्पीति एक बार फिर खेल, पर्यटन और रोमांच का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। स्पीति मैराथन 2026 का आयोजन 28 और 30 अगस्त को किया जाएगा जिसमें देश विदेश के धावक हिमालय की चुनौतीपूर्ण वादियों में अपनी प्रतिभा और साहस का प्रदर्शन करेंगे। मैराथन की शुरुआत 28 अगस्त को 77 किलोमीटर के कुंजम ला चैलेंज से होगी। इसके बाद 30 अगस्त को 42.195 किलोमीटर फुल मैराथन, 21.1 किलोमीटर हाफ मैराथन और 10 किलोमीटर रन आयोजित की जाएगी। पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आयोजकों ने अधिक से अधिक प्रतिभागियों से इस अनूठे आयोजन का हिस्सा बनने का आह्वान किया है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।

0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 MHz पर। आप सुनिए ये देशभक्ति गीत। आंखी फिल्म से ये गीत हमने लिया है। मोहम्मद रफी की आवाज, संगीत रवि का और शब्द रचना साहिर लुधियानवी की।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम मन की बात रिले किया जाएगा। रिले के लिए करें बस थोड़ा सा इंतजार।

0: कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन

0: लगता है।
1: महात्मा गांधी का कहना है,
2: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
3: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
4: कोई बोले राम राम।
3: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा,
5: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
4: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
6: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
4: चलो,
3: कहाँ
4: एडमिशन कराने?
6: खाता हुआ एक्टिव,
1: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम,
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा।
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है।

0: अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। हमारे जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है। आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है वन राइड वन नेशन वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। साथियों, आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। आइए इस करगिल विजय दिवस पर हम अपने अमर शहीदों को नमन करें और एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अपना संकल्प और मजबूत करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी। मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है। जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से गाद निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया

उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीते। साथियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहां देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चित्तूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहां के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहाँ के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। साथियों, हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। साइंस ओलंपियड्स दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन में से एक है। इनमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन्स में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता। यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते। इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और भारत का परचम भी लहराएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर राह आसान हो जाती है। कश्मीर की पारंपरिक चटाई वगू को लेकर आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे सरकंडे और धान के पुआल से स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छंटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से

बुनाई का काम। दो कारीगरों को एक चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक मिलेगी और सर्दियों में गर्माहट। पहले यह कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा था। ऐसे में श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों वगू क्राफ्ट की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन वगू के संरक्षण का उनका संकल्प अड़िग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। गुलाम हुसैन जी ने इस कौशल को खूब बढ़ाया। अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा वगू देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। मुझे इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों पर बहुत गर्व है। आज हम सभी का लोकल प्रोडक्ट्स पर जोर है। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कश्मीर का वगू भी आपके घर का हिस्सा बने, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। साथियों, हमारे देश में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, ये अपनापन भी है। सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों की मुलाकात हो, या परिवार के साथ कुछ पल बिताने हो, चाय हर मौके का हिस्सा बन जाती है। वैसे तो आप भी भली भांति जानते हैं मेरा चाय से रिश्ता क्या है, लेकिन आज मैं जिस चाय की चर्चा कर रहा हूं उसने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया, बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। साथियों, सबसे प्रेरक बात इसकी शुरुआत है। यह पूरा प्रयास सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरू हुआ था। आज यह ब्रांड देश के बड़े संस्थानों तक पहुंच चुका है। ये पहल हमें बताती है कि जब स्थानीय ज्ञान, प्रकृति और महिलाओं का आत्मविश्वास साथ आते हैं तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। जब समाज इस भावना से जुड़ता है तो बहुत सुंदर और प्रेरक उदाहरण सामने आते हैं। साथियों, अहमदाबाद में जन भागीदारी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी है। भाड़ज क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे। स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवक और आम नागरिक सभी ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आने वाले वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी

विशेष गर्व की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, पेड़ केवल मनुष्यों के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते हैं। गुजरात के गीर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल फिर से बसेरा बना रहा है। ये गीर में वर्षों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। हॉर्नबिल को जंगलों का किसान कहा जाता है। ये फल खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। उन्हीं बीजों से जंगल में नए पेड़ उगते हैं। इस तरह एक पक्षी जंगल को फिर से हरा भरा बनाने में मदद करता है। मैं आप सभी से कहूंगा, हम सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। आज का लगाया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य की विरासत बन सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी जानते हैं कि आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा कई वर्षों तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है, इसलिए प्लास्टिक का सही निस्तारण बहुत जरूरी है। साथियों, बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहां कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। साथियों, आपको याद होगा पिछली बार मन की बात में मैंने गणेश उत्सव की बात की थी। मैंने आग्रह किया था कि हमें अपने देश की मिट्टी से ही बने गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जो पीओपी से बने गणेश जी होते हैं या विदेश से आई गणेश जी की प्रतिमा होती है, उसके बजाय हमें देश की मिट्टी से बने गणेश जी को घर में स्थापित करना चाहिए। इस विषय पर अनेक लोगों ने मुझे संदेश भेजा है और अपने विचार रखे हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरे आग्रह को अपनाया है। उन्होंने स्थानीय मिट्टी से तैयार होने वाले गणेश जी को स्थापित करने का संकल्प लिया है। लोगों ने लिखा है कि मन की बात में पहले इस पर चर्चा हुई, इससे उन्हें सही वक्त पर सही कदम उठाने में मदद मिली। मैं एक बार फिर अपना आग्रह दोहराता हूं, इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका यह प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत गर्व होगा। एक ऐसे व्यक्ति जो साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, दुनिया में जिनकी पहचान बन रही है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। अवसर मिलते ही वो अपनी मिट्टी का सम्मान करना नहीं भूलते। वो व्यक्ति हैं मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी। नाम उनका रोनाल्डो है लेकिन काम से वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर किया क्या है। दरअसल उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक

ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। ऐसा लगता है कि विशाल समंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हो। उसी प्रकार यूनिवर्स में ये यंग गैलेक्सीज भी एक विशाल संरचना का निर्माण करती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है। यह उपलब्धि हर भारतीय का गौरव बढ़ाने वाली है। इससे हमारे युवा साथियों को सीख मिलती है कि वे अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये ऐसी जड़ें हैं जो सितारों की दुनिया को भी जगमगा सकती हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 7 अगस्त को हमारा देश नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। हमारे ये साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं। इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा वह है खादी। हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से वाद्य यंत्र और उनसे जुड़ी परंपराएं हैं। इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा का चोंग प्रेंग। यह वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज में काफी लोकप्रिय है। बांस से बने इस वाद्य यंत्र में 3 तार होते हैं। इससे निकली धुन बहुत मधुर होती है जो सरोद से मिलती जुलती है। कुछ वजहों से युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता कम होने लगी थी। ऐसे में सूरज कुमार देव वर्मा जी ने इसे फिर से लोकप्रिय बनाने का संकल्प लिया। आज उनका प्रयास रंग ला रहा है। वे चोंग प्रेंग के साथ ही वहां के अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर भी परफॉर्म करते रहे। कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूं। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

0: साथियों, मुझे विश्वास है इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मेरा आग्रह है कि आप भी अपने आसपास के पारंपरिक वाद्य यंत्र की जानकारी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। आपकी यह कोशिश दूसरों को भी पारंपरिक भारतीय संगीत से जरूर जोड़ेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। संयोग से इसी हफ्ते हम गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाएंगे। हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। स्कूल के शिक्षक हमें अक्षर ज्ञान देते हैं। गुरु पूर्णिमा ऐसे सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर है। मैं देश के सभी शिक्षकों और गुरुजनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, कुछ ही सप्ताह बाद हम अपनी स्वतंत्रता का महापर्व भी मनाएंगे। 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है। अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है। साथियों, हर वर्ष 15 अगस्त से पहले आप मुझे बहुत से विचार और सुझाव भेजते हैं। इस वर्ष भी आप अपने विचार MyGov पर जरूर साझा कीजिए। मुझे आपके सुझावों का इंतजार है। साथियों, मन की बात में आज इतना ही। अगले महीने हम फिर मिलेंगे। देशवासियों की अनेक नई उपलब्धियां और प्रेरक प्रयासों के साथ, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
4: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। अस्माकं जीवने केचन दिनांकाः तादृशाः भवन्ति येषां स्मरणार्थं दिनदर्शिका न अवलोकनीया भवति। अद्य तादृशः एव जुलाई मासस्य 26 दिनांकः अस्ति। अद्य कारगिल विजय दिवसः अस्ति। एषः दिवसः अस्मान् गर्वान्वितान् करोति। एतत् दिनम् अस्माकं वीराणाम् अद्भुतं साहसं नः स्मारयति। कारगिल इत्यस्य उन्नत श्रृङ्खलाः दुष्करम्

0: प्रतिवर्षम् ऑगस्ट मासस्य पञ्चदश दिनात् पूर्वं भवन्तः बहून् विचारान् बहूंश्च परामर्शान् मह्यं प्रेषयन्ति। अस्मिन् वर्षेपि भवन्तः स्वविचारान् MyGOV इति जनसहभागिता मञ्चे अवश्यं सामायिकीकुर्वन्तु। अहं भवतां परामर्शानां प्रतीक्षां करोमि। सखायः, अद्य मन की बात इति कार्यक्रमे एतावदेव। आगामि मासे वयं पुनः मिलिष्यामः। देशवासिनां नूतनाभिः अनेकाभिश्च उपलब्धिभिः प्रेरणादायकैः प्रयत्नैश्च सह तावत् पर्यन्तं कृपया मह्यम् अनुमतिं प्रददतु। भवद्भ्यः पुनः पुनः धन्यवादाः। नमस्कारः।
1: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता लीजिए सुनिए कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। मैं हूं वंदना रैना आज के इस विशेष कार्यक्रम में। और आज का दिन कैलेंडर की कोई आम तारीख नहीं है, आज है 26 जुलाई और आज पूरा देश मना रहा है कारगिल विजय दिवस। आज हमारी आज़ादी, हमारी संप्रभुता और हमारे तिरंगे के सम्मान का दिन है। आज उन जांबाजों को याद करने का दिन है जिन्होंने बर्फीली चोटियों पर अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मन को खदेड़ दिया। आप सभी को कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

साल 1999 के मई, जून और जुलाई के वो महीने जब हम और आप अपने घरों में सुरक्षित सो रहे थे, तब टाइगर हिल, तोलोलिंग, बटालिक की शून्य से भी नीचे तापमान वाली चोटियों पर हमारे जवान गोलियों का सामना कर रहे थे। और आज का दिन है उन वीर शहीदों के बलिदान को नमन करने का जिन्होंने हंसते हंसते मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। कैप्टन विक्रम बत्रा, मनोज कुमार पांडे, मेजर राजेश, ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि हमारे देश का गौरव है। और कैप्टन बत्रा का वो नारा, ये दिल मांगे मोर, आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में जोश भर देता है।

जी, वाकई इस मिट्टी की बात ही कुछ और है। कारगिल का युद्ध सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं थी, वह हौसले, सूझबूझ और अदम्य साहस की मिसाल थी। दुश्मन ऊंचाई पर था, बंकरों में छिपा था। हमारे जवान नीचे से ऊपर चढ़ रहे थे, लेकिन भारतीय सेना के शौर्य के सामने दुश्मन टिक नहीं सका। 26 जुलाई सन 1999 को हमारी सेना ने ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक पूरा किया और कारगिल की चोटियों पर तिरंगा फहरा दिया। आज हम उन पिताओं को सलाम करते हैं जिन्होंने अपने शेर जैसे बेटे खोए, उन माताओं को जिन्होंने अपने लाल कुर्बान किए और उन बहनों को जिनकी कलाई सुनी हो गई। आप सभी की ये शहादत देश कभी भी नहीं भूलेगा।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई।
0: ये तीनों जांच क्यों जरूरी है?
1: अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी।
0: बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: सैनिकों के लिए इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं कारगिल की शौर्य गाथा की। इस युद्ध में हमारे जवानों ने जो कर दिखाया वो दुनिया के सैन्य इतिहास में एक मिसाल है। परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार और योगेंद्र सिंह यादव जैसे हीरोज ने घायल होने के बाद भी दुश्मन के बंकरों को तबाह कर दिया। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी शांति और सुरक्षा के पीछे कितनी बड़ी कीमत चुकाई गई। जब आप और हम अपने परिवार के साथ बैठे हैं तो एक पल के लिए आंखें बंद करके सीमा पर खड़े उस हर जवान को शुक्रिया कहिए जो आज भी -डिग्री तापमान में सरहद पर डटा हुआ है।

शहीदों ने अपना फर्ज निभा दिया, अब हमारी बारी है कि हम एक अच्छे नागरिक बनकर देश की तरक्की में अपना योगदान दें। कारगिल विजय दिवस के इस विशेष सैनिकों के लिए कार्यक्रम में आज बस इतना ही। वंदना रैना को दीजिए अनुमति, वीर जवानों को एक बार फिर से शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत।

सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। दिन के 12:30 हुए हैं। अब बच्चे अपना कार्यक्रम सुनेंगे, बाल सभा।

सभी बच्चों को जय हिंद। रेडियो दीदी एक बार फिर से हाजिर हो चुकी है स्टूडियो में अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों का कार्यक्रम बाल सभा लेकर, और सभी बच्चों को आपकी अपनी रेडियो दीदी प्रवीण का प्यार भरा नमस्कार, ढेर सारा लाड प्यार और दुलार। और आज आपकी ये रेडियो दीदी थोड़ी सी कम बातें करेगी, क्योंकि पहले हम आपको ये बता देते हैं कि महीने का ये अंतिम रविवार है, और अंतिम रविवार को हम जोड़ते हैं दिल से दिल तक के तार। जी हाँ, तो फ़ोन नंबर आपने नोट करना है, क्योंकि जब तक आप फ़ोन नंबर नोट नहीं करेंगे और फ़ोन नंबर डायल नहीं करेंगे, तब तक दिलों के तार बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे। तो डायल करें 01892224391, 01892224391, ये है हमारे स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर। और इस नंबर को डायल करके हमारे श्रोता, बाल श्रोता हमसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। और बता

0: देते हैं आप सभी श्रोताओं को कि ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए है, तो वही हमें कॉल करें। और हाँ, अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य फ़ोन मिलाने में बच्चे की मदद कर सकता है और हमसे बात करवा सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर बिल्कुल आ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो
1: दीदी, राधे राधे।
0: राधे राधे वंश।
1: हाँ जी,
0: कैसे हो?
1: ठीक हूँ।
0: बड़े खुश हो आज?
1: हाँ जी
0: हाँ जी, क्योंकि आज आप हमारे इस कार्यक्रम के पहले कॉलर बने हैं, है ना?
1: हाँ जी।
0: और जो पहले ही बार में फोन लग जाता है तो बहुत खुशी होती है।
1: हाँ जी।
0: तो क्या कर रहे हो वंश?
1: आपका इंतजार।
0: ओह, दीदी का इंतजार हो रहा था। तो इंतजार आपको लंबा तो नहीं लगा ना?
1: बड़ा
0: लंबा लगा। ओह, इसके लिए हम ना आपसे ना पता है क्या कहना चाहते हैं? कि दीदी वंश से बहुत प्यार करती है, बहुत ज्यादा। ठीक है,
1: मैं भी।
0: आप भी दीदी से बहुत प्यार करते हो, पर ये तो बिल्कुल गलत बात है ना कि दीदी के बुलाने पर भी आप दीदी से मिलने नहीं आते हो।
1: आप आ जाओ।
0: अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है वंश। बिल्कुल, हम यही तो चाहते थे कि वंश एक बार कहे दीदी आ जाओ। अब देखना दीदी कैसे आपसे मिलने आती है और बिल्कुल आपके खुंडिया में दीदी पहुंचेगी। ठीक है,
1: मुझे भी आपसे मिलना।
0: बिल्कुल वंश, जब हमारे दिल में किसी के मिलने की तमन्ना होती है ना, तो बिल्कुल हम आपसे ज़रूर मिलेंगे। और आपके साथ साथ हम दूसरे बाल श्रोताओं को भी बुला दें कि अगर आप आकाशवाणी धर्मशाला आना चाहते हैं, रेडियो दीदी से आप मिलना चाहते हैं, कोई किस्सा कहानी गीत लोक संगीत आप सुनाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी धर्मशाला आपका स्वागत करता है और रेडियो दीदी आपका स्वागत करती है। आप आ सकते हैं किसी भी कार्य दिवस पर। ठीक है।
1: हाँ जी।
0: तो वंश, आज क्या सुनाओगे? क्या सुनाना है वंश ने?
1: अच्छी सोच, अच्छी भावना और अच्छा विचार, ये तीनों जीवन में सुख शांति के लिए बहुत जरूरी है।
0: बहुत बहुत ही अच्छा विचार आपका, बहुत अच्छा विचार। और इसी सोच के साथ वंश आपने आगे बढ़ना है। ठीक है।
1: हाँ जी।
0: हाँ, और इसके अलावा कुछ और कहना चाहते हैं आप? आज वंश ने क्या खाया है?
1: करेले।
0: अरे वाह, क्या बात है। एक राज की बात बताऊं वंश आपको? हाँ, तो आज दीदी भी करेले लेकर आई है अपने टिफिन में, भरवा करेले आपको खाने हैं।
1: हाँ जी।
0: तो आपके लिए मैं एक बचा कर रखूंगी। ठीक है। हाँ, थैंक यू वंश कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यूं ही जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ और रेडियो दीदी के साथ। बहुत बहुत बहुत सारा आपने प्यार अपना यूं ही बरकरार रखना है। ठीक है वंश, कॉल करने के लिए शुक्रिया। जी हाँ, बाकी के श्रोता भी हमसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं 01892243901 पर। ये नंबर है हमारे स्टूडियो का और इस नंबर को डायल करें जल्दी से और बात करें। हेलो हेलो ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि दीदी हेलो हेलो करे और सामने से आप कॉल कट करके निकल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल हमसे बात करनी है। तो अभी हम लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
2: स्मार्ट दिखे, हर सफर हो बढ़िया रे। मारुति सुजुकी सिलेरियो, खुशियों की सामरिया रे। बेहतरीन 26.68 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज, स्टाइलिश लुक्स और कंफर्टेबल ड्राइव के साथ। माइलेज का हीरो, स्टाइल भी कमाल।

0: दिलेरियो के संग हर दिन बेमिसाल और अब पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 42,100 ऑफर का फायदा उठाइए आज ही TNC अप्लाई विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम मारुति सुजुकी सिलेरियो स्मार्ट चॉइस स्मार्ट ड्राइव माइलेज फिगर एज पर सर्टिफाइड टेस्ट कंडीशंस TNC अप्लाई
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू मोबाइल छोड़ो
2: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए रिफंड ही नहीं आया मिल गया अब भी कॉल करता हूँ दीदी
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं
2: तो फिर सही नंबर
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड
2: आपने तो बचा लिया दीदी
1: काम से नहीं
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव
5: सीमा सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी सब ठीक है ना
6: हाँ बिल्कुल डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई ये तीनों जांच क्यों जरूरी है अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है और हाँ ये जाँच गोपनीय और निःशुल्क होती है फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जाँच जरूर करवाऊंगी बिल्कुल याद रखो समय पर जाँच स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान
0: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जाँच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करे ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम स्वस्थ माँ सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी
7: हेलो कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए है तो वही हमें कॉल करें और अगर आपकी कॉल लग रही है तो बात ज़रूर करें जी हाँ प्रोग्राम हमारे बच्चों के लिए है एक बार फिर से हम इसी बात को दोहरा रहे हैं जब भी आप कॉल करें तो नेटवर्क का अपने पूरा ध्यान रखना है तो जब तक अगली कॉल हमें आती है हम सुनवाते हैं अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए ये प्यारा सा गीत हेलो हाँ जी नमस्ते थोड़ा जोर से बोलेंगे आप हेलो हाँ जी नाम बताइए अपना
8: मैं उर्मिला बात कर रही हूँ जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से
7: उर्मिला
8: जी
7: सबसे पहले तो दीदी की ओर से प्यार भरा नमस्ते आपको हेलो जी उर्मिला आपको दीदी नमस्ते बोल रही है नमस्ते कैसे हैं आप अच्छा ये बताइए कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं
8: प्लस टू में
7: अभी आप प्लस टू में हुए हैं या प्लस टू पास आउट हो गए
8: प्लस टू में हुए हैं
7: अच्छा प्लस टू में हुए हैं तो कौन से सब्जेक्ट हैं आपके
8: आर्ट्स में फिजिकल एजुकेशन हिस्ट्री इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस
7: और इन सब में कौन सा जो विषय है आपको बहुत अच्छा लगता है
8: पॉलिटिकल साइंस
7: पॉलिटिकल साइंस में ऐसा क्या है जो आपको बहुत अच्छा लगता है हेलो
8: जी
7: हाँ जी बताइए
8: मैं पॉलिटिकल साइंस में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है
7: जी आपको अपने संविधान के बारे में जानना पढ़ना बहुत अच्छा लगता है
8: जी।
7: बहुत अच्छी बात है अच्छा उर्मिला और बताइए आपके मंडी शहर के मिजाज कैसे हैं मौसम कैसा है वहाँ पर
8: अभी तो थोड़े थोड़े से बादल छाए हुए हैं
7: थोड़े थोड़े से बादल हैं और बारिश
8: नहीं लगी अभी
7: बारिशें हो रही हैं वहाँ पर
8: जी
7: ठीक है और ये बताइए अब कि क्या सुनाएंगे आज आप हमें क्या कहना चाहते हैं आपने फोन किया है कार्यक्रम बाल सभा में तो कुछ सोचकर ही फोन किया होगा
8: जी
7: है ना तो क्या कहना चाहते हैं क्या विचार हैं आपके बताइए
8: मैं जैसे उद्यमेन हि सृजन्ति कार्याणि वा न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः तथा परिश्रम से सभी कार्य सिद्ध होते हैं मन की इच्छाओं से नहीं सोए हुए शेर को शिकार मुंह के पास नहीं आता तो उसे शिकार करने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है तो हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस ये कहना
7: अति

0: सुंदर, अति सुंदर, बहुत ही सुंदर। और एक बात कहना चाहती हूँ उर्मिला, कि संस्कृत भाषा में आपकी जो पकड़ है, और वो भी मजबूत पकड़ है, ये सुनकर ना बहुत ही खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। क्योंकि आजकल के बच्चों की अगर बात करें ना, तो बहुत कम बच्चे हैं जो संस्कृत भाषा में रुचि रखते हैं,
1: जी
0: है ना?
1: जी
0: और कुछ कहना चाहते हैं आप? क्योंकि एक महीने के बाद ये मौका मिलता है कि हम बच्चों को बोलने का एक अवसर देते हैं। आपके मन में जो भी है, आप कुछ भी कहना चाहते हैं, कोई देशभक्ति गीत आप सुनाना चाहते हैं, लोक संगीत आप सुनाना चाहते हैं, तो सुना सकते हैं। और उर्मिला जी, एक बात कहूँ आपसे?
1: जी
0: हाँ, तो अगले महीने के अंतिम रविवार को जब आप कॉल करेंगे, तो दीदी ये उम्मीद आपसे रखती है कि आप हमें ज़रूर कुछ ना कुछ सुनाएंगे।
1: जी
0: ठीक है,
1: जी
0: आपका दिन शुभ हो। आपने आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियोज़ में कॉल किया, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।
1: थैंक यू।

0: हेलो,
1: गुड आफ्टरनून दीदी जी।
0: शुभ दोपहर, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। नमस्ते नहीं बोला आपने दीदी को।
1: नमस्ते।
0: कैसे हो?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
0: मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नाम बता दीजिए सभी फ्रेंड्स को जो आपको सुन रहे हैं।
1: मेरा नाम यशस्वी है।
0: यशस्वी, कैसे हो?
1: मैं ठीक हूँ।
0: आप भी दीदी को याद कर रहे थे इसलिए आपने कॉल किया। हाँ
1: हाँ जी।
0: जी। और

0: आप हमारे मेहमान भी रह चुके हैं।
1: हाँ जी।
0: हाँ जी, दीदी ने पहचान लिया। यशस्वी,
1: हाँ जी।
0: अभी तक आपने क्या क्या किया वो बताइए।
1: अभी तो मैं पढ़ाई कर रही थी।
0: और खाना नहीं खाया?
1: अभी बन रहा है खाना।
0: अरे, सुबह से मम्मा ने खाना ही नहीं दिया आपको।
1: मम्मा ने बनाया था खाना सुबह।
0: अच्छा, मम्मा ने बनाया था, तो फिर आपने क्या खाया था?
1: मैंने सुबह परांठी और चाय खाई।
0: चाय भी आपने खा ली?
1: थी।
0: हाँ, मैंने सोचा यशस्वी कैसी लड़की है, ये तो चाय को भी खा जाती है। और बताइए यशस्वी, आज आप अपनी दोस्तों को क्या सुनाओगे?
1: पोएम सुनाऊंगी।
0: कविता सुनाएंगे आप?
1: हाँ जी।
0: बिल्कुल, तैयारी के साथ है ना?
1: हाँ जी।
0: ओके, सुनाइए फिर।
1: You have a few crowns, red, yellow and blue, green, purple and black. I have some too. I need the black and you need the red. If we share our crayons, we have a full pack.
0: बहुत अच्छी, बहुत अच्छी पोइम आपकी। और इस
1: थैंक यू।
0: थैंक यू, बहुत बहुत आपका वेलकम, बहुत बहुत स्वागत। यशस्वी, कुछ और भी सुनाना चाहते हैं?
1: हाँ जी।
0: अरे वाह, क्या बात है, सुनाइए।
1: देशभक्ति गीत।
0: हाँ बिल्कुल, आज के दिन तो देशभक्ति गीत बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज हम सब मना रहे हैं विजय कारगिल दिवस।
1: हाँ जी।
0: हाँ सुनाइए।

0: बस और सुनाइए। बिल्कुल, हम एकदम मंत्रमुग्ध हो गई आपकी आवाज़ सुनकर कि इतनी छोटी सी बच्ची इतनी प्यारी सी मीठी सी आवाज़ में इतना सुरीला देशभक्ति गीत गा रही है।
1: एक और सुनाना चाहती हूँ।
0: अरे वाह, लगे हाथ, एक और सही सुनाइए।

0: संदेश से आते हैं। दीदी दीदी के भी इतने सारे संदेश आपको चाहते हैं कि आओ दीदी से मिलो, बात करो, प्यार करो। ठीक है यशस्वी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मन खुश हो गया आपके देशभक्ति गीत सुनकर, और उम्मीद करते हैं कि बाकी के जो फ्रेंड्स आपको इस समय सुन रहे हैं, हमारे बाल श्रोता जो आपको सुन रहे हैं ना, उनके मन में भी ये ख्याल ज़रूर आ रहा होगा कि हम भी अगली बार दीदी को कॉल करेंगे और खूब सारे अच्छे अच्छे देशभक्ति गीत सुनाएंगे। हाँ जी, शुक्रिया यशस्वी कॉल करने के लिए।
1: बाय
0: बाय, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जी हाँ, बाकी के बाल श्रोता भी हमें कॉल कर सकते हैं 01892224391। ये है आकाशवाणी धर्मशाला की स्टूडियोस का टेलीफोन नंबर, और इस नंबर को जल्दी से डायल करें, दीदी से बात करें और अपने मन के विचारों को, अपने मन के उलझनों को दीदी के साथ साझा करें। तो एक और संगीतमय ब्रेक हम यहाँ पर लेते हैं और सुनवाते हैं अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को एक और प्यारा सा गीत। और हाँ, गीत ही नहीं सुनना है, फोन आपने मिलाते रहना है।

0: हेलो हेलो, बात
1: हेलो हेलो,
0: कीजिए। हेलो,
1: नमस्ते दीदी जी।
0: नमस्ते। आप तक हमारी आवाज अच्छे से जा रही है?
1: हाँ जी, मेरा
0: हाँ जी, नाम बताइए अपना।
1: दिम्पल
0: अपना नाम बताइए।
1: कुमारी। हाँ
0: डिंपल।
1: जी,
0: अरे बहुत ही प्यारा नाम है आपका, एकदम शरारतों से भरा हुआ। डिंपल कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं?
1: छठवीं कक्षा
0: हाँ जी,
1: में।
0: सातवीं में पढ़ते हैं। और कहाँ से कॉल की है आपने, कौन सी जगह से बात कर रहे हैं?
1: मंडी जिला।
0: मंडी जिला से आप बात कर रहे हैं, बहुत दूर से आपने कॉल किया है और पहली बार आपने कॉल किया है।
1: हाँ जी,
0: हाँ जी, तो आपकी कॉल का रेडियो दीदी बहुत बहुत स्वागत करती है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत
1: बहुत अच्छा। कविता
0: अच्छा लग रहा है। क्या सुनाओगे आज, सुनाइए।
1: मछलियाँ जो चोंच मार कर दूध भरे जिंदगी के दाने लिट्टी के रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है।
0: आपको किससे प्यार है डिंपल?
1: हाँ जी,
0: आपको किससे प्यार है?
1: मम्मी पापा से। हाँ
0: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और आपकी कविता भी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी थी। और जो आपने कहा ना कि आपको मम्मी पापा से प्यार है, तो अपने माता पिता से ये प्यार आपने हमेशा यूं ही बनाए रखना है। उनके प्रति मान सम्मान की भावना को यूं ही बनाए रखना है। कुछ और कहना चाहती हैं डिंपल आप? हेलो।
1: हेलो,
0: ठीक है, शुक्रिया डिंपल, आपने कॉल किया और इतनी अच्छी कविता हमें सुनाई। और माता पिता के लिए आपके हृदय में जो भी भावनाएं थी, जो प्यार था, आपने सबको बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूं ही जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के संग।
1: धन्यवाद।

तो नन्हे दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का सजीव फोन इन कार्यक्रम बाल सभा यहीं पर संपन्न होता है। दीजिए अपनी रेडियो दीदी प्रवीण को कार्यक्रम संपन्न करने की इजाजत। और जाने से पहले हम आपको बता देते हैं, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रहे डॉक्टर जितेंद्र पॉल सिंह और तकनीकी सहयोगी के रूप में हमारे साथ रहे विपिन कुमार। इसी के साथ प्यारे बच्चों, जय हिंद।

0: हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन का 1 बजने को है और पहले हिंदी में समाचार, वो 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रिले के लिए करें बस थोड़ा सा इंतजार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमताएं लगातार बढ़ा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय की यही कामना है कि सभी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करें। श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की।
2: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
1: प्रधानमंत्री ने जापान में कार्यरत खगोल भौतिक विज्ञानी मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम का भी उल्लेख किया।
2: मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी

0: अपनी चमक बिखेर रही है।
1: देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
0: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
1: संबोधन के समापन में श्री मोदी ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात की।
0: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
1: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। श्री सोनोवाल इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही असम को विशेष महत्व दिया है। विदेश मंत्रालय ने एक परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को सुझाव दिया है कि वे काला सागर से गुजरने वाले जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन कर लें। परामर्श में कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालिम को हराकर उन्होंने खिताब जीता। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi remembered the brave hearts of the nation today on the occasion of Kargil Vijay Diwas, stating that India is continuously scaling new heights, be it in defence production, defence exports, or political cooperation with friendly nations. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani, Mr. Modi said today, the 26th of July, is a date that does not require a calendar to be remembered, as Kargil Vijay Diwas is being celebrated today.
0: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
2: Mr. Modi said India is continuously strengthening her technological capabilities. He highlighted the recent induction of INS Mahendragiri into the Indian Navy.
0: कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है।
2: The Prime Minister said, every Indian is filled with pride following the successful launch of Vikram 1 last Sunday. He elaborated that it is India's first rocket developed

इस ये जो गाना था इसका शब्द बाकायदा जो इबारत है इबारत की शुरुआत में ही आ जाता है, लेकिन इस गाने का जिक्र बहुत कम मिला। हालांकि बहुत सारे गाने हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं और अनगिनत गाने लिख रहे हैं, कहीं धूप तो कहीं छाँव, सुख दुख दोनों रहते जिसके जीवन है वो नाम, कहीं धूप तो कहीं छाँव, कवि प्रदीप की रचना है। और ये बहुत सारे श्रोताओं ने गाने के बोल लिखे हैं, ज़िंदगी के मेले कभी कम ना होंगे, फिल्म मेला। और एक श्रोता ने लिखा है कि तुमको देखा तो ख्याल आया, फिल्म साथ साथ का एक कालजयी गीत सुनाया आपने, और अनगिनत श्रोताओं की अनगिनत टिप्पणियाँ आई हैं और हम आपको बारी बारी से सुनवाते चलेंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन के वो दिन भी क्या दिन थे, भाई बहनों के साथ खंडवा के बीच लगने वाले नाम सप्ताह के मेले में जाना, झूले झूलना, वो चहल पहल और फिर वही परंपरा अपने बच्चों के साथ दोहराना। ये अनुभव दिल के बहुत करीब होता है, वक्त कितनी तेज़ी से बदल जाता है, लेकिन शहर और वहाँ के मेले से जुड़ा लगाव कभी कम नहीं होता। एक श्रोता ने और लिखा है कि मेले का जिक्र हुआ तो अभी हमारे शहर में मेला लगा हुआ है और ये गाना, ये बात सुनकर हमें याद आ गया। तो ज़रा बताइए कि मेले वाली कौन सी याद इस वक्त आपके जहन में आई है, मेले में कौन सी चीज़ आप जाकर ख़रीदा करते थे, क्या वो मेले में जाकर वो जो बुढ़िया के बाल है वो याद आया कि वो ख़रीदते थे, और खिलौने मिट्टी के लकड़ी के बहुत सारे खिलौने खरीद कर ले आते थे वो याद आया, और फिर जो सस्ते दामों पर किताबें मिलती थी क्या वो भी याद आया, और वो भी याद आया कि कभी अपने पिता की उंगली थामकर, माँ की उंगली थामकर मेले में आप घुमा करते थे और कभी उंगली छूट गई तो कितनी घबराहट होती थी, ऐसे लगता था अब क्या होगा, अरे कहाँ गए, बस रोना आता था। कभी ऐसा भी हुआ? मेले में जाने के बाद तो अनगिनत अनुभव हैं, तो उनमें से कुछ अनुभव आप साझा कीजिए। फिलहाल चलिए मेले का ही गाना सुनवा देते हैं, ये रहा ये गाना। अगर हाँ आपके जहन में और कोई गाना आ रहा है तो ज़रूर बताइएगा। अगर आपने टिप्पणियाँ भेजी तो एक गाना मेले का और सुनवाएंगे।

आवाज़ थी शकील बदायूनी के बोल थे, और इससे पहले हमने अनुराधा फिल्म का गाना सुनवाया था लता मंगेशकर की आवाज़ में, शैलेंद्र की रचना, रविशंकर का संगीत था, और कलाकारों के नाम भी हमने पूछे थे, लीला नायडू और बलराज साहनी। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल पूरी और सही जानकारी लिख भेजी है, और ये जो मेले वाला गाना था इससे जुड़ी हुई भी बातें बहुत सारे श्रोता हमें लिख भेजे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में दशहरे का मेला जाते थे और वो मज़ा आज के बच्चे नहीं जान सकते हैं, और मेले से खिलौने खरीदा करते थे, एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि अनुराधा फिल्म का कालजयी गाना और सुनहरे पलों की याद और वर्तमान के अकेलेपन की एक बेहद खूबसूरत और दर्द भरी अभिव्यक्ति है। दरअसल जब बात मेले की चली है तो हम भीड़ भरे मेले में होते हैं कई बार, तब भी अकेलेपन का एहसास होता है, उस एहसास को भी आप साझा कर सकते हैं। एक आज के ज़माने में ख़ास तौर से ये एहसास हर किसी के दिल में होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि लता जी की आवाज़ जो हाय रे वो दिन क्यों ना आए, दिल की अतल गहराइयों में उतर जाती है। और बहुत सारे श्रोताओं ने जो हमने सवाल पूछा था उसका जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि 1968 में उज्जैन कुंभ मेला संतों की भीड़ भरी रैली में माता जी का हाथ छूट गया, शाम को जाकर पुनः उसी जगह माता जी और अन्य सदस्यों से मुलाकात हुई, राहत की सांस ली। एक श्रोता ने लिखा है कि बालपन में तो मेला देखने बहुत जाते थे, कुल्फी चाट पानी के बताशे खूब खाते थे और खिलौने खरीदने के लिए पैसे पहले से बचाने लगते थे। विजयदशमी पर तो मेला लगता ही था, उसकी प्रतीक्षा वर्ष भर रहती। क्या बात है भाई, पानी वाले जो बताशे जिसे पानी पूरी भी कहा जाता है, और मेले में झूले झूलने का मज़ा भी होता था, एक श्रोता ने लिखा है। और मेले में जो सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता था जो अनुभव, वो था जो हिंडोला, जो बड़ा वाला हिंडोला गोल गोल चलता है, तो जब ऊपर की ओर जाता था हिंडोला तब तो ठीक, जब नीचे की ओर आता था तब कैसा एहसास होता था, ऐसे लगता था कि दिल की धड़कनें तेज़ हो गई हैं और बिल्कुल दिल मुंह में चला आया है ऐसे। एक श्रोता ने लिखा है कि ज़िंदगी चलने का नाम है, कभी सुख है कभी दुख है, राह में कांटे भी मिलेंगे फूल भी मिलेंगे, प्यार बेवफाई सपने को सच भी करना है, ख्वाब देखना उसे पूरा करने की चाह, तभी पूरा होगा जब हौसला हो। अब ये महल फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, आपको बूझना है गीतकार और संगीतकार का नाम। हमने जो इबारत लिखी थी उस इबारत में कौन सा ये शब्द आ रहा है, जरा बताइए गाने में कौन कौन से शब्द हैं। गीतकार संगीतकार का नाम पूछिए।

महल फिल्म का गाना किशोर कुमार, आशा भोसले की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। श्रोताओं ने सही जवाब दिया, कुछ श्रोताओं ने संगीतकार का नाम गलत लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे मेले में बंदूक से निशाना लगाना अच्छा लगता है। एक श्रोता ने लिखा है कि गंगा दशहरे के मेले में मिट्टी के बर्तन लाते थे। और एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में नवरात्रि के मेले में जाता था तो मुझे किसी भी रखी वस्तु पर लकड़ी की रिंग डालना अच्छा लगता। उसमें जिस वस्तु पर रिंग गिरेगी वो वस्तु अपनी हो जाती थी, लेकिन मुझे कभी कोई वस्तु मिली नहीं। एक श्रोता ने लिखा है कि मेले में जाकर दादाजी के साथ चुटहिया जलेबी खाना याद आ गया। क्या बात है भाई, वो जलेबी कहीं कहीं कभी कभी मिलती है, हर जगह नहीं मिलती। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल्ली के लाल किले के मैदान में मेला लगता रहता है और विभिन्न प्रकार के झूले लगते हैं। मैं जब भी मेला जाता हूँ सबसे पहले ऊंचाई वाला झूला ज़रूर झूलता हूँ, जिसे जॉइंट हील कहते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे मेले में मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने वाले बर्तन ज़रूर मैं ख़रीदती थी और वो कपड़ों वाली गुड़िया भी। फिर हम अपने छोटे से घरौंदे में गुड़ियों के साथ खाना पकाते, शादी ब्याह करते। एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेले में एक छोटा सा प्लास्टिक का गिलास कीमत हर माल 6 आना का ख़रीदा। उसमें पानी भरने पर अंदर फिल्मी हीरो हीरोइन की फ़ोटो दिखाई देते थे, उसे स्कूल के साथियों को दिखाते थे। क्या बात है भाई, गजब के अनुभव हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मेले में लगने वाले ऊंचे झूले पर आज तक हम नहीं बैठ पाए। और गानों के बोल बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बलिया में ददरी मेला लगता है, हर साल कार्तिक पूर्णिमा से वो मेला शुरू हो जाता है और 1 महीना चलता है। उस मेले में गुड़ की जलेबी और गांव की महीन कारीगरी डलिया सूप और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। शादी के बाद मेरठ में नौचंदी मेला लगता है जो रात के टाइम लगता है और पूरी रात चलता है। इस मेले में नौटंकी भी आप देख सकते हैं और संगीत भी सुन सकते हैं। सचमुच एक ज़माना था जब मेले में नौटंकी भी खेली जाती थी, तो नौटंकी देखने के लिए अलग से घर वालों से परमिशन लेना पड़ता था। आपके साथ भी ऐसा हुआ?

एक श्रोता ने लिखा है कि 90 के दशक में हमारे इंदौर शहर के गांधी हॉल में सावन का मेला लगता था और उस मेले में हर सोमवार को बहुत भीड़ होती थी। इस मेले की सबसे बड़ी खासियत पीपल के पेड़ पर रस्सी पर बंधा हुआ पटिया लगा हुआ झूला हुआ करता था। अब बहुत सारे श्रोताओं ने शब्द लिखे हैं, सपने, वादा, वफा, कांटे, दुनिया, दिन वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने लिखा है, प्रेम की भावना को इस सतर्क दृष्टि से जीना कि वो अंततः सुखद होगी या दुखद। प्रेम है, प्रेम है ही नहीं, क्योंकि प्रेम सिर्फ प्रेम होता है। टूटने बिखरने की पीड़ा, धोखे का दर्द और प्रेम की राह पर आने वाले धूप छांव, इन सब से इतर वो जब होता है तो बस होता है। आप चाहें न चाहें वो आपके साथ हो लेता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमें जीवन की सच्चाई समझ आने लगती है। शांत स्वभाव यूं ही नहीं हो जाता, परिस्थिति और जीवन की समझ आपको राख में परिवर्तित करके आपके मन को ठंडा रखती है। प्रेम और जीवन का कोई बदलाव फिर आप पर असर नहीं करता, आप हर समय चुपचाप चलना सीख जाते हैं। चलिए अब सुनते हैं ये गाना, बूझे कौन है हीरो और बूझे गीतकार का नाम। हीरो का नाम फटाफट बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। फिल्म है दिल ने पुकारा।

दिल ने पुकारा। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। रचना थी इंदिवर की, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। इसका जवाब हमारे श्रोताओं ने सही दिया और कलाकार का नाम भी बिल्कुल सही लिखा है, शशि कपूर। हालांकि इस गाने में वफा शब्द आता है जो हमारी इबारत में है, लेकिन असल में तो है बेवफाई का गाना। तो आपको अभी कौन सा गाना सुनना है? इस समय आपके जहन में कौन सा शब्द और कौन सा गाना गूंज रहा है? हम जो सुनवाने जा रहे हैं यही या कोई और, ज़रा ये बताइएगा। और जो भी गाना सुनवाएंगे उससे जुड़े हुए कौन से गाने आपके जहन में कौन थे ये भी बताइएगा। फिलहाल आपने क्या लिखा है ज़रा हम बता दें। ज़िंदगी किसी किताब की तरह नहीं, एक हम सफ़र की तरह होती है। हर दिन एक नया पन्ना नहीं, एक नया एहसास देती है। जो उसकी हर बात को दिल से सुन ले, उसके सफ़र में शिकायतें कम और मुस्कानें ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन अगर बात बेवफाई की हो तो फिर शिकायतें ही शिकायतें। ज़रा सुनिए ये गाना और बताइए इस समय आपके जहन में कौन से गाने आ रहे हैं जिसमें वफा शब्द हो और बेवफाई भी हो। फिल्म थोड़ी सी बेवफाई, हीरो हीरोइन का नाम बूझना है और गीतकार का नाम।

थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में गुलजार के बोल थे, खयाम का संगीत था। और अब मेले का जिक्र चला तो हमारे बहुत सारे श्रोता, यूं कहें कि सभी श्रोता मेले में चले गए हैं और मेले से निकल नहीं पा रहे हैं, हमें ऐसा लगता है। चलिए हम भी गुम हो जाते हैं उसी मेले में। अब एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेले में जाना, जलेबी खाना, मिट्टी की गोलक, लकड़ी का घोड़ा बचपन में लेना नहीं भूलता था। एक श्रोता ने बड़ी अच्छी बात लिखी है, लिखा है कि हामिद का चिमटा याद आया, दादी की कहानियाँ याद आई। तो अब हामिद के चिमटे से मुझे प्रेमचंद की कहानी याद आई, तो ज़रा आप बताइए कि ये जो हामिद का चिमटा, हामिद चिमटा ले जाते हैं अपने दादी के लिए, सारे बच्चे बहुत सारे खिलौने खरीदते हैं मेले में जाकर, और ईद का त्यौहार है और हामिद अपना जो पैसा बचाता है और अंत में दादी के लिए चिमटा खरीदता है और अपने दोस्तों में बहुत पुल बांधता है, डींग हाँकता है, देखो मैं तो कितनी अलग तरह की चीज़ खरीदता हूँ। तो पहले सारे बच्चे उपहास करते हैं, हंसी उड़ाते हैं, लेकिन बाद में उस चिमटे के लिए ललक दिखती है बच्चों में। तो बहरहाल अब आप ज़रा बताइए, थोड़ी सी कहानी भी मैंने बता दी, तो कौन सी कहानी है? अब आपको कहानी का शीर्षक पूछना है। हाँ, हमें आपके जवाब का जल्द इंतज़ार रहेगा। अगर आपने पढ़ी होगी कहानी तो ज़रूर बता सकते हैं। और अब एक श्रोता लिख रहे हैं कि बाजार का मेला और जीवन के मेले में बहुत अंतर है। दुख सुख मान अपमान सभी तरह के अनुभव होते हैं, लेकिन ये जीवन है। दरअसल ये दुनिया भी तो एक मेला है। इस मेले में हम सब कहीं कई बार गुम हो जाते हैं, बस उसी मेले से निकल बाहर आते हैं और अपनी राह चुनते हैं। राह चुनने के लिए कई बार अवरोध भी पैदा होता है। तो आप ये भी बताते चलिए हमें कि क्या कभी आपने कोई राह चुनी मंजिल के लिए और किसी अवरोध का, किसी स्पीड ब्रेकर का सामना करना पड़ा? मतलब बहुत सारे टोक टाक घर वालों ने वो मंजिल जाने पर, मंजिल तक पहुंचने पर ब्रेक लगा दिया हो और कहा हो कि नहीं, इस रास्ते से आप नहीं चलेंगे। तो ये बताते चलिए। और मुझे लगता है कि इस बात से जुड़ा हुआ कोई गाना आपके जहन में आ रहा होगा जो हमारी इबारत में है शब्द, तो वो भी आप बता सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि गोराई बीच के पास जहाँ विविध भारती मुंबई रेडियो स्टेशन है, उसके पास एसएल वर्ल्ड है, कहीं पर बहुत सारे राइड्स हैं, उनमें से रेनबो में बैठे थे। जब ऊपर जाते तब तो ठीक था, लेकिन जब नीचे सीधा उल्टा आता था तो सांस फूल जाती थी। तब 55 राइड थी उसमें और उनमें से 50 राइड्स में हम सब बैठे थे, लेकिन उसके बाद जाने का नाम नहीं लिया। अब तो बहुत सारे राइड्स हैं।

ऐसे राइड्स हैं कि जिसमें जो ट्रेन की शक्ल में है जो चलती है, तो फिर ऐसी चीख सुनाई पड़ती है कि आप एकदम डर से कांप जाएं। बहरहाल अपने अपने अनुभव, लेकिन वो जो असली मेला लगता था खुले मैदान में, बहुत सारी चीज़ें होती थीं, बहुत सारे लोग मिलते थे और एक दूसरे से सुख दुख साझा करते थे, उस मेले की बात ही अलग है। अब कहाँ है वो मेला? एक श्रोता ने लिखा है कि मैं 6 वर्ष का था तो पिताजी की उंगली पकड़कर चला जा रहा था। एक छोटा पड़ा हड्डी का टुकड़ा उठा लिया, भीड़ में पिताजी ने अपने कंधे पर बिठा लिया। उस 5 इंच के टुकड़े से मैं अपने पिता के सिर पर टक टक बजाता जा रहा था। उन्हें बुरा लगा तो उन्होंने नीचे उतार दिया और फिर उन्होंने मुझे नीचे उतार दिया और थोड़ी देर के लिए बहुत नाराज़ हो गए। ऐसी तमाम बातें श्रोता याद कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि अब तो 24 घंटे मेला मोबाइल में लगा रहता है, सभी तरह के तमाशे और सभी तरह की ख़रीदारी हो सकती है। तो ऐसे में कौन सा वाला मेला आपको अच्छा लगता है? वो वाला मेला, बचपन वाला, ये, या फिर मोबाइल वाला मेला? एक श्रोता ने लिखा है कि मेले में लगने वाले ऊँचे झूले पर आज तक नहीं बैठे। एक श्रोता लिख रहे हैं कि अभी बिहार में राजगीर में अधिक मास का मेला लगा था जो 1 महीने तक चला। एक श्रोता ने लिखा है कि सावन के मेले, दिवाली के मेले, दशहरे का मेला और भी बहुत सारे मेले देखे। बचपन में गुड्डे गुड़िया, चरखी फिरकी आदि, मिट्टी के लकड़ी के खिलौने, गुल्लक आदि खरीदते थे, पर अब तो भीड़ भाड़ से भी डर लगता है। अब भीड़ भाड़ का भरोसा भी नहीं रहा कि कब कौन आपके पैर कुचल के आगे बढ़ जाए, क्योंकि अब वो संवेदना कम हो रही है लोगों में। इस संवेदना को बचाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? बहरहाल बात हमने पूछी थी आपसे कि जब आप कोई राह चुनते हैं तो उस राह पे चलते हुए क्या कभी कोई अवरोध पैदा किया किसी ने, आपके परिवार ने, समाज ने, ये बताइए। और साथ में ऐसा ही एक गाना और बताइए जो इस गाने से मेल खाता हो। और हाँ, एक सवाल और था, हामिद का चिमटा दादी के लिए, प्रेमचंद की लिखी ये कौन सी कहानी है? फिल्म तपस्या है, आपको पूछना है साथ में हीरो हीरोइन का नाम। बहुत सारे सवाल हैं एक साथ, देखते हैं कौन कौन से सवालों के जवाब आप दे पाते हैं।

उस राह पे राह ही चलते जाना रे तपस्या फिल्म का गाना था और हमने पूछा था कौन है हीरो हीरोइन। सभी श्रोताओं ने सही और त्वरित जवाब दिया, राखी और परीक्षित साहनी। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे हायर एजुकेशन के लिए सिटी से बाहर जाना था लेकिन दादा दादी ने रोक लिया, यही पढ़ाई करो, बाहर नहीं जाने मिला। और एक श्रोता ने लिखा है कि ज़िंदगी एक सफ़र है जिसमें विभिन्न पड़ाव आते हैं, उन पड़ावों से गुजरते हुए कई मुकाम आते हैं, आज के सफ़र में वही यादों का सफ़र है। एक श्रोता ने लिखा है कि रिटायर्ड होने के बाद जब गुजरी ज़िंदगी का हिसाब देखता हूँ तो पता चलता है कितनी कठिन थी ये ज़िंदगी, लेकिन पत्नी का साथ और ईश्वर के आशीर्वाद से आरामदायक रही ज़िंदगी। और अब जो हमने सवाल पूछा था उसकी बारी है, हामिद का चिमटा दादी के लिए जो लाना होता है वो किस कहानी का शीर्षक है, मतलब कहानी का शीर्षक हमने पूछा था, प्रेमचंद की लिखी कहानी। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ईदगाह। और हमें लगता है बचपन में सभी ने ये कहानी पढ़ी होगी और पढ़ने की शुरुआत ईदगाह से होती है और बहुत सारे पाठ्यक्रम में भी शामिल थी ये तो कहानी। एक श्रोता लिख रहे हैं कि ईदगाह की कहानी हमारे हिंदी की किताब में होती थी, हामिद की माँ हाथ रोटी सेकते हाथ जलता जल जाता था, 3 रुपए का चिमटा खरीद लाए थे। दरअसल हामिद की माँ नहीं, हामिद की दादी थी। हामिद के माता पिता बचपन में ही नहीं रहे और इस वजह से दादी ने पाला था और बहुत गरीबी में पाला था और दादी का भी उसमें बहुत, दादी की संवेदना है कि वो

0: हामिद को ईद के दिन क्या तोहफ़ा दें, क्या लाएं और हामिद के लिए ईद किस तरह से खुशगवार हो, यहाँ दादी सोच रही होती हैं और हामिद अपनी दादी के लिए चिंतित होता है कि दादी का हाथ जलता। बहरहाल एक श्रोता लिख रहे हैं कि प्रेम कोई साधारण भावना नहीं बल्कि आत्म अन्वेषण की एक गंभीर और दीर्घ यात्रा है। प्रेम अपने भीतर अनेक विरोधाभासों को समेटे रहता है जो अपने स्वरूप को प्रकट भी करते हैं। प्रेम अपार आनंद का स्रोत होने के साथ ही विरह और पीड़ा का अनुभव भी कराता है। दरअसल प्रेम में फूल होते हैं तो कांटे भी होते हैं और फूल के साथ कांटों का साथ होना बहुत स्वाभाविक है। और जो सबसे अच्छा सुंदर फूल लगता है उसमें तो कांटे ही रहते हैं, गुलाब का फूल। ऐसे और कौन से फूल हैं जिनमें कांटे होते हैं, बता सकते हैं आप? फिलहाल हम आपको सुनवा रहे हैं ये गाना।
1: फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली।
0: फिल्म का नाम जरा बताइए।
1: मिले ना फूल

अनोखी रात फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, कैफी आज़मी के बोल रोशन का संगीत था और सभी श्रोताओं ने बगैर पूछे ही बताया है परीक्षित साहनी, जाहिदा सही बताया है, फिल्म थी अनोखी रात। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं प्रयागराज की रहने वाली हूँ, यहाँ कुंभ मेला लगता है तो बड़ा आनंद आता है। बहुत सारे श्रोताओं ने प्रयागराज कुंभ मेले की बात लिखी है और एक श्रोता ने लिखा है कि सपने ही सपने कब हुए अपने, आँख खुली और टूट गए, नींद के सपने हकीकत में बहुत अंतर होता है, कई बार सपने बुनने में आनंद भी आता है और सपने जब दो लोग मिलकर साथ साथ पूरे करते हैं तो उस सपने की बात ही अलग होती है। ज़रा बताइए कौन है वो दो लोग जो मिलकर सपने बुन रहे हैं, फिल्म लव स्टोरी, हीरो हीरोइन का नाम आपको बूझना है। लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ें, हीरो हीरोइन का नाम बताइए जल्द।

फूलों के शहर में घर अपना, भाई सपने वाला ये गाना था। बहुत सारे सपने अधूरे वाले गाने भी हैं और हमारी इबारत में सपना शब्द था। लव स्टोरी फिल्म का गाना लता मंगेशकर, अमित कुमार की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल। और पूछा था हमने हीरो हीरोइन का नाम, सभी ने फौरन बताया कुमार गौरव, विजेता पंडित। एक श्रोता ने ये भी लिख डाला है कि प्रमुख कांटे वाले फूलों के नाम भी बता दिए, गुलाब है, बोगनविलिया है और बहुत सारे नाम इन्होंने लिख भेजे हैं। और लाल, गुलाबी, पीले रंग के छोटे आकर्षक फूल खिलते हैं और ऐसे कैक्टस फ्लावर्स, पौधे की पूरी सतह पर कांटे होते हैं। लेकिन अब वक्त नहीं कि हम पूरी टिप्पणी इनकी पढ़ें। हम शुक्रिया अदा करते हैं इस जानकारी के लिए। अब इतना बता दें, आज का सुरीला सफ़र का सफ़र आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। बस आज का सफ़र इतना ही।

श्रोताओं नमस्कार, आज है कारगिल विजय दिवस। आप सभी को कारगिल विजय दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और आज की त्रिवेणी इसी विषय पर। 26 जुलाई भारत के इतिहास का बहुत बड़ा गौरवशाली दिन है। 1999 में भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त की और दुनिया के समक्ष अपनी वीरता, साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। इसी ऐतिहासिक जीत की स्मृति में हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं कारगिल विजय दिवस। कारगिल युद्ध मई से जुलाई तक चला, सन 1999 में, लगभग 60 दिनों तक। ये 60 दिन हमारी सेना ने पूरी वीरता के साथ, पूरे संघर्ष के साथ युद्ध किया। पाकिस्तान समर्थित घुसपैठियों ने कारगिल, द्रास, बटालिक और टोलोलिंग की ऊंची चोटियों पर कब्जा जमा लिया था। ये कब्जा हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता था, क्योंकि इन क्षेत्रों का सामरिक महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण था। श्रीनगर लेह राजमार्ग पर इन क्षेत्रों से निगरानी रखी जा सकती थी और यह सिद्ध हो सकता था घातक भारत की राजधानी के लिए भी।

परेशान है तू। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय और भारतीय वायु सेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के माध्यम से दुर्गम पहाड़ों, शून्य से नीचे तापमान और अत्यंत कठिन परिस्थितियों में अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन किया। टाइगर हिल जैसी महत्वपूर्ण चोटियों पर पुनः तिरंगा फहराकर हमारे वीर जवानों ने विजय का इतिहास रचा। इस युद्ध में भारत के 527 वीर सैनिक शहीद हुए। कैप्टन विक्रम वत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और राइफलमैन संजय कुमार जैसे वीरों ने असाधारण साहस का परिचय दिया। कैप्टन विक्रम वत्रा का नारा ये दिल मांगे मोर आज भी भारतीयों के हृदय में जोश भर देता है। हम सभी इन वीरों की वीरता को प्रणाम करते हैं। 527 वीरों के श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

कारगिल विजय केवल एक सैन्य सफलता नहीं थी, बल्कि यह भारत की एकता, दृढ़ इच्छा शक्ति और सैनिकों के अदम्य साहस की विजय थी। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारी सुरक्षित सीमाओं को और शांतिपूर्ण जीवन के पीछे हमारे सैनिकों का त्याग और बलिदान है। आइए इस अवसर पर हम उन सभी वीरों को श्रद्धापूर्वक नमन करें। राष्ट्र की एकता, अखंडता और सम्मान को बनाए रखने का संकल्प लें। सरहद पर खड़े हुए प्रत्येक वीर को हम सभी धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कुछ ये कि सरहद पर खड़े सैनिक केवल भूमि की रक्षा नहीं करते, वे करोड़ों भारतीयों के सपनों, विश्वास और भविष्य की भी रक्षा करते हैं। सभी वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि और हमारी रक्षा में अडिग अचल खड़े हुए प्रत्येक जल थल नभ के सैनिक को हम सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया, कहा देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
1: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है।
1: ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए, हर देशवासी

0: भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीते। हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की है।
1: श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है।
0: पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है।
1: श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की।
0: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
1: प्रधानमंत्री ने जापान में कार्यरत खगोल भौतिक विज्ञानी मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम का भी उल्लेख किया।
0: मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है।
1: देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
0: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
1: श्री मोदी ने त्रिपुरा के चोंगप्रिंग वाद्य यंत्र के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री देव वर्मा के प्रयासों की सराहना की।
0: कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूँ। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है।
1: मंत्री ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी बात की।
0: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
1: श्री मोदी ने सभी से हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले MyGov पोर्टल पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों

0: नमन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वीर सैनिकों का शौर्य सदैव राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख के द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर 27वें करगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीदों के परिजन भी उपस्थित थे। श्री सिंह ने कहा कि करगिल युद्ध भारत की सैन्य और कूटनीतिक विजय के साथ निर्णायक क्षण भी था, जब दुनिया ने भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और शौर्य को देखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह दिवस भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और असाधारण वीरता का प्रतीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने करगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि करगिल युद्ध भारतीय सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री प्रह्लाद जोशी को पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के बाद ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को काला सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन करने का परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। इन जल क्षेत्रों से गुजरने वाले जहाजों को मिसाइल और ड्रोन हमलों सहित गंभीर सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। परामर्श में कहा गया है कि सहायता के लिए भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावासों से संपर्क किया जा सकता है। रूस में भारतीय दूतावास का आपातकालीन संपर्क नंबर +7 9652 77 3414 है और यूक्रेन में +38 09 33 55 9 58 है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ओडेसा बंदरगाह पर कल एक मालवाहक पोत से जुड़े घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए हैं। दूतावास ने बताया कि MV AGN रेगनर पोत पर 4 भारतीय सवार थे, इनमें से 2 भारतीय सुरक्षित हैं। दूतावास ने कहा कि तलाश और बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में अगले 2-3 दिन मूसलाधार बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। श्री सोनोवाल इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही असम को विशेष महत्व दिया है। श्री सोनोवाल ने कहा कि एक अंतर मंत्रालयीय दल भी राज्य के दौरे पर है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद आवाजाही दोबारा बहाल होने पर आज तड़के 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू आधार शिविर से बालतल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 166 वाहनों का काफिला है। और अब खेल खबरें। डोरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता आज से झारखंड की राजधानी रांची में शुरू हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रतियोगिता का पहला मैच आज शाम बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेला जाएगा।
1: एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट 135वें डोरंड कप का भव्य आगाज आज राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होने जा रहा है। खेल नगरी रांची पहली बार इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय फुटबॉल महाकुंभ की मेजबानी कर रही है। आज शाम होने वाले इस ऐतिहासिक उद्घाटन मुकाबले में इंडियन सुपर लीग की टीम जमशेदपुर FC का मुकाबला श्रीलंका की मेहमान टीम डिफेंडर FC से होगा। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहकर खेल का विधिवत शुभारंभ करेंगे। स्थानीय दर्शकों में फुटबॉल के प्रति जबरदस्त उत्साह को देखते हुए प्रशासन ने मैच के लिए 0 टिकट यानी निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालीम को हराकर उन्होंने ये खिताब जीता।

0: इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों ने अनाहत को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस जीत को अभूतपूर्व और हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अनाहत की जीत भारत के युवाओं और नारी शक्ति के लिए प्रेरणादायक है। खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि अनाहत सिंह ने देश को गौरवान्वित और देश के युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया। कहा, देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा, खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी। और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह।

आकाशदीप फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था। फिल्म है जब जब फूल खिले, मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए।

0: कोहरा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज में। कैफी आजमी के बोल थे, हेमंत कुमार का संगीत था।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 27 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: टूटा पर एक झनकार लाया हूँ अगर सुन ले।
1: एक राज फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था।

भीगी रात फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार रोशन। छोटी छोटी बातें, ये नाम फिल्म का है। इसी फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। रचना है शैलेंद्र की।

0: हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 3 बजने को है कुछ ही देर में आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा,
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। pmsuryaghar.gov.in पर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैच द रेन अभियान में गांव और शहरों से लेकर पंचायतों व सामाजिक संगठनों की जबरदस्त भागीदारी पर प्रसन्नता जताई है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अभियान के तहत पुराने तालाबों से गाद हटाई जा रही है और कुओं व बावड़ियों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान पूरे देश में 4 जुलाई से चलाया जा रहा है।
1: रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
0: हर घर तिरंगा अभियान की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस अभियान ने पिछले कुछ वर्षों में पूरे देश को एकजुट किया है। प्रधानमंत्री ने प्लास्टिक प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का कचरा प्रकृति के लिए नुकसानदेह बना हुआ है। प्रधानमंत्री ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर वीर शहीदों को भी याद किया। इस बीच कारगिल विजय दिवस के मौके पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। चंबा में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया सहित अन्य गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे। नाहन में सांसद सुरेश कश्यप सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हमीरपुर में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा कि सरकार शहीदों के परिजनों, भूतपूर्व सैनिकों और सेवारत सैनिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्र की एकता, अखंडता और देश की सुरक्षा के लिए सदैव समर्पित रहने की शपथ भी दिलाई गई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभाल लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल उन्हें नया शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रहलाद जोशी ने नई जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। चंबा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला आज से शुरू हो गया है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने इस 8 दिवसीय मेले का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर चंबा शहर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। राज्यपाल ने भगवान लक्ष्मीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद भगवान लक्ष्मी नारायण को हाथ से बनी जरी की मिंजर अर्पित की। उन्होंने प्रदेशवासियों को मेले की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये मेला हमारी अद्भुत व समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है।
2: ये अच्छा है कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने मिंजर मेले के माध्यम से इसकी एग्जिस्टेंस से उसको छजो करके रखा है। मैं चाहता हूँ कि और भी प्रयास होना चाहिए, जिस प्रकार से अद्भुत मेला हुआ, पूरी यहाँ की जनता इसमें भाग लेती है, इसी प्रकार से हिमाचल में और भी जगह बहुत से ऐसे मेलों के आयोजन में मुझे जाने का मौका मिला है। तो मुझे लगता है आने वाली जनरेशन जो हमारी है, युवाओं को इसमें डाल करके, ताकि वो धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति हमेशा से जागृत रहे।
0: मिंजर मेला 2 अगस्त तक चलेगा। राज्यपाल आज शाम मेले की पहली सांस्कृतिक संध्या में भी शिरकत करेंगे। शिमला

0: जिला के नारकंडा में आज विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान लोगों को विभिन्न कानूनी विषयों सहित उनके अधिकारों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय ठाकुर ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पात्र लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि कोई भी व्यक्ति आर्थिक या सामाजिक कारणों से न्याय से वंचित ना रहे। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पौधारोपण भी किया गया। राज्य सरकार ने करुणामूलक रोजगार नीति के तहत इस महीने ग्रुप सी के 94 कर्मचारियों को नियुक्ति दी है। ये नियुक्तियां जल शक्ति, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, गृह और बागवानी विभागों में दी गई हैं। सरकार ने विभागों को करुणामूलक नियुक्ति के वास्तविक मामलों को प्राथमिकता के आधार पर भेजने के निर्देश दिए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार सरकार करुणामूलक रोजगार के पात्र मामलों के जल्द निपटारे के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। राजधानी शिमला सहित अन्य स्थानों पर पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बिलासपुर, मंडी, सोलन और सिरमौर जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 6 बजे। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है सामयिक चर्चा। विषय है मृदा संरक्षण, खेतों की सुरक्षा। वाचक स्वर राकेश शर्मा का है।
0: मृदा भारत की कृषि प्रणाली की नींव है, जो फसल उत्पादन, इकोसिस्टम के संरक्षण और आजीविका को सुरक्षा प्रदान करती है। देश का 46% से अधिक कार्यबल कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों में लगा हुआ है। मृदा के स्वास्थ्य का ग्रामीण आय, खाद्य प्रणालियों और समग्र आर्थिक स्थिरता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इस रणनीतिक महत्व को पहचानते हुए भारत ने सतत मृदा और भूमि प्रबंधन पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। मृदा संरक्षण, खेतों की सुरक्षा के इस रणनीतिक महत्व को पहचानते हुए भारत ने सतत मृदा और भूमि प्रबंधन पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। राष्ट्रीय स्तर के प्रयासों में जलवायु लचीलापन, प्राकृतिक खेती, मृदा मानचित्रण और डिजिटल कृषि शामिल है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन जैसी पहल जलवायु अनुकूल और संसाधन कुशल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना मृदा परीक्षण और सलाह सेवाओं के माध्यम से संतुलित पोषक तत्वों के उपयोग का समर्थन करती है। ये प्रयास पारंपरिक कृषि पद्धतियों के से आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर विकसित हो रही मृदा विज्ञान की यात्रा को दर्शाते हैं। संस्थागत पहल के साथ साथ खेत बचाओ अभियान जैसी हालिया जागरूकता पहल भी जन भागीदारी को मजबूत कर रही है। इससे मृदा संरक्षण, उर्वरकों के संतुलित उपयोग और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा मिल रहा है। भारत की विविध जलवायु, भूवर्गीय संरचना और भू आकृति के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो क्षेत्र विशिष्ट कृषि पद्धतियों का समर्थन करती है। ये मृदा अपनी संरचना और उर्वरता में भिन्न होती है, जिससे विविध फसल पैटर्न संभव होते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में कृषि की अनुकूलन क्षमता बढ़ती है। राष्ट्रीय स्तर के प्रयासों में जलवायु लचीलापन, प्राकृतिक खेती, मृदा मानचित्रण और डिजिटल कृषि शामिल है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन जैसी पहल जलवायु अनुकूलन और संसाधन कुशल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना मृदा परीक्षण और सलाह सेवाओं के माध्यम से संतुलित पोषक तत्वों के उपयोग का समर्थन करती है। ये प्रयास पारंपरिक कृषि पद्धतियों से आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर विकसित हो रही मृदा विज्ञान की यात्रा को दर्शाते हैं। मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक कार्बन सिंक के रूप में कार्य करके जलवायु परिवर्तन के शमन और अनुकूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मृदा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है और इसे मृदा कार्बनिक कार्बन के रूप में संग्रहित करती है। ये प्रक्रिया वनस्पति वृद्धि, जड़ों और मृदा सूक्ष्म जीवों द्वारा सुगम होती है। संग्रहित कार्बन लंबे समय तक मृदा में रह सकता है, जिससे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को कम करने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त मृदा कार्बनिक कार्बन का उच्च स्तर मृदा की संरचना में सुधार करता है, नमी बनाए रखने की क्षमता को बढ़ाता है और पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाता है। इससे मृदा की उर्वरता और जलवायु परिवर्तनशीलता के प्रति सहनशीलता और मजबूत होती है।

0: सबसे मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों में से एक बनी हुई है, जो कृषि, आजीविका और खाद्य सुरक्षा को संबल प्रदान करती है। वैज्ञानिक मूल्यांकन, टिकाऊ कृषि पद्धतियां और उन्नत पोषक तत्व प्रबंधन इसके दीर्घकालिक स्वास्थ्य को मजबूत कर रहे हैं। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन जैसी पहल के माध्यम से देश वैज्ञानिक और टिकाऊ मृदा प्रबंधन को बढ़ावा दे रहा है। मृदा स्वास्थ्य में सुधार के प्रयासों ने संतुलित पोषक तत्वों के उपयोग, उन्नत संसाधन दक्षता, कार्बन भंडारण और जलवायु अनुकूल खेती को प्रोत्साहित किया है। इसके साथ ही भूस्थानिक मानचित्रण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कृषि प्लेटफॉर्म अधिक सटीक और डेटा आधारित कृषि निर्णयों को सक्षम बना रहे हैं। खेत बचाओ अभियान जैसे प्रयासों से जागरूकता बढ़ने के साथ ही भारत एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संसाधन के रूप में मृदा की वास्तविक क्षमता को निरंतर सामने ला रहा है। इसके साथ ही सामूहिक चर्चा सम्पन्न हुई। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 3:10 हुए हैं। अब सुनिए आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये था सूरज फिल्म का गाना। रचना थी हसर जयपुरी की, संगीतकार थे शंकर जयकिशन और फरमाइश थी आप सभी की कमरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार और इनके साथी। और इसी गाने की फरमाइश थी नेकी राम बासीवाल, जॉनी बासीवाल, धनराज बासीवाल की, श्री गंगानगर से, दमणी मानोरा से पेंटर तुलसी राम डेरे, मायावती डेरे, पेंटर संदेश डेरे, आदेश, किरण प्रज्वल और अनुत डेरे की फरमाइश थी। सुनिए अगला गाना, ये अपनी ही फरमाइश पर।

कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश लोकेश देवांगन, आशीष रवि शनी कान्हा और आदित्य, इसी गाने की फरमाइश भेजी थी आप सभी ने। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से रवि कुमार, राहुल, रणजीत और प्रियंका, जयप्रकाश, राहुल, नूर, नमन, सिमरत, गुरमीत, गुरुशब्द, राहुल, यहीं से मतलब जिला अंबाला से। आप सुन रहे थे रखवाला फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में। इंदिवर के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी का संगीत था। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत आप सभी की पसंद का। ये गीत फिल्म का गीत है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें थी, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत और फिल्म थी गीत। गीत को सुनना चाहा था आप सभी श्रोताओं ने। कर्नाटक चिन्ना तिरुपति से प्रकाश श्यामला, अश्विनी, रमेश, आनंद, अन्वित और इनके परिजन। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से प्रमिला श्याम कुंवर, अनुश्री श्याम कुंवर, अशोक श्याम कुंवर, दीपक और

महबूबा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। शब्दकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन, पसंदकर्ता हमारे ये श्रोता थे छत्तीसगढ़ बोर तालाब से शत्रुघ्न लाल यादव, गौतम यादव, संगीता यादव और सचित यादव, अलीवाड़ा तामिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से देवी राम इनावती, दामिनी इनावती।

तुमसे अच्छा कौन है, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। रचना थी हसरत जयपुरी की, संगीतकार थे शंकर जयकिशन, और फरमाइश भेजी थी इस गाने के लिए आप सभी श्रोताओं ने गांव कोटगा बहादुर जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से तूफान पटेल, टीना डांगी और लक्षित डांगी ने। इसी गाने की फरमाइश आई थी आप सभी की ओर से राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद, अखिला प्रसाद।

नील प्रसाद और इनके परिवार की ओर से चांदनी चौक गवई पढ़रिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, रविंद्र रौनक सेन और इनके साथियों की ओर से आई थी फरमाइश। अब आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

नाट्य तरंग आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक वो आएगी। इसके लेखक हैं तस्वीर आबिदी, निर्देशन किया जयदेव शर्मा कमल ने। तो आइए सुनते हैं नाटक वो आएगी।

0: बच्ची कुछ कहना चाह रही है।
1: इतनी जोर से कॉफी हाउस में नहीं हंसा जाता।
0: नहीं नहीं हंसा
2: जाता। इस कॉफी हाउस के गोशे की बहस पर ये तीन अजनबी, तीन दिमाग, तीन अलग अलग विचार रखने वाले तीन इंसान एक साथ इस तरह घुल मिल कर बातें कर रहे हैं, क्या ये एक इत्तेफाक है या ये तीनों एक दूसरे को बरसों से जानते हैं? जी हाँ, यही है वो बुनियादी प्रश्न, एक ऐसी गुत्थी जिसको ये तीन दिमाग सुलझाना चाहते हैं। इस कहानी और इस कहानी के सभी पात्र फर्जी तो हैं, लेकिन इसका मकसद, इसकी आत्मा मोहब्बत है। और आज का इंसान इस छोटे से शब्द के दामन में छुपे हुए संसार के सबसे बड़े उस सुख से दूर होता जा रहा है जो परमात्मा का धरती पर मानव के लिए एक ऐसा वरदान था जिसका स्वाद जानने के लिए ईश्वर के अवतारों को अपनी जन्म कुंडली का सूत्र धरती से जोड़ना पड़ा।

0: आज भाई भाई का दुश्मन क्यों?
1: क्या ये मोहब्बत फिर लौट कर नहीं आएगी?
2: वो आएगी।
3: ये कौन है?
2: वो आएगी।
3: आखिर ऐसे क्यों घूमता है?
2: वो आएगी।
4: काफी साहब,
5: मेरे दोस्त, तुम किस सोच में पड़ गए? क्या मनोविज्ञान के किसी चैप्टर में खो गए?
6: कुछ नहीं, वो आएगी। महानगरीय शोर शराबे के सीने को चीरती हुई ये आवाज तुमने सुनी?
5: हाँ, मैंने भी सुनी।
6: आखिर वो किसको बुलाता है?
5: देखो दोस्त, मैं तुम्हारी तरह फलसफी तो हूं नहीं।
7: हाँ भाई, एक सियासी आदमी फलसफी हो भी कैसे सकता है?
5: मेरा नजरिया है कि वो यकीन की उस रोशनी की तरफ इशारा कर रहा है जिसकी हर किरण प्रेम का पैगाम है। वो सत्य है जिसकी गगनचुंबी इमारतें ऋषियों, मुनियों और महात्माओं के उपदेशों के आधार पर खड़ी है।
1: हो सकता है मेरे दोस्त, तुम्हारा नजरिया, तुम्हारे विचार सही हो,

0: लेकिन सच पूछो तो ये एक विज्ञान का दौर है। अब हम जमीन की बातें कम और आकाश की ज्यादा कर रहे हैं। जरा सोचो, मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने ऐसे ऐसे रहस्यों को उद्घाटित किया है
1: जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते।
2: हाँ, ये तो है,
3: ये तो है।
0: आइए मैं आपको उस जगह ले चलूं जहां इस कहानी ने जन्म लिया।

0: बस करो सुधीर।
1: सुहेलियर, काफी अरसे के बाद हम एक दूसरे से मिले हैं, और वो भी एक अजीब बात के सिलसिले में। खैर छोड़ो, फिर किसी वक्त बताऊंगा। तुम अपनी सुनाओ, शादी वादी भी की? अरे हाँ, ठीक याद आया, तरन्नुम और तुम्हारे डैडी।
0: तुमने बहुत से सवालत कर डाले।
2: कोई डॉक्टर।

0: ओ गॉड, बेचारा, देखो कितनी बुरी तरह जख्मी हुआ है। एक इंसान के खून की
1: कहानी इसी सड़क पर खत्म हो जाती है जहां से
0: कहानी। ओह, मगर तुम इधर कहां जा रहे हो? क्या घर?
1: हाँ,
0: क्यों?
1: कुछ नहीं।
0: ओह, तो तुम काफी सीरियस हो रहे हो, इसकी वजह
1: है मेरे दोस्त।
0: तो क्या तुम मुझको नहीं बताओगे?
1: जरूर बताऊंगा। सो गया मेरे बचपन का दोस्त, बिल्कुल नहीं बदला। और मैं कितना बदल गया हूं। उफ, कितना थक गया हूं मैं। जीने की तमन्ना नहीं, अभी तो मुझे फौजिया की निशानी, मेरी अपनी बच्ची फौजी की परवरिश करना है। कितनी शरीर है। कौन? ओह, कुछ नहीं, मेरा वहम। आज मुझे फौजिया की याद फिर सता रही है। फौजिया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। तुम्हारी और फर्रुख की मोहब्बत कितनी सच्ची थी। कौन? कुछ भी तो नहीं। आज कितना डर लग रहा है मुझे, अंधेरा भी तो छाया है। मेरी पूरी जिंदगी ही तारीख हो चुकी है। मैं पापी जो हूं, आज मेरा समीर खुद मुझसे नफरत करने लगा है। मैंने सुलभ तो किए हैं अपनी फौजिया पर।

0: शायद जिंदगी भर अब मैं इन गुनाहों की आग में सुलगता रहूं। फौजिया, मेरी फौजिया, मुझे माफ कर दे। और फर्रुख, हो सके तो तू भी इस गुनहगार को बख्श दे। फौजिया, फौजिया, माफ कर दे मेरी फौजिया, वो पागल है। तू आएगी, जरूर आएगी, जरूर आएगी।
1: सुहेल, सुहेल, होश में आओ, ये क्या?
0: मुझे मुझे माफ कर दे फौजिया, तुझे अब अपनी निशानी की कसम।
1: होश में आओ सुहेल, क्या बात है? बोलो बोलो, कौन फौजिया, कैसी निशानी?
0: माफ करना सुधीर, मुझे मुझे डर लग रहा है।
1: क्या बात है, क्यों डर रहे हो? फौजिया कौन है?
0: कुछ नहीं सुधीर, बस डर, बस।
1: नहीं नहीं नहीं, छुपा नहीं सकते, बताओ क्या बात है? तुम शाम से ही उदास हो, तुम्हें मेरी कसम, सच सच बताओ, शायद मैं तुम्हारे।
0: शुक्रिया सुधीर, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, हमदर्द हो। मैं तुम्हें बताऊंगा, सब कुछ बताकर अपना गम हल्का करूंगा।
1: शायद उस पागल के एक्सीडेंट ने तुम्हारे दिमाग पर गहरा असर छोड़ा है, तुम उसी वक्त से उदास।
0: हाँ सुधीर, वो पागल, उसकी आवाज एक अरसे से मेरा पीछा कर रही है।
1: मैं समझा नहीं, वो पागल, आवाज?
0: हाँ, हाँ, कुछ नहीं, कुछ नहीं।
1: पहले ना बुझाओ सुहेल, तुम्हारी उदासी, फौजिया, निशानी, आवाज।
0: तुम्हारा हर सवाल एक ही कहानी की कड़ियां है मेरे दोस्त, मेरी जिंदगी की कहानी।
1: ओह, ये तुम हो जिसकी जिंदगी कहानियों से दूर थी।
0: हाँ, कभी थी और अब एक दर्दनाक कहानी, मगर दूसरों से कहता रहा कि मेरी जिंदगी अब भी कहानियों से दूर है,
1: और खुद को धोखा देता रहा। मगर क्यों?
0: ताकि तुम्हारा समाज, तुम खुद मुझसे नफरत।
1: मगर
0: इसलिए सब कुछ छुपाता रहा, लेकिन आज।
2: सुहेल साहब, आप बहुत आगे बढ़ आए हैं। कई बार चाहा कि आपको रोकूं और साफ साफ कह दूं, धोखे में ना रखूं।
0: फौसिया।
2: हाँ सुहेल साहब, मुझे नहीं मालूम था कि आप एक छोटी सी मुलाकात को इतनी अहमियत देंगे, वरना मैं आगे बढ़ने से आपको रोक देती। खुदा के लिए, खुदा के लिए, आप जहाँ हैं वहीं से लौट जाइए प्लीज।
0: मगर क्यों?
2: इसलिए कि आप मेरे लिए सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, और फर्रुख मेरी

0: तो फौजिया फर्रुख से मोहब्बत करती है और मैं इस आग में जल रहा हूं। कब तक मैं अपने को इस कमरे में बंद रखूंगा, फौजिया को भुलाने की कोशिश करता रहूंगा। लेकिन क्यों, क्या ये मेरे साथ धोखा नहीं? सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्यार वही है जिसमें बलिदान का जज्बा हो, अपना स्वार्थ ना हो। फर्रुख और फौजिया
1: और मैं अपनी मोहब्बत
0: एक अंधी मोहब्बत, एक तरफा मोहब्बत।

0: कुछ भी हो, मेरी मोहब्बत अंधी ही क्यों ना हो, लेकिन मैं हर हालत में फौजिया को हासिल करके रहूंगा और मैं अपनी राह में आने वाले हर कांटे को हटा दूंगा।
1: रुक जा अपने नापाक इरादों से बाजा, वरना पछताएगा, जिंदगी दूभर हो जाएगी। रुक जा बाजा, रुक जा।

0: रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हारी जान।
1: सुहेल साहब आप?
0: हाँ मैं, और अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटोगे तो मैं।
1: तो आप मुझे अपने रास्ते से हटाकर फौजिया को अपना लेंगे? क्यों?
0: हाँ
1: फिर भी आप फौजिया को अपना ना सकेंगे
0: तो तुम नहीं मानोगे। तो लो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मैं तेरी जान ले लूंगा, तेरी जान ले लूंगा। एक अंधी मोहब्बत, एक तरफा मोहब्बत, कुछ भी हो। फौजी
2: आप मुझे फौजी कहकर ना पुकारा कीजिए।
0: मुझे माफ करना, मैं भूल गया था कि फर्रुख भी तुम्हें इसी नाम से पुकारता था।
2: मैं फर्रुख को भूल चुकी हूँ और अब आपकी बीवी हूँ।
0: फौजी मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी करके तुम्हारी और फर्रुख दोनों की जिंदगियों में घोल लगा दिया है। फौजिया आंखें खोलो। फौजिया
2: अरे ये तो बेहोश हो गई।
0: फौजिया मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जब से तुमने इस नन्ही सी जान को जन्म दिया तुम्हारी हालत दिन ब दिन और बिगड़ती गई। मैंने दो जिंदगियों को तबाह किया। मैं कभी चल नहीं पा सकता। नीलम मेरी फौजिया को क्या हो गया है?
2: बस करो सुहेल, जो तुमने किया हे भगवान इसे बचा ले। मेरी अजीज सहेली, मेरी बहन, होश में आ। देख देख मैं हूँ नीलम। लो ये दवा पी लो।
3: कौन? नीलम।
2: हाँ फौजिया मैं नीलम। और ये देखो तुम्हारी नन्ही फौजी, इसे गले लगा लो।
3: आ, मेरी बच्ची। वो सुहेल कहाँ है?
0: मैं तुम्हारे पास हूँ फौजिया। मैं
3: मेरा आखिरी सलाम
0: फौजिया।
3: हो सके तो मुझे माफ कर दो।
0: नहीं फौजिया
3: अब मैं तुम सबसे दूर, बहुत दूर जा रही हूँ। नीलम मेरी बच्ची, मेरी फौजी, अपनी अमानत। मैं तुम्हें सौंप रही हूँ।
0: फौजिया

0: फौजिया आज इस दुनिया में नहीं, फर्रुख पागल है और नीलम एक देवी जो आज भी वचन निभा रही है और मेरी फौजी की परवरिश कर रही है।
1: फर्रुख का क्या हुआ सुहेल?
0: फर्रुख, सुधीर, जब फौजिया का जनाजा घर से जा रहा था तो मैंने देखा।
1: क्या?
0: मैंने देखा सुधीर, जनाजे के सबसे पीछे वो फर्रुख था।
1: फर्रुख? वो हाँ, पागल?
0: हाँ सुधीर, वो चुपचाप जनाजे के पीछे चला रहा था। वो कब्रिस्तान तक गया, लगता था वो पागल नहीं है, वो रो भी नहीं रहा था, बस उसकी हालत बता रही थी कि वो पागल है। लेकिन जब फौजिया की लाश कब्र में उतारी गई और मिट्टी डाली जाने लगी तो वो कुछ कहता हुआ भाग रहा था।
2: अभी अभी
0: औसी, मेरी बच्ची।
2: अभी आप रो क्यों रहे हैं?

0: जाइए ना, हम आपको बहुत चाहते हैं।
1: मेरी प्यारी बच्ची।
0: अब तो नहीं रोइएगा अभी।
1: नहीं बेटी, बिल्कुल नहीं। सुधीर, यही है मेरी बेटी फौजी। तुम्हारी आंटी कहाँ है बेटी?
2: मैं यहाँ हूँ सुहेल भाई।
1: अरे नीलम, आओ ना, वहां क्यों खड़ी हो
3: आप? आप नीलम, डॉक्टर रमेश की बेटी?
2: जी, मैं नीलम, डॉक्टर रमेश की बेटी। मिस्टर सुधीर, आप यहाँ कैसे?
3: जी जी वो
1: खूब। तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो?
2: नहीं सुहेल भाई, हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले, सिर्फ तस्वीरों की मुलाकात।
3: वो इत्तफाक से। नीलम जी, मैं सुहेल का दोस्त हूँ।
1: और अब ये तस्वीरें हकीकत के रूप में एक दूसरे के सामने मौजूद हैं। अब क्या इरादे हैं?
2: सुहेल भाई, मैं अपने इरादों पर अटल हूँ।
3: इरादों?
2: जी, फौजी जो मेरी अजीज सहेली की निशानी है, अब मेरी जिंदगी, इसकी परवरिश, मेरे सपने और इरादे।
3: आपसे इस अचानक मुलाकात से पहले मैं फौजी को सुहेल से मांग चुका हूं, मगर सुहेल ने कहा था कि फौजी पर मुझसे ज्यादा नीलम का हक है, यानी आपका।
2: हाँ सुधीर साहब, फौजी मेरी जिंदगी का हिस्सा है। जब उसे मैंने अपनी बहन फौजिया की मौत के बाद अपनी गोद में लिया, तो मैं उसकी माँ तो नहीं।
1: माँ की ममता से इसकी झोली भरती है।
3: फौजी के लिए अगर आज मैं आपके सामने अपना हाथ।
2: फौजी मेरी जिंदगी है।
3: नीलम जी,
2: ये नामुमकिन है मिस्टर सुधीर।
3: नीलम जी, फौजी मेरी भी है।
2: जी नहीं, सिर्फ मेरी।
0: अरे अरे, अंकल और आंटी तो लड़ने लगे अब्बी।
1: हाँ बेटी, मेरी समझ में।
0: आप रोइए नहीं अब्बी, मैं समझाती हूँ। आंटी आप और अंकल आप दोनों इधर खड़े हो जाइए।
3: खड़े हो जाइए?
0: बोलिए नहीं, बस खड़े हो जाइए।
2: नहीं फौजी, ये तुम
0: एक साथ खड़े हो जाइए, नहीं तो मैं रोने लगूंगी।
3: अच्छा अच्छा, लो हम खड़े हो गए।
0: हाँ बस, अब मैं बीच में खड़ी हो जाती हूँ। ऐसे अभी, अब मैं कैसी लग रही हूँ?
1: बहुत अच्छी बेटी, बहुत अच्छी।
0: तो अभी हम लोग ऐसे ही रहेंगे, अब आप खुश?
1: फौजी
2: मेरी बच्ची,
3: मेरी बेटी।
4: अकिया, अकिया, अकिया, अकिया, अकिया, अकिया।

प्यार मोहब्बत और कर्तव्यों के इन्हीं पाकीज़ा जज्बात की नींव पर ही मानवता की इमारतें खड़ी हैं। जी हाँ, यही है वो बुनियादी प्रश्न, एक ऐसी गुत्थी जिसको ये तीन दिमाग सुलझाना चाहते हैं। इस कहानी और इस कहानी के सभी पात्र फर्जी तो हैं, लेकिन इसका मकसद, इसकी आत्मा मोहब्बत है। और आज का इंसान इस छोटे से शब्द के दामन में छुपे हुए संसार के सबसे बड़े उस सुख से दूर होता जा रहा है, जो परमात्मा का धरती पर मानव के लिए एक ऐसा वरदान था, जिसका स्वाद जानने के लिए ईश्वर के अवतारों को अपनी जन्म कुंडली का सूत्र धरती से जोड़ना पड़ा।

0: क्या ये मोहब्बत फिर लौट कर नहीं आएगी?
1: वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी।
0: आओ लौट चले फिर उसी जगह जहां से हम चले थे।

0: अभी आप सुन रहे थे तस्वीर आबिदी का लिखा ये नाटक वो आएगी। इसका निर्देशन किया जयदेव शर्मा कमल ने। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं।
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत है जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई, कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 27 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। साय के 4 बजे हैं और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।
1: ये है विविध भारती।
2: उजाले उनकी यादों की, उजाले उनकी यादों की।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे अपनी यादों के उजाले बिखेरने आई हैं हमारे साथ। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। पिछले सप्ताह हमने इस लंबी बातचीत की पहली कड़ी सुनी थी, आइए आज सुनते हैं दूसरी कड़ी।
1: थोड़ा सा पीछे चलते हैं और आपकी शादी वाला जो किस्सा है वो सुनना चाहते हैं।
2: नहीं, शादी वाले किस्से में ऐसा कोई खास वो नहीं था जो मैंने सोचा कि मुझे हमेशा की तरह नहीं अच्छा कमाने वाला पति ढूंढ के उसके साथ एक साहिबा बन के नहीं जिंदगी बितानी, मुझे अपना काम करना है, मुझे ऐसा कोई चाहिए जो जिसके साथ काम करने में मज़ा आए। और ऐसा मिल गया दोस्त, ऐसा मिल गया साथी अरुण। और फिर माँ को मेरी बिल्कुल नहीं पसंद था रिश्ता, फिर बाद में वो ठिकाने आ गई बहुत। अप्पा तो उन्होंने साथ दिया क्योंकि उन्होंने देख लिया कि मैं बिल्कुल अड़ गई हूँ, तो उन्होंने साथ दिया, लेकिन माँ नहीं आई थी। लेकिन अरुण ने और मैंने शादी की और हम दोनों का अब तो पक्का था कि नाटक करने हैं जिंदगी भर। फिर टेलीविज़न की नई नई शुरुआत हो रही थी, टेलीविज़न नाटक फिल्म अगर हो पाई तो, तब तो वो एक सपना था सुनहरा, लेकिन ये हमने किया। और फिर अरुण भी एक साल बाद मेरे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंच गए। और अरुण को तो 3 साल अलकाजी मिले क्योंकि तब तक वो 3 साल का कोर्स हुआ था और अलकाजी साहब फिर आगे वहाँ रुके, तो मैं तो निकल गई। और फिर क्या हुआ कि हमने नाट्यद्वयी करके एक अपनी संस्था शुरू की और हम एमेटर तौर पर नाटक दिल्ली में करने लगे। पहले तो हमने बहुत सारे मराठी जितने भी थे मराठी नाटक खेल डाले, है ना, मेरे अपने भी थे उसमें, पुल देशपांडे के थे, फिर वासना कांड महेश इलकुंसवार का था, फिर ऐसे बहुत जितने भी हाथ लगे वो ड्रामे किए। और क्या होने लगा कि 2-4 शोज़ के बाद ये पता चलता था कि पहले तो हाउसफुल हाउसफुल हाउसफुल, और फिर बाद में धीरे धीरे धीरे, क्योंकि दिल्ली में मराठी थे कितने, जितने थे वो 3-4 शोज में ख़त्म होते थे आके, फिर वो खाली हॉल। फिर हमने सोचा कि ये बात सही नहीं है, इतनी मेहनत करो और ये फिर इकोनॉमिक्स नहीं बैठ रहा इसका, तो क्या किया जाए क्या किया जाए। फिर एक बहुत अच्छी तरकीब सूझी कि क्यों नहीं अच्छे अच्छे लायक मराठी नाटक चुन के उनको हिंदी में पेश किए जाए,
1: वाह वाह,
2: है ना। तब हमने किया सखाराम बाइंडर, किया ये किया वो किया, और सखाराम बाइंडर के चक्कर में मुझे जेल जाने की नौबत आई थी। वो किस्सा आपको ज़रूर सुनाती हूँ।
1: जी जी।
2: उन दिनों क्या था कि वो नाटक ऐसा ये बिल्कुल नहीं था व्यावसायिक तौर पे, हाँ प्रोफेशनल नाटक था ही नहीं, तो लोग फिर करते थे। और ऐसी कुछ एक संस्था थी जहाँ से परमिशन लेनी पड़ती नाटक खेलना अगर आपको हो, और उनको पटाना होता था कि भाई हमारा बहुत नेक ये उद्देश्य है फलान ढिमका वगैरह वगैरह, फिर वो परमिशन आपको देते थे, फिर आप टिकट लगा के नाटक कर सकते थे। तो हमने ये सखाराम बाइंडर का सोचा करने का, और कास्ट भी बहुत बढ़िया मिल गई हमको, वो लक्ष्मी के रोल के लिए सुधा चोपड़ा और चंपा के रोल के लिए सुषमा सेठ जैसे कलाकार मिले, अरुण तो सखाराम बाइंडर के रोल में वगैरह, और मैं डायरेक्टर, तो और

0: विजय तेंदुलकर तो बहुत अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने बड़े खुशी खुशी हमको परमिशन दे दी। तो ये शो, लेकिन ये हमने इनको लिखा कि हमको ये शो करना है, उनसे जवाब ही ना आए, वो कोई दखल ही ना दे। एक बार हुआ, दो बार हम पहुंचे वहां, फोन किए, ये किया वो किया, कुछ नहीं। वहां तक कि उनके चपरासी भी रुक के हमसे बात करने को
1: राजी नहीं
0: राजी
1: थे।
0: नहीं थे। तो अब क्या करें क्या करें, हम बहुत घबराए, और थिएटर के डेट्स ले चुके थे और सबके डेट्स ले चुके थे और वो सब पास आ रहा था। हाँ, हवे की तरह बहुत कोशिश की, कुछ नहीं बात बनी। तो फिर किसी ने ये सलाह दी कि देखो और लोग भी ये करते हैं, तुम लोग निमंत्रण छापो, हाँ, कि आपको ये बुलाया है मुफ्त में, और फिर वो निमंत्रण बेचो, ओके, 10 रुपए में, 25 रुपए में, जो भी तब होगा। तो हमने कहा हाँ ये अच्छी तरकीब है। तो हमने वैसे निमंत्रण छापे, उनको बेचे, और सखाराम बाइंडर की तब बहुत हवा थी क्योंकि बम्बई में तो तूफान मच चुका था सखाराम बाइंडर को लेके। तो दिल्ली में भी फिर लोग, और फिर हमारा ग्रुप भी नाट्यद्वयी अब तक बहुत लोकप्रिय हो चुका था। तो फिर देखते ही देखते सब हमारी निमंत्रण ही कहो बिक गई। और फिर जिस दिन खेल था, हमें कुछ नहीं बताया, वो उनके लोग चुपचाप आके देख रहे थे, और बाहर भी हमने कुछ बेचने के लिए, हम बिल्कुल मतलब उसमें हमें लगा ही नहीं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, ये तरीका दूसरा था ही नहीं, उन्होंने दरवाजे बंद किए थे, अब हम क्या करें। फिर उन्होंने वो लिए, एक दो उन खरीदे हमारे निमंत्रण, और फिर हमारे घर 2-3 दिन बाद उनके लोग आए कि आपको कानूनन ये करेंगे क्योंकि आपने ये बहुत गुनाह किया है, आपने टिकट, ये गुनाह तो था ही। हाँ, तो हमने कहा फिर क्या करें, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, नहीं, वो तो वो सुनने वाले थोड़ी थे। तो और जैसा मैंने कहा, उनके चपरासी भी रुक के देखने को तैयार नहीं थे हमारी तरफ, बहुत हम गिर गिर आए, ये किया वो किया, उनको प्रूफ्स दिया कि हम फला दिन को हम आपके अप दफ्तर में आए थे, धमकाने दिन, ये देखो हमने ये इस तारीख को भेजा है लेटर, सब हमारे पास था, वो सुनने को तैयार नहीं। फिर किसी ने कहा अब क्या करोगे तुम, तो सचमुच जेल जाने की नौबत आ गई। मतलब दिस इज हाउ वी ऑपरेट, विच इज सो सैड।
1: जी, तो मुझे लगता है कि यहाँ एक गाना सुन लेते हैं।
0: जरूर जरूर।
2: दीवाना,
3: एक दीवाना शहर में,
2: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी,
3: दो दीवाने शहर में,

0: तो वो पूरे नाटकों का दौर चलता रहा
1: हाँ जी
0: और दिल्ली में आपने बहुत सारे नाटक
1: हाँ, एक
0: लगातार किए।
1: पंजाबी में भी किया
0: जी
1: जी, पंजाबी में किया, वेंकटेश माडगुलकर का नाटक था तू वेड़ा कुंभार, हाँ उसका चक्का चलता है, सुरेंद्र गुलाटी ने उसका ट्रांसलेशन किया, बखूबी ट्रांसलेशन किया। और मज़े की बात ये कि वो मराठी नाटक पंजाबी भूमि में इतना मज़े से बैठ गया और उग गया कि क्या बताऊँ मैं, बहुत ही मतलब लगा कि ये पंजाब में ही ये नाटक का निर्माण हुआ है।
0: टूर भी
1: हाँ
0: किया था उसको लेके?
1: नहीं टूर नहीं किया,
0: सिर्फ दिल्ली में किया?
1: दिल्ली में किया हाँ। और लेकिन मज़े की बात होती, पंजाबी तो मुझे आती नहीं बोलनी, समझ में तो आती ही है दिल्ली रहो तो हर चौथे पांचवे दिन एक बहुत ही हमारे कलाकार, और कलाकार भी बहुत गज़ब के थे, कुलभूषण खरबंदा, श्याम अरोरा, सुधा चोपड़ा, कीमती आनंद, ऐसे बहुत होनहार कलाकार थे। और पाँच छः दिन बाद उनमें कलाकारों में एक झगड़ा होता था, और झगड़ा वो ऐसा मतलब छप्पर उड़ा देने वाला, जो तू तू मैं तू की कह रहा है शाम, वो तो चुप रहा है वगैरह वगैरह
0: अरे
1: वगैरह।
0: बाप रे।
1: और क्यों ये झगड़ा होता था कि एक था जलंधर का, एक था पटियाला का, एक था
0: फगवाड़ा
1: चंडीगढ़
0: का,
1: का,
0: चंडीगढ़
1: हाँ
0: का।
1: वगैरह वगैरह, हर अलग अलग जगहों से थे और हर एक की बोली थोड़ी सी अलग थी। तो ये कहता नहीं नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे कहते, दूसरे कहते नहीं ना जी ना तू की कह रहा है हाँ वगैरह वगैरह का, मैं चुप कोने में बैठी सुनती थी। और जब वो अपना शांत हो जाता था 10-15 मिनट झगड़ के, फिर शांत हो जाते थे, एक की जीत होती थी, नाटक रिहर्सल फिर आगे चालू। पर वो इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल जैसे
0: लेकिन लैंग्वेज का एक पुल भी पार किया,
1: जी
0: मराठी नाटक पंजाबी में
1: जी
0: होने
1: जी
0: लगा।
1: हाँ।
0: यहाँ से दूरदर्शन का सीन कैसे आया?
1: दूरदर्शन, अब मुझे याद याददाश्त में मेरी वक्त के बारे में बहुत गड़बड़ है, मतलब क्या पहले क्या बाद में ये सही ढंग से याद नहीं आता, लेकिन
0: जहां तक मुझे याद है आप
1: उसमें
0: आकाशवाणी भवन गई थी।
1: हाँ नहीं वो बहुत पहले गई थी, जब मेरा कोई ताल्लुक नहीं था टेलीविज़न से या कुछ भी, तब मैं सिर्फ नाटक वगैरह करती थी दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बाद। हाँ एकदम वहाँ से मैं फिल्म इंस्टीट्यूट पहुँची एज अ टीचर,
0: जी
1: प्रोफेसर ऑफ स्पीच एंड ड्रामा,
0: डिक्शन। जी
1: हाँ
0: जी
1: हाँ डिक्शन एंड ड्रामा हाँ। तो वो एक साल ही मैंने वहाँ पढ़ाया, और मेरे ये सुन के आपको आपके होश उड़ जाएंगे शायद, मेरे स्टूडेंट्स की नामावली सुन के,
0: बड़े दिग्गज लोग।
1: एब्सोल्युटली जलाल आगा,
0: ओहो
1: साधु मेहर जो नेशनल अवार्ड विनर
0: श्याम
1: था
0: बेनेगल
1: श्याम
0: के
1: बेनेगल
0: एक्टर,
1: की फिल्म में, रेहाना सुल्तान दस्तक
0: दस्तक
1: की
0: फिल्म।
1: हीरोइन, फिर राकेश पांडे
0: जी
1: जो भोजपुरी का अमिताभ बच्चन,
0: उनको लेके
1: भोजपुरी
0: एक फिल्म
1: सिनेमा का
0: लॉन्च हुई थी संगत,
1: किसकी
0: राकेश पांडे को लेके कुछ कुछ फिल्में
1: हाँ
0: लॉन्च हुई थी, पर उनका ज्यादा नाम नहीं हुआ।
1: नहीं उस भोजपुर में बहुत नाम, वो उसमें थे ना बाशु चैटर्जी की फिल्म थी ना सारा आकाश,
0: उसमें
1: उसका
0: थे
1: हीरो था
0: जी,
1: हाँ राकेश,
0: बाद में
1: वेरी
0: वासुदा ने
1: वेरी
0: एक
1: नाइस
0: फिल्म
1: फिल्म।
0: लॉन्च की थी संगत, उसमें भी
1: अच्छा
0: वो हीरो थे पर वो बनी
1: वो
0: नहीं।
1: नहीं नहीं वो उसका ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर वो भोजपुर की तरफ मुड़ गए और भोजपुर में बहुत नाम कमाया राकेश ने, यहाँ तक कि मुझे एक बार फिर बहुत सालों बाद हम दोनों जूरी में थे, मैं चेयरपर्सन थी उस साल जूरी में और राकेश एक मेंबर थे जूरी, तो तब हमारी बड़ी प्यार से फिर इतने सालों बाद मिले, और किसी ने मुझे कहा कि राकेश अब भोजपुरी का अमिताभ
0: स्टार बन गए।
1: बच्चन है वगैरह वगैरह, तो बड़ा अच्छा लगा सुन के।

0: अभी मोटे वोटे हुए थे, तब
1: जी
0: दुबला
1: जी
0: पतला था जब मेरे क्लास में था। तो ऐसे इन लोगों को सिखाया पढ़ाया,
1: शैलेंद्र
0: बहुत
1: सिंह
0: मजा
1: वगैरह भी
0: आया।
1: थे?
0: नहीं, मेरे
1: अच्छा
0: क्लास में नहीं थी ना। तो ये हुआ। और हाँ, जब मैं थी अगेन इश्तहार, टेलीविजन तब शुरू हो गया। और हाँ, उसके पहले आपने कहा कि कब आकाशवाणी भवन गई थी, तो जब मैं गई थी जब वो सब बंद रहा था, और तब सिर्फ स्कूलों का टेलीविज़न होता था, स्कूल के लेसन होते थे घोंचू तरह के। हाँ, बहुत ही ड्राई और बहुत ही मतलब, लेकिन वो रोज़ाना एक रिहर्सल के तौर पे वो पेश होते थे। तो वो मैं ऐसे ही देखने गई आकाशवाणी भवन, अब याद नहीं क्यों गई, कैसे गई, और मुझे किसने, कौन मेरे गाइड होंगे, अगेन आई एम टेकिंग द सेम नेम फॉर द सेकेंड टाइम, पुलर देशपांडे।
1: वाह वाह
0: हाँ,
1: वाह,
0: क्योंकि ही वॉज इन द फाइनल कमिटी, द मेजर कमिटी, मास्टर कमिटी जो थी टेलीविज़न का पूरा वो करने वाली। हाँ, सब रवैया तो वो थे, और उन्होंने कहा अरे सही, तू कभी अली सा, ये बड़े खुश हुए मुझे देख कर, क्योंकि प्यूना से हमारी पहचान थी आकाशवाणी से।
1: जी
0: तो फिर उन्होंने मुझे पूरा घुमाया, वो छोटा सा स्टूडियो था तब आकाशवाणी भवन में, नन्ना सा स्टूडियो, और उसमें वो तीन कैमरा, और हर कैमरा का अलग क्या उसका ये है, हर एक का की ड्यूटी क्या है, वगैरह वगैरह, यंत्रणा पैनल पे कैसे पेश किया जाता है, लाइटें कैसी, वह सब उन्होंने मुझे सिखाया। और तब मुझे ज़रा भी मतलब एक इतना भी नहीं ये हुआ लगा कि एक दिन अपन यहाँ आने वाले हैं,
1: क्या बात है,
0: कि
1: ये
0: हाँ,
1: ख्वाब भी नहीं था
0: ख्वाब
1: कि
0: भी नहीं
1: अब
0: था,
1: ये जगह
0: हाँ,
1: जिंदगी ले
0: ये
1: जाने वाली है।
0: मेरी कार्यभूमि बनने वाली है 8 साल के लिए।
1: जी
0: और तब ये इश्तहार पढ़ा, जब मैं ये फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही थी, तो फिर उधर अगेन अप्लाई किया कि देखते हैं क्या होता है। एंड तो वहाँ चुनी गई मैं, और पहले 6 प्रोड्यूसर जो थे, भारत के पहले 6 टेलीविज़न प्रोड्यूसर्स, उसमें से मैं एक हूँ, ये मुझे बहुत नाज के साथ
1: क्या
0: कहने कह
1: शानदार बात है,
0: हाँ,
1: वाह वाह
0: बहुत
1: वाह।
0: नाज के साथ मैं कहती हूँ। और मेरे साथ थे ए प्रताप करके थे, फिर एक वासुदेव थे,
1: पी
0: कुमार
1: कुमार
0: वासुदेव,
1: वासुदेव
0: पी
1: जी,
0: कुमार वासुदेव, जिसने अच्छे कुछ सीरियल्स पेश किए, और एक स्वदेश कुमार करके थे, और शमा जहदी थी, और
1: ओहो
0: हबीब तनवीर थे।
1: क्या बात
0: हाँ,
1: है, वाह वाह
0: लेकिन
1: वाह।
0: हबीब और शमा जल्द ही कुछ महीनों बाद छोड़ गए, तो हम 4 रह गए, लेकिन ये हम 6 लोग थे पहली पलटन में।
1: वाह
0: तो विच
1: वाह,
0: इज़ वंडरफुल, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। एंड सो इट वॉज़ फैबुलस, 8 मैजिक ईयर्स इन टेलीविज़न। और वहाँ ऐसा कुछ तो था ही नहीं कि कैसा करना है, क्या करना है, जो मर्जी करो, क्योंकि देर वॉज नो एग्ज़ाम्पल, यू नो, कि ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। हमें सिखाने ज़रूर आए थे, एक बहुत मशहूर ये BBC से आए थे, वॉरन ये करके, तो उन्होंने सिखाया अच्छी तरह, लेकिन ये हम बहुत एक्सपेरिमेंट्स करते रहे,
1: जी
0: हाँ, और बहुत कुछ कर पाए टेलीविज़न में, और मज़ा भी बहुत आया।
1: वहां आपने बहुत अलग अलग तरह के काम किए, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई,
0: जी
1: अबू अवार्ड जीता।
0: हाँ, यस, एशियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, हाँ,
1: जी
0: तेहरान में।
1: वो चाय की टपरी वाला जो
0: हाँ जी, वो
1: वाली
0: छोटी सी
1: डॉक्यूमेंट्री,
0: फिल्म थी, 10-11 मिनट की, वो मेरी पहली फिल्म कह सकते हैं
1: जी
0: ना टेलीविज़न में। और वो क्या थी कि एक सीधी सी एक छोटी चाय की टपरी हाईवे पे, दिल्ली आगरा हाईवे, हाँ, उसके एक किनारे, और वो एक सिर्फ एक औरत चलाती थी वो टपरी, चाय वही बनाए, कप वही धोए, वही पेश करें, पैसे वही गिने, झगड़ा वही करे ग्राहक के साथ वगैरह। और
1: बिल्कुल
0: वो छोटी सी औरत, ये तगड़े वहाँ ट्रक वाले रुकते थे, वो उनसे अच्छा निपटती थी, और बिल्कुल वो मज़े से उसका चल रहा था, और इट वाज वंडरफुल, ये अनपढ़ औरत कैसे चला रही है अपना काम और धंधा। तो इट वाज वेरी इंस्पिरेशनल कि ये हमारे देश में एक अनपढ़ औरत भी कुछ कर दिखा सकती है। सो आई थॉट दैट वाज अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी। तो इट वाज, इट डिडन्ट हैव एनी डायलॉग, नथिंग, तो एक 10 छोटी सी फिल्म थी, लेकिन उसको ये अवार्ड मिल गया, और हाँ, मैं दंग रह गई, अरे ये ऐसा भी होता है। एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, फिर टेली फिल्म्स बनाई, मतलब ड्रामे ही कहो, टेली फिल्म तो क्या हुआ, ड्रामा ही हुआ ना एक तरह से।
1: जी,
0: हाँ,
1: पोस्टर बनाने वालों पर काम
0: पोस्टर,
1: किया।
0: हाँ, तो दैट वाज आल्सो, दैट वाज अ डॉक्यूमेंट्री।
1: जी
0: तब ये फिल्मों के पोस्टर्स ये बनाते थे।

0: हाँ, एक पूरा
1: हैंड
0: उनका
1: पेंटेड पोस्टर्स का।
0: हैंड पेंटेड, हाँ, उनका एक जत्था होता था, तबका होता था उनका, और वो बेचारे कहीं गैराज वैराज नुमा जगह उनको मिलती थी, वहाँ वो अपना ढेरा लगाते थे, ढेर लगा सगा पोस्टर्स पड़े हैं, और वो अपने कच्छे पहने, बनियान पहने, रंग सब लगा हुआ, ऐसे वो बनाने में मशगूल होते थे। और वहाँ हम पहुँच गए तो क्या बात करें वो लोग, और जा मतलब पूरी दिल्ली की स्काईलाइन इनके पोस्टर्स से भरी हुई है ना। तो उनसे फिर बातें की, तो मुझे इतना अच्छा याद है कि एक वो सीढ़ी पे चढ़ के एक पोस्टर में किसी की आंख, मेरे ख्याल से शर्मिला टैगोर की आंख बना रहा था, और वो ऐसे नीचे देख के बात कर रहा था, हम ऐसे ऊपर देख के उसको सवाल पूछते थे। तो उसने कहा कि भाई, हमारी ये असली लोक कला है,
1: वाह,
0: इसको लोक कला कहो, क्योंकि और लोगों को पैसे नहीं देने पड़ते हमारी कला देखने को।
1: क्या बात
0: तुम
1: है।
0: लोग जाते हो बड़े बड़े उसमें एग्जीबिशन हॉल में, यहाँ वहाँ पैसे दे के टिकट खरीद के देखते हो, और हमारी कला तुम्हारे पास आती है, हाँ, और मुफ्त में, वगैरह वगैरह। और एक को पूछा मैंने कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये तुम ऐसे भड़कीले पोस्टर बनाते हो, कोई बंदूक ताने हुए है, कोई नाच रही है, इसका घाघरा जो हवा में उड़ रहा है, वगैरह वगैरह, तो ये बच्चे भी देखते हैं, उन पे असर होगा, बुरा असर, ऐसे नहीं तुम्हें लगता? तो उसने कहा, अजी, हम ये पोस्टर बनाते हैं, अब ये शत्रुघ्न ये देखो, और वहाँ सब ये थे, हाँ, पोस्टर, ये बंदूक ताने हुए हैं, लेकिन इससे गोली नहीं छूटेगी, और
1: वाह,
0: ये मुमताज नाच रही है गोल गिरकी मार के, उसका घाघरा और नहीं ऊपर जाएगा, बस यहीं रुकेगा, लेकिन अंदर तुम फिल्म देखोगे तो क्या धुआंधार ये गोलियां चलेंगी, बारिश गोलियों की, और तूफान ये, और नाच एक से भद्दे एक तुम देखोगे, खुश हो जाओगे, और वो चलता है, वो नहीं, बच्चों की नीति बिगड़ जाती, हमारे पोस्टर देख के नीति उनकी बिगड़ती है, वगैरह वगैरह, इतने चाव से वो बोला। मैंने कहा, कान छुए मानती हूँ, और चलने दो, आपका काम बढ़िया हो रहा है, चलने दो। तो इट वॉज, अब ये पूरी दे आर नो मोर, पूरी गायब हो गई है,
1: पूरी
0: पूरी
1: वो, क्योंकि
0: वो
1: अब तो
0: कौम
1: पोस्टर सब
0: कौम ही
1: डिजिटल हो
0: गायब
1: गए
0: हो
1: हैं,
0: गई।
1: है ना। MF हुसैन मिले थे
0: हाँ, अरे सॉरी, अरे एन एफ हुसैन इस डॉक्यूमेंट्री में थे ना, थैंक
1: जी।
0: यू, मुझसे ज़्यादा आपको मालूम है। क्या है, किसी ने बताया कि अरे एम एफ हुसैन स्टार्टेड हिज करियर एज अ पोस्टर पेंटर, ऐसे
1: महाराष्ट्र में एक बड़ी
0: तोबा,
1: परंपरा थी
0: हो,
1: जी।
0: तोबा तोबा। मैंने कहा, अरे तब तो उनको पकड़ना ही है। और इत्तफाकन मेरी एक दोस्त के वो बहुत अच्छे करीबी थे, तो उनसे मिले, और वो बहुत ही, ही वॉज अ वेरी वेरी सिंसियर, वेरी वेरी जेनरस, वेरी काइंड हार्टेड मैन। तो बहुत खुशी से वो, हाँ, मैं बिल्कुल पोस्टर पेंटर करके शुरुआत की, और बहुत बढ़िया बोले हो। उन्होंने कहा कि मुझे याद है मेरा पहला पोस्टर था जब दुर्गा खोटे का पाया की दासी, पायाची दासी करके मराठी फिल्म थी, वो पोस्टर मैंने बनाया, और क्या कहूँ, जब दुर्गा खोटे की होठों की लाइनें मैं खींच रहा था,
1: जी
0: तो जो मैं बेहोश था, मतलब नशा जैसे चढ़ा, और कहता है हमको कितनी बिदागी मिलती थी, 8 दिन की,
1: अरे अरे
0: 8, ये तो मेरे 50 रुपए से भी बदतर है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने उस दौर में एक बड़ा ही कठिन काम किया, और वो था एक डॉक्यूमेंट्री जो आपने पंकज मलिक पर बनाई।
0: हाँ,
1: ये
0: यस,
1: ख्याल कैसे आया था, और ये कठिन काम क्यों था? मैंने कठिन कठिनाई का जिक्र
0: हाँ,
1: किया क्योंकि इसको
0: कठिन,
1: तोलो तो ये नाराज
0: ये,
1: वाला जो
0: हाँ,
1: मामला था
0: नहीं,
1: वो
0: वो
1: बताइए।
0: कठिनाई आई, और फिर उनको निपटते भी गए हम
1: जी,
0: बड़े चाव से। तो
1: ये
0: ये
1: आइडिया कहां से आया?
0: आइडिया ऐसे आया कि उस साल उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड डिक्लेयर हुआ था पंकज दा को,
1: जी
0: हाँ, तो फिर मैंने कहा इन पर फिल्म बनाई जाए, और फटाफट मैंने, मैं इस मामले में बहुत तेज़ थी, मैंने एकदम से वो बना के दिया हमारे स्टेशन डायरेक्टर को, वो तो बहुत खुशी से मान गई, हाँ हाँ वेरी गुड आइडिया, जाओ जाओ तुम कलकत्ता जाके ये फिल्म करो। फिर छोटा सा यूनिट बनाया, कैमरामैन ये वो, और कलकत्ता, अच्छा कलकत्ता जाके दादा ना माने पंकज मलिक, नहीं, नो फिल्म, वो ऐसे बड़ी आवाज़ थी उनकी बुलंद,
1: हाँ,
0: कहते नो नो आई डोंट वांट एनी फिल्म, ऐसे नहीं, दादा ऐसे कैसे, वगैरह वगैरह खूब। फिर मैंने अपना इतना चार्म का जैसे ये लगाया दांव पे, मैंने कहा नहीं प्लीज़, ये यू हैव टू डू इट, ये देश के लिए ज़रूरी है, ये फिल्मों के लिए ज़रूरी है, हमारे लिए, जो वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या बकवास किया।

0: आखिर में बेचारे मान गए और राज़ी हो गए। और मुझे इतना याद है, वो मुझे माय डियर सिस्टर
1: हाँ
0: करके
1: वो इसी तरह
0: पुकारते
1: बोला
0: थे।
1: करते थे और
0: हाँ
1: खरजदार आवाज है, रुक
0: बिल्कुल,
1: रुक के बोलते
0: माय डियर सिस्टर करके फिर हम भाग के जाते थे पंकजा के पास। तो एनीवे, और उन्होंने एक, मुझे इतना अच्छा याद है कि टेरेस पे हमने शूटिंग किया और उनका वो गाना दो नैना
1: मतवाले
0: मतवाले। हाँ
1: तिहारे
0: हाँ
1: हम पर जुल्म
0: और
1: करें।
0: मैंने कहा, अब यहाँ मेरा डायरेक्टर जाग गया, मैंने कहा दादा हम भाभी को खड़ा करेंगे, वो अनाज बीन रही है कुछ चावल लेके थाली लेके, और आप गाना गाओ। तो ये, और हम पूछेंगे उस हिसाब से गाना गाओ कि कौन सा गाना वगैरह, फिर आप गाना शुरू करो। और दीदी पास सुन रही होंगी। तो उन्होंने कहा उनको अच्छा लगा आइडिया, तो हमने शुरू किया और फिर दादा उसमें रंग में आए। और वो फिर भाभी जी को देख के दो नैना वगैरह वगैरह आंखें मटक के ये वो, और फिर भाभी जी भी देखे। हाँ उन्होंने कहा,
1: वाह वाह,
0: वैसे क्या बताऊँ मैं, सब हमारा पूरा यूनिट उछल गया। तो ये ऐसे ऐसे किया। और फिर मैंने कहा अच्छा दादा अब ये तो सब हुआ हंसी मजाक के, वो उन्होंने किस्से सुनाए ये कर, फिर अब राय चंद बुराल जी का इंटरव्यू लेना बनता है,
1: समकालीन म्यूजिक डायरेक्टर।
0: समकालीन म्यूजिक डायरेक्टर। और रायचंद बुराल के बारे में कहते थे कि फिल्म म्यूजिक उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है,
1: ऑर्केस्ट्राइजेशन।
0: बहुत बड़ा उनका योगदान है। तो दादा ने कहा नहीं।
1: हाँ
0: हाँ मैंने कहा नहीं, वो आदमी ये वो जो भी, उनसे उनका था झगड़ा सालों से,
1: जी,
0: हमारी बातचीत नहीं है। मैंने कहा आप बेशक बात ना करो ना, बात हम करेंगे, आप क्यों बात करोगे उससे, लेकिन बोलेंगे तो जरूर उनको बोलना चाहिए। नहीं, फिर बहुत उनको सकती, ये एक इतिहास का हिस्सा है और ऐसे नहीं मना कर सकते हम, फिलहाल आपकी फिल्म पूरी नहीं लगेगी अगर उनको नहीं लिया। फिर आखिरकार मान गए, फिर बुराल साहब के पास गए, बुराल जी ऐसा नहीं,
1: अरे
0: पंकज से
1: बाप
0: उसके
1: रे
0: बारे में मैं नहीं बोलूंगा। मैंने कहा अरे वो, फिर उनको वही इतिहास और ये,
1: कैसे
0: तो अब तो मुझे अच्छी तरह प्रैक्टिस भी हो गई थी। मैंने
1: मनाया
0: कहा
1: जाता
0: नहीं
1: है।
0: नहीं बोराल साहब ऐसे कैसे कह सकते हैं फलान का ये वो, फिर वो भी मान गए बहुत अच्छी तरह। और फिर इतना अच्छा अच्छा बोले पंकज दा के बारे में कि
1: वाह,
0: पूछो मत, बहुत तारीफ की।
1: एक और
0: और
1: शख्स को आप मनाया आपने।
0: हेमंत कुमार, बिल्कुल। और हेमंत दा का भी यही, उनसे भी बात नहीं थी, ये पता नहीं दादा किस किस से साथ झगड़े थे, लेकिन हेमंत कुमार से भी बातचीत बंद थी, लेकिन हेमंत कुमार भी फिर राजी हो गए, उन्होंने भी गाना गाया और उन्होंने भी बड़ी तारीफ की। इस तरह हमारी फिल्म बन गई, लेकिन अफसोस कि इस फिल्म की एक फ्रेम भी नहीं अभी बची है।
1: ओ हो,
0: एक आर्काइवल फिल्म देखो ना, पंकज
1: जी
0: मलिक जैसे। और जब उनको ये अवार्ड मिला ना, तब जो अवार्ड लेने गए तो उनका ही गाना हमने साउंड ट्रैक पे बजाया, आई बहार आई
1: वाह,
0: आई बहार।
1: डॉक्टर फिल्म का गाना, क्या बात है। 40s की फिल्म है शायद,
0: जी
1: 41 की
0: जी
1: फिल्म है
0: जी
1: आई
0: जी
1: बहार। लेकिन मुझे लगता है यहाँ दो नए ना मतवारे तिहारे ये गाना सुनते हैं।
0: अरे है आपके पास,
1: बिल्कुल
0: क्या
1: बिल्कुल।
0: बात है।

0: अब साज की तरफ आते हैं। आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है और मुझे लगता है आप अपने आप ही बताएं इस फिल्म के बारे में। कोई भी एक स्टेटमेंट देना गलत हो जाएगा।
1: मुझे अगर कोई फिल्म बनाते वक्त मजा नहीं आया हो तो दैट इज साज।
0: ऐसा क्यों?
1: पता नहीं, कुछ बात ही नहीं बनी। जहाँ इसके पहले हर फिल्म में एक कुछ जोश होता था, चाहे पपीहा हो, चाहे दिशा हो, कथा हो, कुछ भी, लेकिन इस बार ऐसे नहीं लगा। एक वो जो यूनिट का एक अपनापन होता है वो नहीं था किसी के भी बीच। एक वो खोया खोया सा कुछ लगा। लोग बहुत गुस्सा हुए मुझ पर, बहुत गुस्सा हुए, क्योंकि दे वर कन्विंस्ड दैट आई हैड स्क्रीन्ड द स्टोरीज ऑफ लता एंड आशा,
0: विच
1: इज नॉट एट ऑल ट्रू। आशा और लता दोनों बहनें एक दूसरे को बेहद चाहती है, बेहद प्यार करती है, लेकिन जब प्रतिस्पर्धी राइवल्स करके एक दूसरे के सामने खड़ी होती हैं तो उनका रवैया क्या होता होगा, है ना? तो ये हमेशा मेरे ध्यान में ये था। तो उसको लेके फिर वो ये बात बनी, और शबाना हैड कम टू मी कि कुछ वुमन बेस्ड फिल्म करो, प्लस चैनल को चाहिए कि तुम फिल्म डायरेक्ट करो वगैरह वगैरह। तो दिस केम अप एंड वी सिलेक्टेड दिस टू डू अ फिल्म ऑन आशा भोसले, बट अ फिक्टिशियस फिल्म टेकिंग द इंस्पिरेशन ऑफ आशा स्टोरी।
0: जी
1: हाँ, तो ना उसमें कोई उनका जरा भी, लाइक इन द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म द मदर डाइज ऑफ द सिस्टर्स, हालांकि माई मंगेशकर वॉज टोटली देयर टू सी द यू नो सक्सेस ऑफ बोथ हर डॉटर्स राइट टिल द एंड, एंड शी डाइड एट अ वेरी राइप एज। देन इन माई फिल्म द लव स्टोरी ऑफ बोथ द सिस्टर्स हैव द सेम कनेक्शन विद द म्यूजिक डायरेक्टर, विच इज अगेन नॉट ट्रू फॉर आशा एंड लता एज फार एज आई नो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस। इन फैक्ट इन द फिल्म द ओल्डर सिस्टर हरसेल्फ अरुणा ईरानी डाइज, यू नो, इन द फिल्म। सो अगेन एंड लता जी वॉज विथ अस फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो देयर वॉज नथिंग, रियली नथिंग, इट वॉज नॉट एट ऑल
0: जबरदस्ती
1: बायोग्राफिकल फिल्म नहीं थी। हाँ, ये जरूर था कि दोनों प्ले बैक सिंगर्स, दोनों बहने वगैरह वगैरह, और दो किस्से जो एक्चुअल थे वो मैंने जरूर इस्तेमाल किए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग नथिंग नथिंग इज फ्रॉम देयर लाइव्स। बट आई सेड दिस एंड टोल्ड दिस एंड टिल आई वाज ब्लू इन द फेस, पर लोग मानने को तैयार ही नहीं। दे आर कन्विंस कि नहीं, ये तुमने ओके बाबा बनाई तो बनाई।
0: पर अब जाकिर साहब को कैसे राजी किया?
1: वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, झट से मान गए, बहुत मान गए। He gave good music, but I had four music directors.
0: जी, पहली बार ऐसा हुआ?
1: Yeah, क्योंकि ये फिल्म ही प्लेबैक सिंगर्स की थी, तो मैंने कहा लाजमी है कि अलग अलग ये हो ना म्यूजिक डायरेक्टर्स, एक ही का कितना भी चाहे वो वैरायटी लाने की कोशिश करे, इट विल मेक अ डिफरेंस इफ यू हैव फोर डिफरेंट पीपल। सो वी हैड राजकमल, वी हैड यशवंत देव, जाकिर हिमसेल्फ एंड भूपेंद्र हजारिका।
0: जी,
1: फोर पीपल। एंड अगेन द सैड स्टोरी ऑफ साज वॉज दैट बाई द टाइम इट एक्चुअली प्लस चैनल हैड स्टार्टेड दिस वेरी एक्साइटिंग आइडिया दैट दे गॉट टूगेदर एट सो कॉल्ड गुड फिल्म डायरेक्टर्स, पैरेलल सिनेमा डायरेक्टर्स, नॉट द कमर्शियल यूजुअल पीपल। हाँ, उनसे एक एक फिल्म बनवाई, ऐसे उनका इरादा था और उस हिसाब से किया। बट आई वॉज थ्रू आउट बिजी एंड आई वॉज ओनली फ्री एट द एंड ऑफ दिस चेन, एंड अनफॉर्चुनेटली आई वॉज एट द एंड। तब तक बासु चैटर्जी हुए, अरुणा राजे हुई, सुधीर मिश्रा हुए, और भी ऐसे सात आठ लोग हुए, एंड

0: एवरी फिल्म फ्लॉप्ड, एक भी फिल्म दो तीन दिन से ऊपर नहीं हुई, दे ऑल फ्लॉप्ड आई थिंक. एंड विद द रिजल्ट दैट थिएटर्स टुक आउट प्रोक्लेमेशन सेइंग दैट प्लस चैनल विल नॉट गेट एनी थिएटर टू शो एनी फिल्म बिकॉज दे हैव नॉट पेड देयर ड्यूज. सो SAS डिडंट हैव अ थिएटर,
1: अरे अरे
0: फिर टेलीविजन पे दिखाई.
1: जी जी जी.
0: तो ऐसा ऐसा हुआ. सो बैड लक ऑल द वे. सो इट्स नॉट बीन अ, जो एक हैप्पी ये होता है ना एक्सपीरियंस, तो अनफॉर्चुनेटली SAS वाज नॉट अ हैप्पी एक्सपीरियंस फॉर मी.
1: जी थोड़ा सा पीछे चलते हैं. यहाँ कुछ चीजें जो हैं उनका जिक्र मैं जरूरी तौर पर करना चाहता हूँ. एक तो ये लाल अडवाणी की प्रेरणा जो एक तथ्य आया, लेकिन इस फिल्म के लिए मूल रूप से जिन लोगों का आपने चुनाव किया था, मतलब यहाँ संजीव कुमार या फिर वो अमोल पालेकर वाला क्या किस्सा है, वो सब मैं जानना चाहता हूँ.
0: वो क्या है, मैंने कहा ना कि बहुत लंबा किस्सा है
1: जी,
0: तो
1: थोड़ा थोड़ा टच करते हुए आगे बढ़ते हैं.
0: अच्छा, तो जब ये फिल्म लिखी मैंने पटक था तो प्रोड्यूसर तो चाहिए ही. फिर मैंने कहा प्रोड्यूसर से पहले एक्टर्स तय करते हैं, और एक्टर सोचूं तो अमोल मेरा अच्छा दोस्त था, मेरे घर दिल्ली में मतलब रह भी चुका था, आके मैंने अमोल का टेलीविज़न में इंटरव्यू करवाया था, तब वो बिल्कुल ही उभरता सितारा था, मतलब उभर गया था. हाँ, तो मैंने कहा अमोल तो है ही, अपना दोस्त है और वो बढ़िया ये रोल करेगा. फिर मैंने फ़ोन किया अमोल को कि अमोल ऐसा ऐसा है, तब अमोल ने कहा अभी देखो सही मैं तो बहुत बिजी हूँ, तुम समझ सकती हो. मैंने कहा हाँ वो तो जाहिर है, लेकिन वो कहा कि ये शाम को आज ही मुझे अवार्ड मिलने वाला है, फिल्म मिरर करके एक पत्रिका थी तो उनका मुझे अवार्ड मिलने वाला है, पार्टी है. मैंने कहा इत्तेफाक से मुझे भी इस पार्टी में बुलाया है, तो वहाँ ले आओ स्क्रिप्ट. मैंने कहा ठीक है, मन में कहा कि पार्टी में स्क्रिप्ट देना, लेकिन खैर कह रहे हैं तो क्यों नहीं. तो आई वेंट विद द स्क्रिप्ट और पूरी शाम फिर मुझे ये एक बहुत मज़े का ये रहा कि मैं अमोल को स्क्रिप्ट देने जाऊं और वो कुछ उसी वक्त अरे हाँ हाँ आया आया करके किसी और को दूर देख के वो इशारा करके एकदम से निकल जाता था. ऐसे 5-6 दफ़े हुआ, और मेरे साथ तब ऐसे मूर्ति भी थे, वो हम साथ साथ घूम रहे थे पार्टी. तो फिर मूर्ति साहब ने मुझे कहा कि सही मुझे लगता है वो तुम्हें टाल रहा है. और तब मैं एकदम ऐसे बुत जैसे खड़ी रही और मैंने कहा हाँ ये तो है ही, और मैं इतनी बेवकूफ़ कि मुझे ये पता ही नहीं चला कि ये मुझे टाल रहा है, मुझे ये कर रहा है. और क्योंकि ये कैसे मुमकिन है, मेरा इतना अच्छा दोस्त है, मेरे यहाँ रह के गया है, ये वगैरह वगैरह, ये हो ही नहीं सकता, लेकिन हुआ. तो फिर मैंने अमोल का ये छोड़ दिया, और तब तक अलकनंदा समर्थ करके एक बहुत बढ़िया मेरी एक दोस्त बन गई. अलकनंदा वॉज अ फैंटेस्टिक एक्ट्रेस जो सत्यदेव दुबे के साथ बहुत काम कर चुकी थी, अलकाजी साहब की वो नंबर वन हीरोइन थी, और अलकनंदा ने बहुत ही अच्छे अच्छे रोल्स किए थे. वो लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में सीखी थी, पढ़ी थी, तो वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी. और उसकी मौसेरी या कोई बहन थी तनुजा, ये तुम इत्तेफाक जरूर कह सकते हो, क्योंकि जब मैंने लिखा ना पटकथा जब लिखी तब मेरे कैरेक्टर्स आते हैं सामने, है वो हवा में नहीं लिखा जाता, लेकिन कोई ठोस नजर के सामने होता है. वैसे संजीव कुमार और तनुजा ये मेरे सामने थे दोनों, और वो बोलते जाते और वो संवाद मिलते तो तनुजा, और तो मैंने कहा ये तो कमाल है तनुजा, तुम कह कह रही हो. कहते हाँ मेरी बहन है, लवली पर्सन, ज़रूर मिलो उसको वगैरह वगैरह. तो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तनुजा के साथ मैं मिली और तनु मुझे संजीव कुमार के पास ले गई. संजीव कुमार का बिल्कुल ही मन नहीं था सुनने को, लेकिन तनुजा ने किसी तरह उनको चुप करवा के सुनवा ही दिया, और फिर वो उनको बहुत पसंद आई कहानी.
1: लेकिन वो शेव बना रहे थे.
0: अच्छा, तो जब हम पहुंचे तो बिल्कुल ही ऐसे जाहिर हो रहा था कि उनको जरा भी खुशी नहीं हुई है, और तनुजा ने बहुत जबरदस्ती से उनको ये पकड़ा है. तो खैर उन्होंने कहा कि देखो अपॉइंटमेंट है और मैं सिर्फ आपको 20 मिनट दे सकता हूँ. मैंने कहा ठीक है अब क्या करें. और फिर उन्होंने कहा कि देखो मैं दाढ़ी करते करते सुनूं तो आपको एतराज तो नहीं. अब फिर वही बात, अब मैं कैसे कहूँ कि हाँ हाँ मुझे इतराज़ है. मैंने कहा नहीं नहीं कोई नहीं, आप दाढ़ी बनाते जाइए मैं पढ़ते. तो खैर मैं पढ़ने लगी और वो अपना साबुन लगा रहे हैं सुन रहे हैं, और धीरे धीरे क्या मैं अच्छा पढ़ती हूँ यूनुस, इसमें कोई मॉडेस्टी रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बचपन से ही आपको बताया था नाना के साथ माँ के साथ मैं पढ़ती रही.
1: फिर
0: आकाशवाणी पुणे की एक सीख थी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की सीख थी, तो मैं अच्छा पढ़ती थी. बहरहाल तो वो मैं पढ़ने लगी और

0: धीरे धीरे उनका दाढ़ी का ब्रश का हाथ रुकता गया, धीरे धीरे धीरे नीचे आ गया हाथ। और अब बॉडी लैंग्वेज तो अपन लोग इस माध्यम में है तो समझ ही लेते। मैंने मन में कहा कि अच्छा, आई हैव कॉट द फिश नाउ। तो फिर सुनते सुनते सुनते फिर वो आगे झुक के सुनने लगे एवरी साइन की जो जिससे जाहिर हो रहा था कि वो बिल्कुल उसमें आ। तो और 20 मिनट हुए और मैं रुक गई। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ पढ़िए। मैंने कहा नहीं, 20 मिनट तो हो गए। इसे नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो अब ख़त्म करते। मैंने कहा नहीं, अब मुझे कहीं जाना है, मुझे भी एक अपॉइंटमेंट है। और तनुजा मुझे आंखें फाड़ के देखे कि ये पागल तो नहीं होगी, इतना अच्छा मौका मिला और ये क्या कह रही है कि मेरा अपॉइंटमेंट है वगैरह वगैरह। लेकिन मन में मैं कुछ नाराज़ सी हो गई थी उनके बर्ताव से। और ये भी मुझे समझ में आया था कि उनको अच्छा लग रहा है जो भी कुछ सुना। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम स्क्रिप्ट छोड़ के जाओगे क्या? मैंने कहा जरूर। तो स्क्रिप्ट फिर छोड़ के गए। 2 दिन बाद तनु का फोन आया कि ही हैज लव द स्क्रिप्ट और वो जरूर चाहते हैं करना। और फिर मिलते हैं, फिर हम मिल गए। और उसके बाद फिर इतने दरवाजे खटखटाए, BR चोपड़ा और राजश्री प्रोडक्शंस और GP सिप्पी वगैरह वगैरह तब के जो जो, लेकिन कहीं बात कुछ नहीं बनी। फिर बाशु भट्टाचार्य से मुलाकात हुई और बाशु ने कहा कि मैं इसको प्रोड्यूस करता हूँ। और तब फिर प्रोड्यूसर मिल गया। तो फिर मैं इनके पास जब गई संजीव कुमार को मिलने, उन्होंने कहा था कि हाँ जब तुझे प्रोड्यूसर मिले तो मैं अपना टाइम निकाल के जैसा भी हो, कुछ भी मेरा चल रहा हो काम, मैं तुम्हें डेट्स दे दूंगा, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था। लेकिन एकदम से उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और इसकी वजह ये थी कि बाशु भट्टाचार्य के साथ पहला उनका जो था अनुभव, उन्होंने फिल्म जो बनाई थी वहाँ उनको बहुत बुरा ये उनका ये रहा एक्सपीरियंस। तो उन्होंने जब सुना कि बाशु इसका प्रोड्यूसर है तो वो हट गए। और जैसे वो हट गए तो किसी ने मुझे बताया कि नसीर को क्यों नहीं तुम पूछती हो। तो नसीर तो स्कूल ऑफ ड्रामा के थे, तो नसीर से जब मिले, नसीर ने बहुत खुशी खुशी स्क्रिप्ट पढ़ा, ही लव द स्क्रिप्ट। एंड देन शबाना इज नेम, बिकॉज तनु एंड नसीर वुड नॉट मेड अ गुड कपल, यू नो। तो फिर शबाना को अप्रोच किया और शबाना वॉज थ्रिल्ड टू बेस्ट। और फिर शबाना और नसीर तय हो।
1: क्या बात है, शबाना और नसीर तय हो गए। नसीर और शबाना का जब जिक्र हुआ तो मेरे जहन में एक बात ये आती है
0: हाँ
1: कि कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनके साथ आपने दो दो फिल्में की हैं, चाहे
0: जी
1: नसीर हो, शबाना हो, दीप्ति हो
0: हो
1: और फारूक शेख। मेरे ख्याल से ये चार लोग तो मुख्य
0: जी
1: रूप से
0: जी
1: हैं। आपके डायरेक्शन के अम्ब्रेला के नीचे ये कलाकार दो दो बार आते हैं,
0: हाँ
1: जाहिर है कि उनसे एक खास आत्मीय रिश्ता आपका
0: हाँ
1: नजर आता है। तो
0: बिल्कुल
1: इन चारों से जुड़ी कुछ कुछ बातें हम छोटी छोटी करते हुए आगे चलते हैं। मुझे यहाँ खास तौर पर जो मैं नसीर का जिक्र कर रहा हूं,
0: एक और भी कलाकार रह गया इसमें, ओमपुरी।
1: ओमपुरी, जी
0: या
1: जी बिल्कुल, तो ये पांच हो गए।
0: हाँ
1: नसीर का जिक्र क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी मजेदार घटना है, जब उन्होंने अपनी बायोग्राफी मराठी में अनुवादित करने के
0: हाँ
1: लिए आपको अप्रोच किया
0: जी
1: तो वो ड्रामा के डायलॉग में बात हुई थी,
0: ड्रामा के नहीं, वो नॉवेल के
1: नॉवेल के
0: कहो,
1: डायलॉग में
0: हाँ
1: बात हुई थी।
0: नॉवेल, और चार्ल्स डिकेंस जैसा
1: यस
0: नॉवेलिस्ट। हाँ, और नसीर, तो नसीर की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, वो एक महान कलाकार तो है ही, लेकिन वो इतना पढ़ा लिखा आदमी है, विच इज सो रेयर इन आवर इंडस्ट्री अनफॉर्चुनेटली। कोई ज्यादा ये अच्छे मतलब क्लासिक्स पढ़ा हो या कुछ जानकारी जिन्हें हो लिटरेचर के बारे में, ऐसे कम ही नज़र आते हैं लोग। लेकिन नसीर ऐसा था जिसकी बहुत ही जानकारी फैंटास्टिक थी। और इसका श्रेय मैं नसीर को नहीं है जो मुझे पूछा ट्रांसलेशन के लिए, बल्कि रत्ना को है, नसीर की बीवी। रत्ना ने नसीर को बताया कि सई को क्यों नहीं पूछते हो, सई विल डू अ वेरी गुड जॉब। एक तो शी विल अंडरस्टैंड तुमने क्या लिखा है और तुम्हारे बिल्कुल जो बारीकियाँ और जो उसमें से जो सटल चीज़ें हैं वो समझ पाएगी, तो सई को पूछ लो। नसीर को अच्छा लगा सुझाव। और फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं कब आऊँ, तुम कब फारिग हो और मुझे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है नहीं बताया, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। मैंने कहा नसीर को मुझसे क्या बात करनी है, मैंने कहा कभी भी आओ फलाना, वो तय हो गया। तो फिर वो आ गए, नसीर आ गए और उन्होंने कहा ऐसी मेरी आत्म कहानी है और मैं चाहता हूँ कि इसका मराठी तुम करो। तो मैंने कहा मुझे कुछ वक्त दे दो और मैं तुम्हें बताती हूँ। हाँ, तो फिर कहते मिसाल के तौर पर मैं एक चैप्टर लेके आया हूँ। और बदमाश इतना नसीर की वो
1: यही
0: चैप्टर
1: बात
0: स्पर्श के बारे में उन्होंने जो लिखा था वो चैप्टर

0: नेचुरली बोले आए, जिसमें मेरी तारीफ वगैरह थी। तो उसका ये एकदम जो चाहते थे वो उसका हो गया इफेक्ट, और मैंने सोचा कि हाँ ये तो करना ही है, दिस इज रियली अ मेजर कॉम्प्लीमेंट। मोटी किताब थी हाँ,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो थोड़ा सा मैं डर गई थी क्योंकि
1: उसका
0: मेरे
1: नाम
0: और
1: है
0: काम
1: एंड
0: भी,
1: देन वन डे।
0: एंड देन वन डे, लेकिन फिर मैंने उनको एक मैसेज भेजा
1: जी
0: हाँ,
1: जी
0: और मैसेज था कि वो डेविड कॉपरफील्ड में कैरेक्टर है, गाड़ी जो चलाता है हाँ, उसका नाम है बार्किस,
1: बारकिस।
0: बार्किस, और एक मुटल्लो औरत मेड उस घर में काम करने वाली, खूब मोटी, और वो सदियों से दोनों वो हैं, और वो दोनों का कुछ इश्क तो नहीं कह सकते लेकिन एक दूसरे
1: कनेक्शन
0: को
1: है।
0: चाहते हैं दूरी से थोड़ा सा, और पिगटी बेचारी चाहती है कि ये कभी ना कभी तो पूछे मुझे शादी के लिए, तो लेकिन बार्किस बड़ा घुन्ना आदमी, वो कुछ बात बात नहीं करता,
1: चिकनी
0: चिकनी
1: चुपड़ी।
0: चुपड़ी हाँ। लेकिन एक दिन फिर ऐसा आता है कि वो सिर्फ इतना ही कहता है कि बार्किस इज विलिंग, मतलब बार्किस राजी है, राजी किस लिए, शादी के लिए, और तब पेगटी जो खुश हो जाती है, इतनी खुशी से वो फूली नहीं समाती। एनीवे तो मैंने सिर्फ नसीर को ये एक सेंटेंस भेजा, बार्किस इज विलिंग, और मुझे मालूम था कि ये तो डेफिनेटली उसको मालूम है 100% कि ये बार्किस क्या बला है क्या है हाँ? तो फिर फट से नसीर का जवाब आया, पेगटी इज डिलाइटेड,
1: क्या बात है, इसको कहते हैं नहले पे दहला।
0: नहले पे दहला, बिल्कुल बिल्कुल। तो
1: जी
0: फिर काम शुरू हुआ, एंड ही वाज थ्रिल्ड विद द ट्रांसलेशन, एंड इट वन एन अवार्ड साहित्य
1: यस
0: अकादमी का
1: बिल्कुल।
0: हाँ।
1: और नसीर ने काफी तैयारी की थी स्पर्श के लिए।
0: अरे बाबा काफी नहीं, कुछ जरूरत से ज्यादा कहो
1: जी
0: उसका किस्सा मुझे सुनाने दो
1: जी
0: कि शूटिंग जाने से पहले नसीर को ये तो पता चला कि ये मेरी जो कहानी है ये इसका इंस्पिरेशन अजय मित्तल है हाँ, उनसे मुझे ये इंस्पिरेशन हुआ उनका पूरा काम देख के। उन तो उन्होंने कहा नसीर ने कि सही मैं चाहता हूँ कि मेरे रोल के लिए बहुत मदद होगी कि एक तुम लोग आओगे उसके पहले मैं एक 8-10 दिन जाके थोड़ा मित्तल साहब के इर्द गिर्द रहूँगा, उनको देखता जाऊँगा और परेशान नहीं करूँगा, उनको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, लेकिन उनका मैं देखना चाहता हूँ रवैया और ये वो वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा मैं पूछती हूँ उनसे, ऑब्वियसली आई कांट से कि हाँ जाओ, आई हैव टू आस्क हिम। तो मैंने फिर मित्तल साहब से पूछा, और मित्तल साहब वॉज वेरी फ्लैटर्ड नेचुरली कि एक इतना अच्छा इम्पोर्टेंट स्टार अपने को स्टडी करना चाहता है, उन्होंने कहा हाँ हाँ अरे ज़रूर, ये भी पूछने की बात है वगैरह वगैरह। तो फिर नसीर साहब पहुँचे और उनका हमारे पहले ही पहुँचे, फिर हम लोग सब यूनिट ये वो कैमरा मैन फलान का सब हम लोग शूटिंग के पहले 5-6 दिन पहुँच गए, और जैसे ही हम ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में पहुँचे तो गेट के पास ही मित्तल साहब भागे भागे भागे आए, सही जी प्लीज़ सुनिए सुनिए। मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा परेशान है क्या हुआ, उन्होंने कहा कि प्लीज अपने हीरो को जरा हटा दो, अब ऐसी नौबत आई है, वो इतना मेरे पीछे पीछे पीछे, मैं क्लास जाऊँ तो नसीर पीछे है, मैं प्रार्थना ले लूँ बच्चों की नसीर साथ में खड़े हैं, मैं बच्चों का खेल देखूँ तो नसीर मेरे साथ हैं, खाने पर जाऊँ तो नसीर मेरे टेबल पर बैठे हैं, इसे अब ऐसा वक्त आ गया कि मैं बाथरूम भी नहीं जा सकता मैं बहुत डर गया हूँ, प्लीज आप अपने हीरो को जरा सा थाम लीजिए। फिर मैंने नसीर को कहा कि नसीर अब बस भी हुआ, बहुत हो कर लिया ऐसे, नहीं नहीं हो गया हो गया, मैंने कहा बिल्कुल हट जा, डोंट डिस्टर्ब हिम नाउ। तो और फिर जो नसीर ने किया है मैं क्या उसकी तारीफ करूँ, वो तो पर्दे पे है, सबने देखा है, उनको अवार्ड भी मिला नसीर को, बेस्ट एक्टर अवार्ड, नेशनल अवार्ड मिला, और क्या कहना है, लेकिन बेहतरीन। और हाँ एक मजे की बात ये, जब नेशनल अवार्ड जाहिर हुआ तब नसीर बंगलोर में थे किसी और शूटिंग के लिए, और उस फिल्म में और कौन मौजूद थे, संजीव कुमार। तो जैसे ये सबने कहा अरे नसीर तुमको अवार्ड मिला वाह वाह वाह वाह, तो संजीव कुमार ने वेरी स्वीटली सर अरे ये तो पार्टी बनती है और पार्टी मैं दे दूंगा, बड़े जिंदा दिल थे, तो संजीव कुमार ने पार्टी बड़ी डिक्लेयर की, नसीर को अवार्ड मिला। देन ही सेड कि नसीर क्या आखिर क्या ये रोल किया क्या तुमने, ऐसी क्या तो डाली। तो नसीर ने फिर बताया कि ऐसा ऐसा अंदर, फिर वो चुप हो गए, कहते अरे शायद ये रोल मैं करने वाला था, इसे मुझे भी शायद अवार्ड मिल ही जाता, बट दैट वाज अ वेरी
1: जिंदगी की नाटकीयता का कोई मुकाबला नहीं है।
0: जब बताइए जरा कितना ये सब नाटकीय था। ओह नहीं, इसलिए ये स्पर्श जो है ना मेरे जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन के रह गई है कि मैं कह नहीं सकती हूँ। इट्स वंडरफुल।
1: तीन अवार्ड्स मिले थे
0: जी, एक पटकथा के लिए, मेरी अपनी पटकथा, एक बेस्ट हिंदी फिल्म और एक बेस्ट नेशनल अवार्ड एक्टर का।
1: बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड बासु ले गए।
0: वो प्रोड्यूसर थे बाबा।
1: एक अमृता प्रीतम का कनेक्शन है,
0: हाँ
1: वो बताइए।
0: वो वहाँ बासु का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत गजब का था, बल्कि मेन वजह ये है कि मैं जो इतनी फिदा हो गई इस कैरेक्टर पे बासु भट्टाचार्य, इट वॉज सच अ डिलाइट। इतना बोलते वक्त मतलब कहीं मेरे मन में अभी भी एक छोटी सी जगह अच्छी है बासु के लिए।
1: क्या बात है।
0: यस एंड ही हैड अ टेरिफिक सेंस ऑफ ह्यूमर। पहले जब मैंने उनका भाषण सुना, वो तब एक थे फिल्म हिस्टोरियन जिनका नाम अब याद नहीं आ रहा है, लेकिन हिंदी फिल्म्स पर उन्होंने कुछ मोटी सी किताब लिखी और बासु के हाथ से लॉन्च हुई किताब फिरोज रंगून वाला।
1: जी हाँ, जी
0: फिरोज रंगून वाला की किताब। तो बासु बात कर रहे थे और मैं आई वाज गॉन टू हियर दैट फॉर द लॉन्च, आई वाज इनवाइटेड। तो बासु ने कहा कि लोग कहते हैं कि स्टार वैल्यू हो तो फिल्म चलेगी खूब अच्छे स्टार से। कहता ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने फिल्म बनाई शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना, और दोनों उस वक्त अपने अपने फील्ड में चोटी पे थे। महिलाओं में शर्मिला के साथ में कोई नहीं था और इधर राजेश खन्ना तो टॉप था ही था, और दोनों को लेके कहता है मेरी फ्लॉप वैल्यू इतनी महान थी कि मैंने फ्लॉप करके दिखाई फिर। कि ये दोनों को लेकर भी तो ये बहुत गलत है कि स्टार हो तो। इसलिए बासु मुझे लगा कि ये बिल्कुल फैंटास्टिक बंदा है, अपना खुद का मजाक उड़ा सकता है जो आदमी, मुझे बहुत पसंद है। और फिर हमारी दोस्ती बन गई। अमृता प्रीतम की उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, शी वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ बासुस। और हमारे फिल्म को अनफॉर्चुनेटली कहो, क्योंकि वो सारे पैसे मैंने बासु को दिए, लेकिन मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त बकुल पटेल, उनकी मदद से, मेहरबानी से, और विजय मर्चेंट जैसे लोगों की मदद से हमें बहुत अच्छे अच्छे ये फंडिंग मिला। हाँ, और वो सब मैंने चेक बासु को दे दिया जो उन्होंने गृह प्रवेश में डाल दिया अपनी दूसरी फिल्म। एनीवे, लेकिन वो प्रोडक्शन के लिए हमें उन्होंने कहा कि अमृता प्रीतम करेंगी इसका हिसाब किताब ये सब, और हमारा जो मैनेजर था सुदेश स्याल, दोस्त ही था मेरा, सुदेश को कहो कि जैसा जैसा खत्म होगा जब तुमको नया वो चाहिए होगा अमाउंट, तो अमृता जी को पहला हिसाब किताब देना, उनको बताना कि किस लिए चाहिए आगे का, और फिर उनसे ये ले लेना अगला। तो फिर वैसा ही हमने किया। फिर बासु कहता था कि देखो एक बढ़िया बेहतरीन कवियत्री को तुमने, तुम्हारी फिल्म के लिए बिचारी अकाउंटेंट बन गई। सेंस ऑफ ह्यूमर तो गजब का था ही बासु का।
1: यहाँ मुझे लगता है तो अनुभव का गाना सुन लेंगे।
0: हाँ हाँ, अरे वो तो गाना बहुत ही सुन, वो मुझे जान कहो
1: मेरी जान मुझे जान कहो,
0: क्या रॉय क्या बस कनू रॉय।
1: हाँ,
0: अरे वो तो इतना गाना सुंदर है, प्लीज जरूर जरूर सुन।
1: क्या बात।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की दूसरी कड़ी। बातचीत की ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम में संपादन सहयोग नेहा शर्मा का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: उजाले उनकी यादों के।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सुनिए।

0: अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
1: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित जीवंत ग्राम कार्यक्रम के प्रतिभागियों से बातचीत कर रहे हैं। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा कर रहे हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपके ही समय में उन्होंने आजादी के बाद पहली बार वहां से बिजली से बल्ब जलते हुए देखा है। उससे पहले जब भी अंधेरा होता था तो वो अपने घर से बाहर नहीं जाते थे, और हम वहां गए तो हमने रात में वहां पे बैडमिंटन भी खेला रात के समय। और एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया माननीय मोदी जी, कि वहां पे हर जगह पे सोलर प्लेट और लगी हुई है जहां से वो लोग बिजली यूज करते हैं। हमारे राजस्थान में मैंने बहुत सारी सोलर प्लेटें और पवन चक्कियां देखी है और रोज देखते भी हैं हम लोग, लेकिन वहां हमने देखा तो उन लोगों ने बताया कि ये हमारे माननीय मोदी जी की सोलर ऊर्जा से प्लेट बनी हुई है। अब उनको ये नहीं पता कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत
0: राष्ट्र आज कारगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से कारगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं व प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री जोशी ने यह जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर चल रहे अवैध जबरन वसूली रैकेट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार और 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को काला सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन करने का परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। परामर्श में कहा गया कि सहायता के लिए भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास से संपर्क किया जा सकता है। हरारे में भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7 ओवर में 1 विकेट पर 78 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था। ऋषिकांत सिंह ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए रजत पदक जीत लिया है। ऋषिकांत ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो का भार उठा करके ये पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों में ये भारत का दूसरा पदक है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

फिल्मी भजन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से, और कार्यक्रम का अगला भजन फिल्म बैराग से महेंद्र कपूर की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे भजन आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:25 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युवा मंच।

0: कार्यक्रम युवा मंच के सभी श्रोताओं को अनुराधा का प्यार भरा नमस्कार। युवा साथियों, हाजिर हैं युवा मंच के इस अंक के साथ। और आज के इस कार्यक्रम में, जैसा कि आपको पता ही है कि हम बताते हैं आपको वीकली जो हमारी घटनाएं हैं, जो भी कुछ जानकारियां हैं वो आपसे साझा करते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं वीकली प्लस, और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे पूरे सप्ताह भर की जानकारियां कि क्या कुछ खास रहा इस सप्ताह में। तो कार्यक्रम को आरंभ करते हैं 20 जुलाई के साथ। तो 20 जुलाई के दिन भारत का पहला निजी ऑर्बिटल मिशन विक्रम 1 स्काईरूट एरोस्पेस के विक्रम 1 को भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इसके साथ साथ 20 जुलाई के ही दिन अगर हम बात करें उस दिन की, तो ई कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी भारत में ई कॉमर्स क्षेत्र को बढ़ावा देने और उद्योग के समन्वय के लिए ई कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना चर्चा में रही। इसके साथ साथ भारत और श्रीलंका कर संधि में संशोधन भी इस सप्ताह 20 जुलाई के दिन हमारे चर्चा में रहा। जैसे भारत और श्रीलंका ने दोहरे कराधान से बचाव और समझौते में संशोधन कर प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट को शामिल किया। आपसे जानकारियां तो हम और भी साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले करेंगे आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ। लेकिन उससे पहले ये छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और सुन रहे हैं कार्यक्रम युवा मंच। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं वीकली प्लस यानी देश विदेश में क्या कुछ खास रहा इस सप्ताह। तो श्रोताओं, जैसे कि हमने बात की 20 जुलाई की, तो आप आगे चलते हैं, अब अगले दिन की बात करते हैं। और 21 जुलाई की बात करें तो लद्दाख में भारत के पहले गहरे जियो थर्मल कुओं का उद्घाटन किया गया। जी हाँ, पंगा वैली यानी लद्दाख में भारत के पहले और सबसे गहरे जियो थर्मल कुओं का संचालन शुरू हुआ। यह स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। भारत ने दीर्घकालीन ऊर्जा भंडारण और पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की है। अब इसी सप्ताह में 21 जुलाई की बात करें तो भारत और कनाडा

में सहयोग की बात भी इस सप्ताह खास रही। भारत और कनाडा के बीच रक्षा, एरोस्पेस, महत्वपूर्ण खनिजों तथा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा रही। इसके साथ साथ अगर बात करें 22 जुलाई की, तो भारत ने विश्व व्यापार संगठन के एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडाइड्स को स्वीकार कर इसका 123वां सदस्य बनने का दर्जा भी प्राप्त किया। इसका उद्देश्य हानिकारक मत्स्य सब्सिडी को कम करना और समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना भी रहा है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर दिन कुछ नया खास होता है, नई बातें होती हैं और कुछ ना कुछ नई जो घटनाएं हैं वो हमारी ज़िंदगी में होती रहती हैं। वैसे ही हमारे देश, हमारे विदेश या हमारे आसपास की जगहों में कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ खास होता रहता है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो भारत की पहली स्वीकृत डेंगू वैक्सीन का भी जिक्र इस सप्ताह में रहा। भारत में पहली स्वीकृत डेंगू वैक्सीन चर्चा में रही, जिसे डेंगू के रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके साथ साथ नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2026 में केरल ने लगातार शीर्ष स्थान बनाए रखने का दर्जा हासिल किया है। श्रोताओं, जानकारियां तो और भी साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले ही करेंगे आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

0: स्मार्ट चले, स्मार्ट दिखे, हर सफर हो बरियारे। मारुति सुजुकी सिलेरियो, खुशियों की सावरियारे। बेहतरीन 26.68 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज, स्टाइलिश लुक्स और कंफर्टेबल ड्राइव के साथ माइलेज का हीरो स्टाइल भी कमाल। सिलेरियो के संग हर दिन बेमिसाल। और अब पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 42,100। ऑफर का फायदा उठाइए आज ही। TNC अप्लाई। विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी सिलेरियो, स्मार्ट चॉइस, स्मार्ट ड्राइव। माइलेज फिगर एज पर सर्टिफाइड टेस्ट कंडीशंस। TNC अप्लाई।
1: आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युवा मंच। और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी दे रहे हैं वीकली प्लस यानी देश विदेश की कुछ खास खबरों के बारे में। युवा साथियों, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भी इस सप्ताह मनाया गया, वो था 23 जुलाई को। जी हाँ, 23 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया। और इसी दिन 1927 में भारत में संगठित रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई थी। अगर कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत का पहला पदक पक्का किया। इसके साथ साथ अगर 24 जुलाई की हम बात करें तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 21वें ईस्ट एशिया समिट में समुद्री सुरक्षा, दक्षिण चीन सागर और म्यांमार से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा। तो ऐसी ही जानकारियां आज के इस कार्यक्रम में और भी आपसे साझा करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कर रहे हैं आपका मनोरंजन इन प्यारे प्यारे गीतों के साथ। तो ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवा मंच। और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारियां दे रहे हैं वीकली प्लस यानी देश विदेश की खास खबरों के बारे में। युवा साथियों, पंजाब बना है AI को मुख्य विषय के रूप में लागू करने वाला पहला राज्य। जी हाँ, पंजाब ने स्कूल शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को मुख्य विषय के रूप में शामिल करने की घोषणा की, जिससे छात्रों को नई तकनीकों की बेहतर समझ मिल सके। इसके साथ साथ ग्लोबल माइनिंग एंड मेटल्स वाटर डेटा सेट रिपोर्ट भी जारी की गई है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग एंड मेटल्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की लगभग 2/3 खनन एवं धातु प्रसंस्करण इकाइयां उच्च जल संकट वाले क्षेत्रों में स्थित हैं। और कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर बात करें तो ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में झंडू कुमार ने भारत के लिए कांस्य पदक जीता। इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों से बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक और तैराकी में भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। और अब हम एक और उम्मीद कर रहे हैं आपको प्यारे प्यारे गीत सुनवाने की, तो आइए सुनते हैं एक और ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओ, कार्यक्रम में बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स यानी वीकली प्लस की। और आज के दिन की अगर बात करें तो आज भारत ने 27वां कारगिल विजय दिवस मनाया। इस अवसर पर देश भर में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई और ऑपरेशन विजय की वीरगाथा को याद किया गया। इसके साथ साथ कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर बात करें तो ग्लासगो में भारत का अभियान जारी है। आज मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग मुकाबले और भारत पाकिस्तान बॉक्सिंग मुकाबले पर विशेष ध्यान रहा। इसके साथ साथ अगर मॉनसून की आपको अपडेट दें तो भारतीय मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी रखी है। कुछ क्षेत्रों में येलो अलर्ट भी लागू किया गया है। तो इसी के साथ

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में यानी शाम 6:05 पर कार्यक्रम शाम गजल प्रसारित किया जाएगा। 6:30 पर आप सुनेंगे लाइव फोन इन कार्यक्रम मिंचना। 7:10 का समय रहेगा कार्यक्रम खेती बाड़ी का। और रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। 8:30 पर आप सुनेंगे देश गान। रात्रि 9:15 पर एक ही निर्माता निर्देशक के क्रम में आप सुनिए राजकुमार संतोषी के फिल्मों के गीत। 9:30 पर कार्यक्रम गीतों की महफिल प्रसारित किया जाएगा। और रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे रविवासरीय संगीत सभा। आकाशवाणी शिमला से शाम 6 बजे और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज एट 9, 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। श्रोताओं, प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कल के मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। प्रातः 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सुहानी और इस कार्यक्रम में आपको जानकारी देंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर। इसके साथ साथ 12:30 पर कार्यक्रम सुनो सखी प्रसारित किया जाएगा। तो श्रोताओं, ये थी विस्तृत जानकारी हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। थोड़ी देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैच द रेन अभियान में गांव और शहरों से लेकर पंचायतों व सामाजिक संगठनों की जबरदस्त भागीदारी पर प्रसन्नता जताई है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अभियान के तहत पुराने तालाबों से गाद हटाई जा रही है और कुओं व बावड़ियों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि

0: ये अभियान पूरे देश में 4 जुलाई से चलाया जा रहा है।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
0: प्रधानमंत्री ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर वीर शहीदों को भी याद किया।
1: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: हर घर तिरंगा अभियान की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस अभियान ने पिछले कुछ वर्षों में पूरे देश को एकजुट किया है। उन्होंने प्लास्टिक प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का कचरा प्रकृति के लिए नुकसानदेह बना हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्राथमिक शिक्षकों को शिक्षक दिवस से पहले नई कॉम्प्लेक्स प्रणाली पर उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। शिमला में आज प्राथमिक शिक्षक संघ की आम सभा में उन्होंने कहा कि सरकार इस व्यवस्था की समीक्षा कर ये तय करेगी कि इसमें सुधार की आवश्यकता है या इसे पूरी तरह वापस लिया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि प्राथमिक शिक्षकों के विरुद्ध की गई निलंबन की कार्रवाइयों, विभागीय जाँचों और दर्ज FIR को वापस लिया जाएगा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में भर्ती अनियमितताओं, पेपर लीक और भ्रष्टाचार पर राज्य सरकार पूरी तरह बेनकाब हुई है। उन्होंने कहा कि अनियमितताओं और पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों पर कांग्रेस सरकार की भूमिका पूरी तरह संदेह के घेरे में है। शिमला के जाखू में आज मन की बात कार्यक्रम सुनने और एक पेड़ माँ के नाम अभियान में भाग लेने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन मामलों में कार्रवाई करने की बजाय दोषियों को संरक्षण दे रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश का युवा पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया चाहता है, लेकिन सरकार इस दिशा में विफल साबित हुई है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ऊना जिला के हरोली क्षेत्र को दिसंबर 2027 तक 100% पेयजल व सिंचाई सुविधा संपन्न बनाने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। गोंदपुर बुल्ला में आज जन सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक गांव और प्रत्येक व्यक्ति तक योजनाओं का समान लाभ पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। अग्निहोत्री ने भरोसा दिलाया कि जनहित से जुड़े प्रत्येक मामले का पूरी संवेदनशीलता के साथ समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। कारगिल विजय दिवस के मौके पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने चंबा में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मंडी जिला के टिहरा में विजय दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में स्वास्थ्य व सैनिक कल्याण मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि सरकार वीर जवानों, उनके आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा रोजगार में पूर्व सैनिकों के लिए 15% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी कारगिल विजय दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। चंबा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला आज से शुरू हो गया है। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने इस 8 दिवसीय मेले का शुभारंभ करते हुए कहा कि ये उत्सव प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, सांप्रदायिक सौहार्द और जीवंत लोक परंपराओं का प्रतीक है। उन्होंने युवाओं से अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहने और भारत की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने का आह्वान किया। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि सरकार खेल संस्कृति व खेल अधोसंरचना को बढ़ावा दे रही है। घुमारवीं में आज कबड्डी ओपन टूर्नामेंट के शुभारंभ पर उन्होंने कहा कि खेलों के माध्यम से बच्चों और युवाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
2: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
3: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
2: अरे वही अपना 60 रुपया।
3: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
2: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
3: और दूसरा?
2: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
3: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।

0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:06 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शामे गजल।

0: स्मार्ट चले, स्मार्ट दिखे, हर सफर हो बढ़िया रे। मारुति सुजुकी सिलेरियो, खुशियों की सावरिया रे। बेहतरीन 26.68 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज, स्टाइलिश लुक्स और कंफर्टेबल ड्राइव के साथ माइलेज का हीरो स्टाइल भी कमाल। सिलेरियो के संग हर दिन बेमिसाल। और अब पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 42,100। ऑफर का फायदा उठाइए आज ही। TNC अप्लाई। विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी सिलेरियो, स्मार्ट चॉइस, स्मार्ट ड्राइव। माइलेज फिगर एज पर सर्टिफाइड टेस्ट कंडीशंस। TNC अप्लाई।
1: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
2: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
1: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
2: Equipped with features like a 360-degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
1: And now, it's yours at an effective price of just ₹5.59 lakh. Yes, ₹5.59 lakh. Valid till 31st July only.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today. TNC apply.
3: Nexa.
4: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
5: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई।
4: ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही

0: देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
1: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जाँच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में।
2: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
3: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
0: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
3: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
0: जल्दी विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
4: कार्यक्रम की अगली गजल जगजीत सिंह की आवाज में।

0: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। TNC अप्लाई।
1: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
1: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
2: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
1: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
3: Nexa.
4: दिल की बातें लफ्जों में कहाँ पूरी उतरती हैं, कुछ खामोशियाँ भी मोहब्बत की कहानी कहती हैं।

तो श्रोताओं, ये रहा कार्यक्रम शामे गज़ल। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मिंजरा।

0: हाँ जी नमस्ते जी,
1: जी नमस्ते।
0: कौन बोला दे?
1: खुशी।
0: खुशी बोला दे। अच्छा जी, क्या करा दे तू? हाँ
1: बैठे हैं।
0: अच्छा, तो फोन तू आपू कीता की मलाई था कुणी?
1: लाइट है कुणी?
0: अच्छा, मम्मी ने गल करा?
1: मम्मा वे करे ना।
0: अच्छा, तो गल कर, तुहां करनी है गल कार्यक्रम च?
1: हाँ जी।
0: करा दसा था, क्या काम कार लगाया अजकल?
1: कुछ नहीं। हाँ
0: छुट्टियां पियां होनिया ना?
1: जी।
0: अच्छा, तो दिखा छुट्टियां विच अहां दे छोट छोटियां बच्चियां ने सभी अहां दे कार्यक्रम ने जुड़ा दिया, तो बड़ी अच्छी गल है। कने कुथी घूमना फिरना भी गए
1: नहीं
0: मामिया ने?
1: अर्ली में मामिया नहीं है। हाँ
0: अच्छा, मामिया ने पूजी है ना तुहा ना,
1: जी।
0: तो कार्यक्रम सुनते रहते सारे की आज ही मिलाया फोन। हेलो,
1: हेलो। अच्छा
0: मैं बोलिया आज ही मिलाया फोन की सारे कार्यक्रम सुन दे हाँ दे।
1: सारे कार्यक्रम सुन दे।
0: चलो बड़ी अच्छी गल है, तुहा फोन किता कने तुहा दा फोन लगी भी गया, तो तुसें सुनाना हूं हाँ अपने कार्यक्रम मिंजरा विच सब ते पहला लोक गीत। धन्यवाद जी।
1: धन्यवाद।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो राजी,
0: हाँ जी नमस्कार जी, कौन बोला दे?
1: डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा रैन से बोल रहे हैं।
0: अच्छा रहन ते बोला दे जी, ना दसने अपना।
1: ना सीमा जी,
0: अच्छा सीमा जी, तुहां दा स्वागत है कार्यक्रम मिंजरा च। और दसा, तुहां फोन किता था, कुछ गलबात हने करनी हो है, गलाना हो कुछ?
1: जैसे थोड़े प्रोग्राम सुनते सारे बड़े शैल लगते।
0: अच्छा दिखा, तारीफ जा लूँ हाँ कार्यक्रम आदि हुंदी ता हाँ, मैं बोलती हाँ दा उत्साह सा दुगना हो जाता। तो
1: हाँ जी
0: तू हाँ रोटी रसोई दे कम्मे सौगी सौगी सुन दे कि या
1: हाँ जी
0: चल
1: हाँ
0: दे
1: जी
0: फिर
1: हाँ जी
0: दे?
1: हाँ जी हाँ नहीं रोटी बनानी फिर फोन रेडी के लगा लेना।
0: अच्छा तो आज दसा हाँ दे सारे सुनने वाले भी, तू हाँ क्या खास लै बनाना अज?
1: अच्छा कड़ी बनानी
0: कढ़ी? अच्छा
1: हाँ जी
0: दिखा, कढ़ी तो मैं बोलती पई ग्रां दा एक ऐसा खान है भी चलू, कोई बारी कोई समझ नहीं हो भी क्या बनाइए, तो कढ़ी हाँ फटाफट सोचते भाई कढ़ी बनाई लेंदे ना।
1: हाँ जी हाँ जी
0: अच्छा जी, और परिवार वच सब ठीक? बाल बच्चे छुट्टियां पई होनी
1: हाँ जी
0: अजकल?
1: हाँ नहीं जी छुट्टियाँ नहीं पई हैं स्कूल जा
0: अच्छा
1: रहे हैं।
0: जी, तो तुहा घर रहंदे कि कुछ काम भी कर दे?
1: नहीं नहीं हाउस वाइफ सी
0: अच्छा जी, आहां दे कार्यक्रम ही ये सुन दे रहा करा कि अपना प्यार बनाई के रखा करा,
1: हाँ
0: तुहांदा
1: जी
0: फोन करने तीन बड़ा बड़ा धन्यवाद जी।
2: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो के 10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
3: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
2: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ।
3: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
2: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
3: जल्दी विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप। TNC अप्लाई।

0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
0: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
1: Equipped with features like a 360-degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
0: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 5.59 lakh. Yes, Rs. 5.59 lakh. Valid till 31st July only.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today. TNC apply.
2: Nexa.
1: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
0: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
1: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
0: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
1: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
0: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: हेलो, हाँ जी नमस्कार जी। हेलो, कौन बोला दे जी? हेलो, दिखा कई बारी हाँ दी पैना फोन तो मिलाई नहीं आ, फिर या तो शर्म कर दी गल करने दी, या फिर तिना दे मुझे लगता भी थोड़ा सिग्नल दी दिक्कत होंदी हो है। जिहड़ियां भी भैणां फोन मिलांदियां ने बे जी च कोई के गल करा करा कि जो कि यह ऐसा मंच है, ऐसा कार्यक्रम है जिथों अह अपनियां भैणां ने सीधी गलबात करदे, इत्थों किसी की रोक टोक नहीं हुंदी, ना कोई पाबंदी हुंदी। तो तुह जल भी फोन मिलांदियां ने, एक तो फोन बड़िया मुश्किलों नाल मिलदा, कने जे मिलदा कने तुह गल ना करन तां बिल्कुल भी फायदा नहीं होना तुसां जो। हैलो,
4: हैलो,
3: हाँ जी नमस्कार जी।
4: नमस्कार मैम,
3: ये महिला तीन कार्यक्रम है जी।
4: अच्छा अच्छा, ठीक है मैडम जी, ठीक है।
3: वैसे तो हाँ कार्यक्रम की शुरुआत ही बोली दें भी कार्यक्रम हमारी भैन वास्ती है, पर फिर भी कई बार शायद धोखा लग जाता हो या कोई गल है तो हाँ दी कुछ भाई बंधु भी फोन मिलाई दें तो फिर ही मजबूरन हाँ तिना का फोन कट्टना पौंदा, क्योंकि जो तिना ने गल करना लग गए तो वैसे ही कार्यक्रम का समय उतना ज़्यादा नहीं होंदा, कने हाँ अपनी भैन ने भी गलबात इन्हों की नहीं हो पाती। हैलो,
5: हैलो,
3: नमस्ते जी।
5: नमस्कार जी,
3: ना दस्सने अपना कने कुत्थों ते बोला दे?
5: मैं डिस्ट्रिक्ट

0: से संध्या जी बात कर रही हूँ।
1: अच्छा जी, कार्यक्रम च स्वागत है।
0: हाँ जी
1: हाँ दे, कार्यक्रम समझ आई अंदे पूरे?
0: हाँ जी हाँ जी
1: अच्छा जी, ते थोड़ा फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है मंडियाली कने कांगड़ी विच, पर कुछ एक शब्दों का लगता, पर शायद तुहां लगातार कार्यक्रम सुन दे होंगे तो तुहां ये सब
0: हाँ
1: कुछ
0: जी हाँ
1: समझ
0: जी
1: आंदा है।
0: लगातार कार्यक्रम सुन रहे हैं आपके,
1: जी
0: बहुत
1: धन्यवाद
0: अच्छे
1: जी।
0: कार्यक्रम कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं आप। हाँ
1: हाँ जी हाँ जी, धन्यवाद जी। और कुछ बोलना चाहते हो ना जी?
0: और बारिश लगी हुई है आज, तो मौसम बिल्कुल साफ था हमारे।
1: अच्छा जी, अच्छा।
0: हाँ जी
1: आज असली साइड भी काफी अच्छा मौसम रहा, धूप खिली रही कने।
0: हाँ जी हाँ जी
1: हाँ
0: सारा
1: जी
0: दिन धूप ही था, मतलब काम कुम करने के लिए अच्छा था आज।
1: जी तो तुहां पहाड़ी इलाके विच हैं कि थोड़ा शहर विच?
0: नहीं जी पहाड़ी इलाके में है। हाँ जी
1: अच्छा
0: खेती
1: तक।
0: बाड़ी करते हैं
1: हाँ जी
0: थोड़ी
1: हाँ
0: थोड़ी
1: जी,
0: मोटी।
1: चलो बड़ी अच्छी गल है, थोड़ी मोटी नहीं बड़ी अच्छी गल है। अगर जितना भी तुहां काम खुद कर देन कने अपने परिवार वास्ते कर देन, सब बड़ा हुंदा
0: हाँ जी हाँ जी ऐसे तो है। धन्यवाद
1: जी। कार्यक्रम च फोन किया तुहां दा बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: जी।

0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
0: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
1: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
0: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
1: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
0: Equipped with features like a 360-degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 5.59 lakh. Yes, Rs. 5.59 lakh. Valid till 31st July only.
0: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today. TNC apply.
2: Nexa.
3: हेलो नमस्कार जी. हाँ जी, कौन बोला देव? थोड़ा फोन ते दूर हो या फोन कटोई या कने शायद ही ना बड़ी नज़दीक रेडियो रखिया था तो सौगी जड़ी आवाज़ थी से रेडियो दी सभी गूंजा दी थी तो कोशिश करा तुहां कि भई फोन ते दूर हो के गल करा ताकि तुहां दी गलबात हने अच्छे तरीके ने हो सके. तो दिखा अज का जोड़ा कार्यक्रम है मिंजर हाँ अपन भैन वास्ती खास है क्या हाँ दैन इस कार्यक्रम च फोन करी सकदियाँ ताकि से अहने अपनी कोई भी दिले की गल कर कई बार अहाँ दिखते भी परिवार संभालते संभालते अपनी जिम्मेदारियां नभाते नभाते हाँ दैन कई बार आपू वास्ती टाइम नहीं दिदियाँ तो हाँ एक कार्यक्रम खास दिन वास्ती रखिया भी सर जरूर कुछ ना कुछ पाने हाँ गल कर अपने मने की कर अपने परिवार ने जुड़ी हो कोई गल से कोई भी गल अहने सांझी करी सकदियाँ तो इस दियाँ ये कार्यक्रम अहां दियाँ भैन वास्ती खास रहिंदा तो जरूर अली भी थोड़ा जिहा वक्त बचता है तो हाँ कोशिश करा जे फोन मिली आंदा है तो हाँ तुहाने गल करनी है नहीं तो फिर तो शामिल करना है एक प्यारा दिया लोक गीत.

कार्यक्रम मिंजरां दा समय बिल्कुल घटदा जा रहा, कने तुहें दसिंदे जांदे जांदे भई तकनीकी सहयोग रहा सुनील कुमार दा, कने प्रस्तुति रही डॉक्टर जतिंदर पाल सिंह, कने सुन दे रहा कार्यक्रम मिंजरा आकाशवाणी धर्मशाला ते। हुण अपनी सखी लक्ष्मी जो दे अनुमति। अच्छा जी, जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे लाइव फोन इन कार्यक्रम मिंजरा। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 7 बजने को है, कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अतहर सईद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करते हुए ये बात कही। इस दौरान सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक युवाओं ने अपने अनुभव साझा किए। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत प्रतिभागियों को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को नज़दीक से जानने का अवसर मिलता है। ये कार्यक्रम सामुदायिक भागीदारी, राष्ट्रीय एकता और सीमावर्ती गांवों के कार्यनीतिक महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी प्रयास करता है।
2: देश के प्रथम गांव में बैठे हुए लोग देश की सुरक्षा के लिए कितने जागरूक है, देश के अन्य भागों से उनका लगाव निकटता कितनी, इन सभी चीजों का अनुभव मेरे देश के नौजवानों को मिले, ये हमारा उद्देश्य था। और जो उत्साह पूरे देश के युवाओं में दिखा वो अद्भुत है। लगभग 3 लाख युवाओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और उनमें से 400 से अधिक युवाओं का चयन हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध।

0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरे देश उत्साहवर्धन कर रहा है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण निछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री जोशी ने यह जिम्मेदारी सौंपने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर चल रही अवैध वसूली में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार और 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डी डे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोबा बडिंगलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। जम्मू कश्मीर में अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश के कारण असुरक्षित या क्षतिग्रस्त पाए गए सभी स्कूलों को तुरंत बंद कर दिया जाए और आवश्यक मरम्मत पूरी होने तक उन्हें बंद रखा जाए। हरारे में भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 193 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में जिम्बाब्वे ने ताज़ा समाचार मिलने तक 7वें ओवर में 3 विकेट पर 56 रन बना लिए हैं। भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 192 रन बनाए। भारत शुरुआत के दोनों मैच जीतकर श्रृंखला पहले ही अपने नाम कर चुका है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has said collective participation has always been a source of strength in India's cultural ethos. Mr. Modi made the remarks while interacting with participants of the Viksit Vibrant Village Programme 2026 through video conferencing today. More than 400 young participants from all states and union territories shared the experiences with the Prime Minister. During the interaction, Mr. Modi highlighted that communities in the country have long worked together while singing songs, stressing that this practice strengthened unity and made collective efforts more joyful and stress-free.
3: हमारे देश में सदियों से एक अच्छी परंपरा रही सामूहिकता की और सामूहिकता के साथ गीत गाते गाते कामों को करना और उस काम के साथ गीत भी बना देना, जो इस प्रकार का काम हो उसी का गीत बना देना, ये हमारे देश की बड़ी विशेषता रही है। उस सामूहिकता से शक्ति आती थी और गीत गाने से तनाव मुक्त काम होता रहता था।
2: Highlighting the role of solo travel, the Prime Minister said many participants began their journeys as individuals but returned as one family through the My Bharat initiative. He described this transformation as one of the program's key achievements, turning personal experiences into a shared sense of belonging and national unity. Prime Minister Modi remembered the brave hearts of the nation today on the occasion.

0: कार्यक्रम खेतीबाड़ी सुनने वाले सारे श्रोतियों का स्वागत है। अहां दे टियाले पर किसान साथियों अज दे कार्यक्रम विच तुहा कने गलबात करा दी है शन्नो ताई कने मिंजो पछां चलियो ने बड़का चाचू होरा।
1: राम राम शन्नो ताई जी, राम राम। और जितने भी किसान बागबान भाई बहन कार्यक्रम जो सुना कर देन उन्हां सारे जो ही बड़का चाचू तरफा दे राम राम
0: जी। दिखा बड़का चाचू होरा बड़े जोश ने आए न कने मैं दिखा भी दौड़ हिलाई हुई ना।
1: बिल्कुल कहने दिखा कि मिले सन्नू ताई तो मिले पहले पुजना हाज टैले पर
0: हाँ तो नसीब तो

0: ते तू थोड़ा जहा बरसाती हायो सचेत रहना पौंदा।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बड़ियां गल्लां तीं खेतीबाड़ी दा, चलो काम चली रहिंदा, पर जियां अपना आम जीवन यापन होंदा तिस तीं हायो थोड़ा जहा सचेत रहना पौंदा। कजो कि अजकल दिखा कल भी बरखा हुई आ तां सै बोलिया जियां कोई घारां पई आ दियां,
1: बिल्कुल
0: कोई
1: बिल्कुल
0: रुख बूटे पई आ दे, तां थोड़ा जहा इन्हां गल्लां चलो तुहां सड़कां बाजारां च भी चलदे ना, तां थोड़ा जहा ध्यान रखी के चले। कने घरै भी जियां डंगर बछू बन्ने होवै तां दिक्खी लिया कोई बखै रुख बूटा से ना होवै
1: बिल्कुल कहने देखा कि अगर कोई जरूरी काम है ताएं, अगर
0: निकलना।
1: जी ज़्यादा बरखा हो कर दी है तो कोई जरूरी काम है ताएं तो वहाँ घर दे निकलना, नहीं तो मौसम ठीक है उसके बाद यहाँ अपने जड़े काम काज कर भी करने हैं
0: करने
1: मतलब।
0: जी बिल्कुल सही गलाया कि जो कि जान है तो जहान है।
1: जी जी जी
0: कने
1: जी
0: खास करी इन्हां दिनों थोड़ा जहा हाँ जो ध्यान रखना पौंदा,
1: बिल्कुल
0: त्रिगा दिन
1: बिल्कुल
0: खुली पौने बड़का चाचू तहाँ फिर तिंगे नियमित अपने काम करने।
1: जी जी जी जी जी जी
0: कने किसान साथियों अज दिखा तुहाने सांझी करनी है हाँ बड़ी कमे दी गल, कजो कि ताना दा काम तो लगभग हो ही गया, कने हुण तिना दी बस नज़रसानी है ना।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल
0: तो इस ते अलावा भी हाँ दे किसान साथी और भी कम कार करी सकते, तो इस विच जे हाँ गल करिए तो चेरी कने पलम,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो चेरी दिखा पहाड़ा दी गल करिए तो पहाड़ा दा एक लाल सोना मन्या जांदा।
1: जी जी जी जी
0: कने किसान साथी जियां खेती करदे ने कने जिथू जे चेरी तैयार हो सकती है तो सह मैं बोलदी इथू जरूर इस चीज़ें जो लगान, जो कि ठंडे मौसम की जरूरत होती चेरी वास्ती।
1: बिल्कुल कहने दिखा कि अगर हाँ कोई भी नया जी या व्यवसाय या फिर कोई मतलब पौधा लगाना चाहते हैं
0: जी
1: तो जड़ा
0: जी
1: पौधा के भी ऐसा होना चाहिए कि जिस दे मतलब भी रोग मुक्त हो, या बी लगाते हैं तो बी भी ऐसा होना चाहिए कि मतलब उपचारित बीज होना चाहिए।
0: बिल्कुल। कने ये जड़ा चेरी दी अगर कोई खेती हाँ दे किसान साथी करना चाहते हैं तो इस वास्ते हाँ दा हिमाचल हो या जम्मू कश्मीर हो या उत्तराखंड, कने उच्चे उच्चे पहाड़ी इलाके जितने भी हैं ये सब बड़े अच्छे मन्ने जाते, कजो कि मैं पहले भी गलाया भी ठंडे इलाके की जरूरत होंगी है इस फले वास्ती।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: कने जे किस्मा की गल करा बड़का चाचू तो किस्मा भी हाँ जरूर अपने श्रोतियां दसनिया ने चेरी तीन किस्म हैं जियाँ स्टेला, कने जेड़ी एक है लैम्बर्ट
1: जी जी
0: जेड़ा थोड़ा देरी ने खिलदी, लैम्बर्ट जेड़ी है, कने जेड़ी स्टेला है से खुद ही आपू फल दे दी, मतलब
1: जी
0: से
1: जी
0: समय पर फल देने तीन तैयार हो जाती। कने जे गल करिए चेरी की खेती वास्ती खास करी तो चेरी के पौद्या जो ऐसी मिट्टी की जरूरत होंगी जितू पानी जमा ना हो,
1: जी जी जी जी
0: कने इस पर जलू फल चेरी लगनी है तो तिन्हें छोटे चिड़ुओं पखेरुओं से बचाना बड़ा जरूरी हो जाता,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: कजो कि छोटा फल होंगे तो चिड़ू पखेरू भी चाए न खाते, पर जे तुम बड़े स्तर पर इस खेती जो करा देना तो तुम्हें यदा कई प्रावधान जी कोई जालियाँ कई गल्ला मिली आदियाँ तो तुम तो इस्तेमाल करी कि अपनी खेतीबाड़ी जो बचाई सकते। कने इस ते बाद जिखा पलम की गल करा जिसे आलू बुखारा गलांदे
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो
1: और
0: ये भी
1: काफ़ी इन्हों दिनों सू देखने मिले करते हैं कि जी हाँ
0: बिल्कुल
1: मतलब अपने घरे भी मतलब छोटे स्तर पर जी हाँ लगाए होंगे ना,
0: हाँ दो
1: है
0: चार बूटे हाँ दे भी अगर अखे
1: ना।
0: बखे होंगे ना,
1: बिल्कुल
0: पर
1: बिल्कुल
0: जे खेतीबाड़ी दे हिसाबे ने किसाना ये काम करना है तो सह पलम या फिर तुसी आलू बुखारा भी गलांदे, इसका खट्टा मीठा स्वाद होंदा। कने कई चीज़ां बनदियां ने दिखा जैम बनदे कोई ना दे, मतलब और भी कई पदार्थ बनदे जिससे इन्हां दा काम करी के अच्छा मुनाफा कमाई सकदे।
1: बिल्कुल
0: कने हिमाचल दी विच तां ये होंदा ही होंदा, कने जियां दोहा पंजाब हरियाणा होई या पश्चिम उत्तर प्रदेश मैदानी इलाकों विच भी उगाया जांदा। कने इस दियां किस्मां दी गल करा पलमे दियां तां सब ते मशहूर जिहड़ी किस्म है सै सांता रोजा,
1: जी जी
0: जिहड़ी कि बड़ी रसीली हुंदी। कने इस ते अलावा सतलुज पर्पल, कने एक है काला अमृतसरी, ये भी बड़ा बड़ी मशहूर है, मतलब बड़ा इसका स्वाद दे रूप च लोग इसे खाना पसंद करते। कने इस जो तुहां अगर लगाना चाहन तां दिसंबर ते जनवरी दे बीच इस दी जड़ा बूटा पौधा तुहां लगाई सकदे,
1: जी जी
0: तां दिखा बड़े अच्छे तुहां मुनाफा कमाना चाहन तां मैं बोलदी चेरी कने पलम भी तुहां दा एक बड़ा अच्छा तुहां चुनाव हो सकदा कि हाँ क्या फलदार पौधा लगान।
1: बिल्कुल कहने देखा कि जी कि यहाँ पहले बोला करते कि बरसात का मौसम है और इस बरसात के मौसम से कई ऐसे जड़े पौधे होंगे जिस यहाँ मतलब जी कलम भी लगाई के उन्हें मतलब और
0: हाँ
1: पौधे जहाँ परिवर्तित कर भी कर सकते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: कने बरसाती दे मौसम विच कुछ ऐसे फलदार पौधे ने या कोई भी ऐसे बूटे से कलमा ने भी लगी पौंदे, तो इस बरसाती दा तिना वास्ते पूरा पूरा फायदा लेना चाहिए।
1: जी जी जी जी
0: तो किसान साथियों ये तो जानकारी हाँ तुहाने और भी सांझी करनी है, पर टाले पर तुहां तक पजांदे ने इक मिठा दिया लोकगीत।
1: जी

0: जी किसान साथियों, तुहां सुनिया प्यारा दिया मिठा दिया लोक गीत कने। उम्मीद करनी है बे तुहें ओ बांका लगा होना है।
1: जी जी
0: तां इस ते बाद बड़का चाचू जड़ी एक जानकारी दी एक रीत बनी हो ना,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: सभी श्रोतियां तक पजानी है कने कोशिश करनी है बे तीस ते भी किसान साथियों कोई ना कोई जरूर फायदे वाली गल नोट करनी है।
1: जी
2: किसान साथियों, जिया कि तुहां जानते हैं कि कार्यक्रम किसान वाणी च अहां दा प्रयास रहिंदा कि हर दिन एक नित नई जानकारी अहां तुहां तक पहुंचाइए, चाहे वह कृषि विज्ञानिकां द्वारा दी गई जानकारी होवे या फिर अहां दियां उन्नत किसानां कन्नै कीती गई गलबात होवे। तहसील जुआली दे ब्लॉक नगरोटा सूरियां च कन्नै ग्रां दा जिहड़ा नां है तलियाल, इत्थों मेरे कन्नै एक उन्नत किसान

0: से जुड़ा करते हैं वह करते हैं इन्होंने कन्या गलबात। राम राम जी।
1: राम राम जी।
0: जी अपना नाम दसा।
1: मेरा नाम है राकेश कुमार राणा।
0: जी राकेश जी, तो राकेश जी खेती बाड़ी करते तो हाँ?
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: अच्छा, कितना के अरसा हुई है खेती करते?
1: असा 2016 च शुरू किया था नैचुरल फार्मिंग दे कॉन्सेप्ट पर काम करना।
0: अच्छा,
1: तो असा शुरुआत की थी हल्दी कने एलोवेरा करने।
0: हाँ जी।
1: साड़ा मुख्य उद्देश्य था कि छोटे किसान कने मंझली जोत आले किसान जेड़े है ना,
0: हाँ जी,
1: सक ऐसियां क्या चीजा उगाइए ताकि किसान मार्केट कने जुड़ी सके।
0: जी जी, हाँ जी।
1: क्या उत्पाद होना चाहिए साड़िया जमीन च, हाँ क्या चीजा उगाइए,
0: हाँ जी,
1: ताकि तिना दी हाँ प्रोसेसिंग कने पैकेजिंग भी करिए कने हाँ सीधे मार्केट च तिना चीजें पहुंचाइए ताकि किसान मार्केट कने जोड़न कने किसान फायदा हो।
0: अच्छा,
1: तो असा 2016 च शुरू किया था हल्दी कने।
0: अच्छा,
1: तो हाँ हल्दी दियाँ अलग अलग किस्म लगाइया, तो इस फिर प्रोसेसिंग भी स्टार्ट की, पैकेजिंग भी स्टार्ट की।
0: हाँ जी।
1: फिर यहाँ 5-6 प्रोडक्ट लेके मार्केट च आए।
0: अच्छा,
1: तो मार्केट च सो साड़ी जड़ी क्वालिटी थी से हाँ जमीना दे लेके पैकेजिंग तक मेंटेन रखी।
0: हाँ जी।
1: तो इस करके सो अच्छे रिजल्ट मिले कने हाँ हौला हौला इस कमें बधा देना कन्या, हाँ उसके बाद एलोवेरा भी स्टार्ट किया जमीना लगा।
0: राकेश जी, जब जी दस्या ना कि हल्दी पर तुहां काम शुरू किया हा।
1: हाँ जी।
0: ये हल्दी कौन, इसकी कोई किस्म है कोई हल्दी दी?
1: हाँ जी, असा 5 किस्म ही हल्दी पर काम करा दे।
0: अच्छा,
1: इस एक साड़ा प्राचीन बीज था जेड़ा साड़े दादा दादी दे टाइमे दा बीज हुंदा था।
0: हाँ जी।
1: जिस हाइब्रिडाइजेशन नहीं थी।
0: अच्छा,
1: बिल्कुल प्योर देसी बीज था।
0: हाँ जी।
1: दूजा बीज अहां एक ट्रायल लिया था प्रगति किस्म दी हल्दी पर।
0: अच्छा।
1: तीजा हाँ ब्लैक टर्मरिक पर भी ट्रायल लाया दे।
0: हाँ जी।
1: कने एक बीज था से भी बड़ा रेयर मिलता है, से बीज था कस्तूरी मंजर।
0: अच्छा,
1: तो कुछ बीज जड़े हैं सह असा पाउडर बनाई के पैकेजिंग करी के बेचा दे।
0: हाँ जी।
1: बाकी जड़े बीज है ना हल्दी दे तिना दी जड़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है ना, औषधीय गुण जड़े हैं ना,
0: हाँ जी,
1: सह दुईया नॉर्मल टर्मरिक ते ज्यादा है ना, तो तिना दे हाँ प्रोडक्ट बनाई के फिर यहाँ मार्केट च सेल करा दे। कने हाँ एलोवेरा की खेती भी बढ़ा दे।
0: अच्छा,
1: हल्दी का हाँ पाउडर, टर्मरिक फेस ऑयल,
0: हाँ जी,
1: टर्मरिक फेस पैक,
0: हाँ जी,
1: टर्मरिक स्किन केयर ऑयल।
0: अच्छा,
1: ये बना दे कने एलोवेरा दा हाँ एलोवेरा पाउडर बना दे।
0: अच्छा, ये सारी चीजें घर ही बनांदे तू?
1: ये सारी चीजें घर ही बनाई हैं कने फिर वहाँ पैकेजिंग करके इसे बेचा दे।
0: अच्छा, तो जी तुहां दस्या कि हल्दी भी लगांदे ने तुहां कने सोगी एलोवेरा भी लगा करदे ने, तो कुल कितनी की जमीन है तुहां वाल?
1: 8 कनाली जमीन है।
0: अच्छा,
1: हल्दी हाँ ज्यादा लगा दे, हल्दी लाइन च लगा दे, तो कई बार हाँ बीच वाली लाइन जी एलोवेरा की भी लगाई।
0: अच्छा राकेश जी, जी तुम दसिया ना कि तुम नैचुरल जो सारा ये काम करा करते हैं।
1: हाँ जी।
0: तो प्राकृतिक दे पहां तुहां दा रुझान किया हो यार? कुछ तो तुझे जी प्रेरणा मिली कि प्राकृतिक तरीके कन्नै किते जाए?
1: एक्चुअली क्या हो रहा था साढ़े पास जरा कैमिकल कन्नै पेस्टिसाइड का जो यूज़ हो रहा था सही तरीके ने नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा मात्रा चाह कैमिकल कन्नै पेस्टिसाइड यूज़ करा दे थे।
0: हाँ जी।
1: सह जरा कैमिकल पेस्टिसाइड हाँ जमीना दे पा दे थे सह अनाजे के थ्रू साढ़े शरीर च भी पुजा था।
0: बिल्कुल।
1: तो इस कन्नै सारिया बीमारियां भी बधा दी थी।
0: हाँ जी।
1: साड़ा इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हुआ था क्योंकि सो पौष्टिक अनाज नहीं मिला था, पौष्टिक सब्जियां नहीं मिला हैं या पौष्टिक हल्दी भी नहीं मिला दी।
0: हाँ जी।
1: तो उस वजह ने मेरा विचार आया था 2016 की कुछ खेतों जहाँ ऐसा काम करिए बिना केमिकल पेस्टिसाइड से ताकि जड़ी भी खेते जो चीज़ तैयार हुआ है सह बिल्कुल शुद्ध तरीके ने प्राकृतिक तरीके ने तैयार हुआ।
0: जी दिखा, बड़ी खुशी की गल है जलू अहां कन्ने प्राकृतिक तरीके कन्ने खेती करने वाले किसान जलू अहां कन्ने जुड़ते हैं। अच्छा, तो प्राकृतिक तरीके कन्ने जलू तुहां करते हैं तो अहां दे सुनने वाले तुहां ये दसा कि कौन कौन घटक जड़े से तुहां बनांदे हैं अपनी जलू हल्दी कन्ने इहदी जलू खेती तुहां करनी है, जी खाद कौन कौन पाते इस विच फिर बनाई के?
1: इस विच खाद हाँ पाई सकते देसी गाय दे गोबर कन्ने असा घनजीव अमृत बनाई सकते।
0: हाँ जी।
1: लिक्विड फॉर्म च भी बनाई सकते असा।
0: हाँ जी, जीव अमृत हुई है।
1: हाँ जी, घनजीव अमृत हुई है।
0: हाँ जी।
1: लिक्विड फॉर्म च भी बनाई सकते हाँ कने इसी सॉलिड फॉर्म च भी बनाई सकते, गुठ वहाँ जी पहले गुठ बनाते उस फॉर्म च भी बनाई सकते इसी।
0: हाँ जी।
1: सह करी सकते हाँ डायरेक्ट, हाँ देसी खाद भी यूज कर सकते डायरेक्ट। असा मैक्सिमम जी गोट मैनुअर जिसे बोलते मिंगन वाली खाद भी हाँ मैक्सिमम मिंगन वाली खाद भी यूज कर लेंगे।
0: अच्छा, तो तुहां जो कदे इहदे जिहड़े सह रिजल्ट कदे लगदे कि प्राकृतिक तरीके कन्नै वधिया बांका काम हो करदा?
1: बड़ा बढ़िया काम हो रहा जल असा अपने प्रोडक्ट लेके मार्केट च स्टार्टिंग च गए रहे सो इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि साड़ा लगभग लगभग 90% कस्टमर जो रिपीट कस्टमर है।
0: अच्छा, हाँ जी, देखा कर अजकल का जड़ी साहब देसी कोई भी अगर हाँ उत्पाद है देसी तरीके तैयार किए दिखा बाजार जी सह दिनों दिन जी सह मांग बिल्कुल बढ़ा।

0: दी है,
1: बदल
0: है ना। तो ये तो हाँ दसिया कि 2016 च तो हाँ प्राकृतिक खेती करने जुड़े प्रशिक्षण को तो लिया तो हाँ इधर
1: इस तो प्रशिक्षण तो असा बड़ी बाद लिया हाँ कम बड़ा पहले ही शुरू करी था।
0: अच्छा
1: भी की च आत्मा दे थ्रू फिर इसका प्रशिक्षण लिया था।
0: अच्छा कुतु की है तो हाँ
1: ये नगरोटा सोरिया
0: नगरोटा सोरिया ब्लॉक ची ट्रेनिंग हुई ही।
1: हाँ एक खब्बल ट्रेनिंग हुई थी, 2 दिन का कैंप था देखो।
0: अच्छा
1: तो वो तो ट्रेनिंग हुई थी।
0: हाँ जी
1: तो इसके बाद असा से चीजा सारी सीखिया।
0: अच्छा तो जी प्राकृतिक का तो हाँ जिक्र किया है इस तरह कर देसी गाय भी रखी है।
1: देसी गाय एक गाय रखी है।
0: अच्छा दुध भी दिंदी होनी।
1: दुध भी दिंदी है।
0: अच्छा अच्छा राकेश जी तो दसिया कि चलो तो हाँ ये खुद उत्पाद तो हाँ बनाते हैं पैकिंग वगैरह भी तो हाँ सारी आपू करते हैं।
1: हाँ जी
0: इससे बाद ये बेचना कुछ फिर नहीं के
1: असा व्हाट्सएप के थ्रू ही साढ़े कस्टमर की चेन है साड़ी असा जयपुर भी भेजते कुछ हल्दी पाउडर।
0: अच्छा
1: पठानकोट भी भेजते।
0: अच्छा
1: कुछ हरिद्वार कने दिल्ली भी कस्टमर हैं साढ़े।
0: हाँ जी
1: तो जल्दू असा साढ़े परमानेंट कस्टमर हैं जल्दू असा पैकेजिंग करते साले की हल्दी पैकेजिंग एक बारी होती।
0: हाँ जी
1: तो जितनी भी क्वांटिटी साढ़े वाल अवेलेबल होती है टर्मरिक पाउडर तो असा जो असें पैक करके जो साढ़े परमानेंट कस्टमर हैं उन्होंने पूरे साल का कोटा तिन्हें भेजी देते बाई कोरियर।
0: अच्छा अच्छा जो तुम दसिया है पाउडर इसी बनाने की विधि दसा कि बनाना है शुरुआत चढ़ कि करना हल्दी के बाद हाँ कौन दिया काम करना कि जिससे हाँ कि पाउडर बनाना है क्या क्या करना पौधा
1: हल्दी हाँ चलो खेतरे से निकालनी है।
0: हाँ जी
1: इसके बाद हाँ तसाइया पहले जड़ा कटनी है।
0: अच्छा साफ करनी है।
1: हाँ जी जड़ा कट्टी के असा तुम फिर पानी साफ करना।
0: हाँ जी
1: साफ करके तुम हाँ स्लाइसिंग कर देनी हल्दी की जड़ा की स्लाइसिंग करके।
0: अच्छा
1: इसके बाद असा फिर इसी सुखाते सोलर ड्रायर।
0: अच्छा
1: सोलर ड्रायर च जो सुखाने का फायदा है कि जो सा हल्दी है डायरेक्ट सनलाइट के कॉन्टैक्ट नहीं आती।
0: अच्छा
1: तो इस जरा वॉलेटाइल कंटेंट है मतलब ऑयल की जी मात्रा है बिल्कुल सेफ रही तो साड़ी क्वालिटी जी इंप्रूव हो जाती है। इसके बाद असा इसे ग्राइंडिंग करवा लेंगे।
0: अच्छा बाकी फिर बाद च पाउडर बनी है।
1: हाँ जी फिर पाउडर बनी है यहाँ आधा किलो ही पैकिंग करके स्टिकर वगैरह लगाई के।
0: अच्छा
1: तो जेड़े जेड़े साड़े परमानेंट कस्टमर है ना
0: हाँ जी
1: पूरे हाँ साल दा कोटा बाई कोरियर पे जींदे।
0: अच्छा इस यानी कि और कुछ मिक्स नहीं करना ना
1: इस च और कुछ मिक्स करने जरूरत नहीं पौंदी।
0: अच्छा तो जियां आधा आधा किलो दी पैकिंग है इहदा क्या भार हुंदा जदों बेचना तो हाँ जियां थोक भाव च बेचना या भी कुछ हिसाबे कन्ने बेचदे
1: असां इसियो रिटेल च बेचदे।
0: अच्छा ऐसा देखा ऐसा मन्ने जांदा ना कि प्राकृतिक तरीके कन्ने जेड़े उत्पाद तैयार करदे हन ना उन्हां दा जेड़ा सा थोड़ा मोल भाव जेड़ा थोड़ा ज्यादा हुंदा है।
1: हाँ।
0: तो हाँ जो क्या उस तरीके के भा मिली आदे।
1: हाँ नॉर्मल हल्दी 350-350 रुपए किलो रेट है मार्केट 450 किलो है 450 रुपए पर किलो।
0: अच्छा अच्छा एलोवेरा का जिक्र तो हाँ किता हा।
1: हाँ जी
0: सर क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हाँ
1: एलोवेरा दे तो काफी सारे प्रोडक्ट बनी जाते पर हाँ सिर्फ हल्ले पाउडर पर ही ट्रायल लिया एलोवेरा दे पत्ते कट्टी के बारीक स्लाइसिंग करी के हाँ भी सोलर ड्रायर सुखाते।
0: अच्छा
1: जल उसे सोलर ड्रायर पूरी तरह सुखी जाता हाँ मैनुअली ग्राइंड कर लेंगे।
0: अच्छा
1: जी साड़ी पुरानी चक्कियां थी
0: हाँ जी
1: हाँ तिना ने भी ग्राइंड कर लेंगे कहीं छोटी जी मशीन साले वाली मशीन होंगी।
0: हाँ जी
1: तिना कहीं ग्राइंड करके हाँ बारीक पाउडर बनाई के तुम हाँ फेस पैक यूज करते।
0: अच्छा
1: साड़ा एक प्रोडक्ट है टर्मरिक फेस पैक।
0: हाँ जी
1: तो हाँ टर्मरिक फेस पैक च कुछ क्वांटिटी जी हाँ एलोवेरा पाउडर की भी यूज कर लेंगे।
0: हाँ जी तो जी तो दसिया कि ब्लॉक जो रोटा सूरिया कने आत्मा परियोजना तो जो जुड़ी रहते हैं।
1: हाँ जी
0: तो ये अलावा जियाँ तो प्राकृतिक की तो ट्रेनिंग जी की हुई है प्रशिक्षण लिया।
1: हाँ जी
0: ये अलावा जियाँ और कई तरह के ऐसे प्रशिक्षण जो शिविर लगते हैं कोई होर भी तो ऐसी कोई ट्रेनिंग वगैरह की है कोई।
1: हाँ जी साल मई च सुभाष पालेकर जिहड़े हैं महाराष्ट्र के जिन्हें प्रकृति खेती पर पद्म
0: हाँ
1: श्री पुरस्कार मिले।
0: हाँ जी हाँ
1: हाँ जी हाँ जी तो तिना की वर्कशॉप थी मई महीने।
0: अच्छा
1: तो गवर्नमेंट ने पूरे हिमाचल के किसान भेजे थे जिथों मैंने दिया था।
0: अच्छा कौन सा जगह ही है
1: 7 दिन की वर्कशॉप थी नासिक।
0: अच्छा नासिक
1: हाँ जी नासिक थी महाराष्ट्र च टर्मरिक हल्दी जड़ी है से एक बड़ा जबरदस्त औषधीय पौधा है।
0: हाँ जी
1: असा टर्मरिक कने एक स्किन केयर ना दा एक प्रोडक्ट बनाया।
0: अच्छा
1: इस स्किन केयर प्रोडक्ट कने लगभग लगभग सारिया स्किन दिया जितनिया भी बीमारियां है ना स्किन डिजीज जितनिया भी है ना
0: हाँ जी
1: से सारिया सारिया ठीक हो रही हैं से प्रोडक्ट जेड़ा साड़ा बाकी सारे प्रोडक्टा दे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है।
0: अच्छा अच्छा राकेश जी एक गल हाँ और करते हैं जे जड़े तुहां अपनी जड़ी जितनी भी तुहां खेती करते हैं तुहां दा जड़ा ए इलाका है तो सिंचाई का क्या साधन है पानी कोई क्या कियां करदे तुहां अपने खेतों च पूरा।
1: साढ़े पास सिंचाई की कोई भी व्यवस्था ही नहीं हाँ पूरी तरह से बिल्कुल बारिश के पानी पर ही डिपेंड है ना।
0: अच्छा
1: तो असा जेड़े भी साढ़े एरिए चंगर एरिया है।
0: हाँ जी

0: किसान साथियों इस मिठे मिठे लोग गीत कन्ने एक कड़ी दी सुइयां बोला दी हैं भई हुण आस्ते आस्ते दोनों जने चली पवा तो जाते जाते दसींदे कार्यक्रम विच तकनीकी सहयोग रहा सुनील कुमार दा कने प्रस्तुति रही
1: डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह हुण अपने टैल जस्ते से बड़का चाचू
0: कने शनो ताई जो दिया अनुमति
1: अच्छा जी जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी आकाशवाणी का। ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:42 हुए हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में चलाए जा रहे कैच द रेन अभियान में बढ़ती जन भागीदारी पर जताई प्रसन्नता। मुख्यमंत्री का प्राथमिक शिक्षकों को आश्वासन, नई कॉम्प्लेक्स प्रणाली पर जल्द लिया जाएगा उचित निर्णय। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर का आरोप, भर्ती अनियमितताओं, पेपर लीक और भ्रष्टाचार पर कांग्रेस सरकार हुई बेनकाब। कारगिल विजय दिवस के मौके पर प्रदेश भर में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि और चंबा का 8 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में चलाए जा रहे कैच द रेन अभियान में बढ़ती जन भागीदारी पर प्रसन्नता जताई है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान 4 जुलाई से चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कारगिल विजय दिवस पर वीर सैनिकों को भी याद किया। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कैच द रेन अभियान के उत्साहवर्धक परिणाम सामने आए हैं। इसके तहत पुराने तालाबों से गाद हटाने सहित कुओं और बावड़ियों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है।
2: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी की है।
1: प्रधानमंत्री ने आगामी त्योहारों में लोगों से खादी से बना कम से कम एक उत्पाद खरीदने की अपील दोहराई।
2: खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में

0: इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें।
1: हर घर तिरंगा अभियान का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अभियान ने पूरे देश को एकजुट किया है।
0: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को भी नमन किया।
0: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लास्टिक प्रदूषण पर चिंता जताई और कहा कि एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का कचरा प्रकृति के लिए नुकसानदेह बना हुआ है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
2: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्राथमिक शिक्षकों को शिक्षक दिवस से पहले नई कॉम्प्लेक्स प्रणाली पर उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। शिमला में आज प्राथमिक शिक्षक संघ की आम सभा में उन्होंने कहा कि सरकार इस व्यवस्था की समीक्षा कर ये तय करेगी कि इसमें सुधार की आवश्यकता है या इसे पूरी तरह वापस लिया जाए। मुख्यमंत्री ने ये भी ऐलान किया कि प्राथमिक शिक्षकों के विरुद्ध की गई निलंबन की कार्रवाइयों, विभागीय जांचों और दर्ज FIR को वापस लिया जाएगा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में भर्ती अनियमितताओं, पेपर लीक और भ्रष्टाचार पर राज्य सरकार पूरी तरह बेनकाब हुई है। उन्होंने कहा कि अनियमितताओं और पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों पर कांग्रेस सरकार की भूमिका पूरी तरह संदेह के घेरे में है। शिमला के जाखू में आज मन की बात कार्यक्रम सुनने और एक पेड़ माँ के नाम अभियान में भाग लेने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन मामलों में कार्रवाई करने की बजाय दोषियों को संरक्षण दे रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश का युवा पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया चाहता है, लेकिन सरकार इस दिशा में विफल साबित हुई है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। कारगिल विजय दिवस के मौके पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने चंबा में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मंडी जिला के टिहरा में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में स्वास्थ्य व सैनिक कल्याण मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि सरकार वीर जवानों, उनके आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा रोजगार में पूर्व सैनिकों के लिए 15% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इधर शिमला स्थित सेना प्रशिक्षण कमान मुख्यालय में भी वीर जवानों के शौर्य को नमन किया गया। हमीरपुर में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि शहीद सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान की गाथाओं को हमेशा याद रखा जाएगा। एक बयान में सांसद अनुराग ठाकुर ने कारगिल में भारतीय सेना की विजय को देश की विरासत करार दिया। सांसद सुरेश कश्यप ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर नाहन में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि ऊना जिला के हरोली क्षेत्र को दिसंबर 2027 तक 100% पेयजल व सिंचाई सुविधा संपन्न बनाने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। गोंदपुर बुल्ला में आज जन सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक गांव और प्रत्येक व्यक्ति तक योजनाओं का समान लाभ पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। अग्निहोत्री ने भरोसा दिलाया कि जनहित से जुड़े प्रत्येक मामले का पूरी संवेदनशीलता के साथ समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। चंबा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला आज से शुरू हो गया है। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने इस 8 दिवसीय मेले का शुभारंभ करते हुए कहा कि ये उत्सव प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, सांप्रदायिक सौहार्द और जीवंत लोक परंपराओं का प्रतीक है। उन्होंने युवाओं से अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहने और भारत की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने का आह्वान किया। नशे की बढ़ती समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने समाज से नशे के खिलाफ जन

0: जागरूकता अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। लाहौल स्पीति के काजा में प्रस्तावित हाई एल्टीट्यूड आइस हॉकी स्टेडियम को विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हुई है। आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ लाहौल एंड स्पीति ने परियोजना को लेकर सरकार को कई महत्वपूर्ण सुझाव सौंपे हैं। अधिक ब्यौरे के साथ ये रिपोर्ट।
1: एसोसिएशन ने सुझाव दिया है कि स्टेडियम के डीपीआर का विशेषज्ञ संस्था से तकनीकी सत्यापन कराया जाए। इसके साथ ही सौर ऊर्जा, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली और हाइब्रिड पावर सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीकों को शामिल किया जाए ताकि स्टेडियम का संचालन लंबे समय तक टिकाऊ और किफायती बना रहे। एसोसिएशन ने परियोजना के लिए अलग अलग संचालन, वित्त प्रबंधन और तकनीकी निगरानी समितियों के गठन तथा निर्माण शुरू होने से पहले सभी हितधारकों की बैठक आयोजित करने का भी प्रस्ताव रखा है। एसोसिएशन का मानना है कि यदि इन सुझावों को प्रारंभिक चरण में ही लागू किया गया तो काजा का यह स्टेडियम भविष्य में हिमाचल देश ही नहीं बल्कि पूरे देश के शीतकालीन खेलों के लिए एक विश्व स्तरीय केंद्र के रूप में नई पहचान बनाएगा। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: आकाशवाणी हमीरपुर के नैमित्तिक वरिष्ठ उद्घोषक संजय शर्मा को पहाड़ी भाषा विकास संगम संस्था पालमपुर ने शिखर सम्मान 2026 से सम्मानित किया है। उन्हें यह सम्मान पहाड़ी बोली व लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार व उत्थान में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। संजय शर्मा ने इस उपलब्धि का श्रेय आकाशवाणी को दिया है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि सरकार खेल संस्कृति व खेल अधोसंरचना को बढ़ावा दे रही है। घुमारवीं में आज कबड्डी ओपन टूर्नामेंट के शुभारंभ पर उन्होंने कहा कि खेलों के माध्यम से बच्चों और युवाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। धर्माणी ने बताया कि खेल अधोसंरचना को मजबूत बनाने के लिए घुमारू में करीब 25 करोड़ रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम बनाया जा रहा है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। राजधानी शिमला सहित अन्य स्थानों पर बीती रात वर्षा हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बिलासपुर, मंडी, सोलन और सिरमौर जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में चलाए जा रहे कैच द रेन अभियान में बढ़ती जन भागीदारी पर जताई प्रसन्नता। मुख्यमंत्री का प्राथमिक शिक्षकों को आश्वासन, नई कॉम्प्लेक्स प्रणाली पर जल्द लिया जाएगा उचित निर्णय। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर का आरोप, भर्ती अनियमितताओं, पेपर लीक और भ्रष्टाचार पर कांग्रेस सरकार हुई बेनकाब। कारगिल विजय दिवस के मौके पर प्रदेश भर में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि और चंबा का 8 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला शुरू। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
3: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
2: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
3: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: प्रादेशिक समाचार अभी आप आकाशवाणी के शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज, डीटीएच तथा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। अब रोजगार समाचार सुनिए। कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी निचार स्थित भावानगर जिला किन्नौर हिमाचल प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 3 पद तथा सहायिकाओं के 3 पद भरने हेतु साक्षात्कार दिनांक 24 अगस्त 2026 को कार्यालय उपमंडलाधिकारी निचार स्थित भावानगर में प्रातः 11 बजे आयोजित किए जाना सुनिश्चित किया गया है। इच्छुक महिला उम्मीदवारों से सादे कागज पर आवेदन, पूर्ण वांछित सत्यापित दस्तावेजों सहित आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन बाल विकास परियोजना अधिकारी निचार स्थित भावानगर के कार्यालय में दिनांक 18 अगस्त 2026 तक साय 5 बजे तक जमा

0: करवाए जा सकते हैं। इन पदों को भरने हेतु आवश्यक शर्तें इस प्रकार से हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिका हेतु आवेदक ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान से 10.2 या समकक्ष उत्तीर्ण की होनी चाहिए। उच्च शिक्षा प्राप्त उम्मीदवारों को नियमानुसार अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे। आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा आय प्रमाण पत्र तहसीलदार, नायब तहसीलदार अथवा कार्यकारी मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी होना चाहिए। यद्यपि आंगनवाड़ी सहायिका यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद के लिए आवेदन करती है तो सहायिका का मानदेय वार्षिक आय में नहीं जोड़ा जाएगा। आवेदक उसी आंगनवाड़ी केंद्र के लाभान्वित पोषक क्षेत्र अर्थात फीडर एरिया की सामान्य निवासी होनी चाहिए तथा संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र के सर्वेक्षण रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि होनी चाहिए। इस संदर्भ बारे संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र से संपर्क करें तथा इस आशय का प्रमाण पत्र संबंधित कार्यकर्ता से प्राप्त कर आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त सचिव ग्राम पंचायत द्वारा जारी सामान्य निवासी होने का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। चयन उपरांत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व आंगनवाड़ी सहायिका को एक निश्चित मानदेय पर कार्य करना होगा जो कि सरकार द्वारा समय समय पर केंद्र व राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार दिया जाता है। वर्तमान में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 10,500 रुपये मासिक, आंगनवाड़ी सहायिका के लिए 5,800 रुपये मासिक दिया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि आपको एक बार फिर बता दें, 18 अगस्त सन 2026 आवेदन करने की अंतिम तिथि है और साक्षात्कार 24 अगस्त सन 2026 को कार्यालय उपमंडलाधिकारी निचार स्थित भावानगर में 11 बजे आयोजित किए जाएंगे। रोजगार समाचार समाप्त हुए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 8 बजे हैं और अब समय है विविध संगीत के कार्यक्रम सबरस का। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं पंकज उदास की आवाज में गाई इस गजल के साथ।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस, और कार्यक्रम में अब शामिल कर रहे हैं हरजीत हरमान की आवाज़ में गाया ये पंजाबी गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से कार्यक्रम हिमबीट्स रिले किया जाएगा, कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार श्रोताओं, आपका पसंदीदा कार्यक्रम हिम बीट्स लेकर हाजिर हूँ मैं उपमा ठाकुर। आज मैं कांगड़ा चाय की जानकारी से आपके जीवन में चाय की मिठास घोलूंगी। ऐसा कहा जाता है कि चाय भारत की रगों में दौड़ती है और हर भारतीय के दिन की शुरुआत एक गर्म चाय के कप से होती है। एक कप चाय हर पल हमारे साथ रहती है। चाय के इतिहास की बात करें तो मान्यता के अनुसार चाय की खोज चीन में कृषि और चिकित्सा के जनक सम्राट शेन नांग ने की थी। उन्होंने नए औषधीय पौधे की तलाश में पूरे देश की यात्रा की। एक दिन उन्होंने गर्म पानी में कुछ पत्तियां डाली और उन्हें एक अद्भुत खुशबू महसूस हुई। इस पेय पदार्थ को पीकर उन्हें तरोताजगी का एहसास हुआ और इस तरह जन्म हुआ चाय का। जहाँ तक कांगड़ा चाय के इतिहास का सवाल है तो इसकी शुरुआत सन 1849 से मानी जाती है। उस समय बॉटनिकल टी गार्डन के तत्कालीन अधीक्षक डॉक्टर जेमसन ने कांगड़ा क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी को चाय की खेती के लिए उपयुक्त पाया। समय के साथ साथ कांगड़ा

बदलावों से गुजरी। हिमाचल में मुख्य रूप से कांगड़ा, मंडी और सोलन जिलों में चाय के बागान हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में चाय के उत्पादन का एक समृद्ध इतिहास है। कांगड़ा को उत्तरी भारत की चाय की पूंजी के रूप में जाना जाता है। कांगड़ा चाय की खासियत है इसका हल्का स्वाद और सुगंध, जो इसे दार्जिलिंग चाय से अलग करती है। इस क्षेत्र की चाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता प्राप्त है और इसे GI टैग भी हासिल है, जो इसकी विशिष्टता और गुणवत्ता की गारंटी देता है। कांगड़ा चाय न केवल एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, बल्कि ये हिमाचल को एक विशिष्ट पहचान भी प्रदान करती है। साथियों, जंगल जीवन का आधार है, ये हमें प्राण वायु ऑक्सीजन देते हैं। जंगल केवल वृक्षों का विस्तार नहीं, ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है। वन हमें सह अस्तित्व की भावना का बोध करवाते हैं और जैविक भविष्य का निर्माण करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पर्यावरण संरक्षण को केंद्र में रखकर नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का कुल वैज्ञानिक वन क्षेत्र 37,948 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 68.16% है। हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमालय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो उत्तर भारत के लिए पारिस्थितिकी संतुलन, जल सुरक्षा और जलवायु संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रदेश सरकार ने राज्य में हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना को शुरू किया है, ताकि प्रदेश अपना हरित राज्य बनने का लक्ष्य पूर्ण कर सके। इस योजना का लक्ष्य स्थान विशिष्ट पौधरोपण के माध्यम से राज्य के हरित आवरण में वृद्धि करना और स्थानीय लोगों की सहभागिता वानिकी के कार्यों में सुनिश्चित कर 500 हेक्टेयर बंजर वन भूमि पर पौधरोपण करना है। साथियों, यहाँ हम रुकेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक के लिए।

0: साथियों, प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि और विकासात्मक गतिविधियों के विस्तार के कारण राज्य की वन संपदा पर जैविक दबाव लगातार बढ़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अवैध कटाई, अतिक्रमण और अन्य वन संबंधी अपराध होते हैं। इन अपराधों को रोकने के लिए सीसीटीवी आधारित इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है। इसके अतिरिक्त आधुनिक अग्निशमन उपकरण तथा उन्नत अग्नि प्रबंधन तकनीकों को भी लागू किया जा रहा है। जंगलों में आग की घटनाओं को रोकने तथा स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से राज्य में 2 बायोचार संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिनसे चीड़ की सूखी पत्तियों और अन्य बायोमास से बायोचार का उत्पादन किया जाएगा। प्रदेश सरकार की राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत महिला मंडलों, युवक मंडलों और स्वयं सहायता समूहों को 5 हेक्टेयर तक के क्षेत्र में पौधारोपण तथा संरक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन समूहों को पौधों के उच्च उत्तर जीविता दर के लिए वित्तीय सहायता के साथ साथ पुरस्कृत भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ सरकार की राजीव गांधी ग्रीन एडॉप्शन योजना सार्वजनिक निजी भागीदारी का उत्कृष्ट मॉडल प्रस्तुत कर रही है। प्रदेश के वानिकी कार्यों को वन मित्र विस्तार प्रदान कर रहे हैं।
1: हमने अभी कुछ टाइम पहले वहाँ पे वन विभाग की ओर से हमारे को काम दिया था, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत हमने काम किया है, जिसमें हमारे को लगभग 2,40,000 रुपया मिला है, जो कि हमने वहाँ पे काम किया है। उसमें हमने जो प्लांटेशन करी है वो हमने वहाँ पर लगभग 5 किस्म की जो वैरायटियां लगाई है, उसमें सारे औषधि पौधा लगा हुआ है और पौधे हमारे सारे कामयाब हुए हैं। इसमें अभी शिमला से जो उच्च अधिकारी है जिनके द्वारा हमें काम मिला है वो आए थे, उन्होंने वहाँ पे मौका किया है और उन्होंने उस काम की बहुत ज्यादा प्रशंसा की है कि बहुत अच्छा काम मिला, आगे आपको भी इसके लिए अभी दोबारा पैसा आएगा। लगभग हमारे 90% जो है पौधे कामयाब हुए हैं। और जो ये योजना लाई है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, इसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
2: राजीव गांधी वन संवर्धन योजना से वंदना महिला मंडल के ग्रामीण महिलाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत लाभ हुआ है। इससे हमें रोजगार घर द्वार में ही मिल रहा है। मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा लॉन्च की गई राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के अंतर्गत सुकेत वन मंडल सुंदरनगर की सरकाघाट रेंज के दुर्गापुर ब्लॉक के कालदू बिट में वन विभाग की टीमों ने पौधारोपण को लेकर सर्वे किया था, जिसमें हमने वर्ष 2025-26 में कालदू बिट में पौधारोपण क्षेत्र 2 में विभिन्न प्रकार के 1600 पौधे लगाए। इस योजना की शुरुआत करने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व वन विभाग का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।
3: हमारे वहाँ पर काम चला था जिसका नाम राजीव गांधी वन समर्थन योजना था और हमने भी उस काम में भाग लिया था। हमें भी इस योजना का लाभ मिला और यह हमारे घर के नजदीक था और यह बहुत सराहनीय कार्य किया सरकार ने। हम इस योजना के लिए सरकार का धन्यवाद करते हैं।
0: वन हमारी जीवन रेखा है और सरकार वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हिमाचल देश को प्रतिवर्ष लगभग 90,000 करोड़ रुपए की पारिस्थितिकी सेवाएं प्रदान करता है। इसके बदले हिमाचल को केंद्र सरकार से किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिल रहा। बढ़ते वैश्विक तापमान, बदलते मौसम और प्राकृतिक आपदाएं हमें स्पष्ट संदेश दे रही हैं कि पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। साथियों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण व हरित हिमाचल की संकल्पना को साकार करने के लिए वन क्षेत्र के विस्तारीकरण के विभिन्न कार्यक्रमों को नया स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में जंगली फलों वाले पौधे लगाने को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। सरकार के इस पहल से वन क्षेत्रों में जैव विविधता आएगी, जिससे बंदर व अन्य जंगली जानवरों को आबादी वाले क्षेत्रों में आने से रोका जा सकता है। बर्फ से ढके पहाड़, जैव विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के कारण हिमाचल इको टूरिज्म के लिए भी एक आदर्श स्थल है। इको टूरिज्म को बढ़ावा देकर सरकार स्थानीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर रही है। हरित भविष्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रदेश में ई वाहनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। शीघ्र ही हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में 297 नई बसें शामिल की जाएगी। इलेक्ट्रिकल बसों के संचालन और नए ई डिपो शुरू होने से प्रदेश में हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा तथा यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक परिवहन सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 6 ग्रीन कॉरिडोरों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त विश्राम गृहों और सरकारी कार्यालयों सहित विभिन्न स्थानों पर 310 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। साथियों, यहां हम रुकेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक के लिए।

साथियों, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य की प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध जैव विविधता की अपार संभावनाओं का लाभ उठाकर हिमाचल समग्र विकास के पथ पर अग्रसर है। साथियों, हिमबीट्स के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपके साथ साझा करेंगे नई जानकारी। तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हिमबीट्स अभी आप सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों द्वारा भी रिले किया जा रहा था। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं, कृपया हमारी अगली
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं देशभक्ति गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार संध्या और रात्रि 9 न्यूज एट 9 रिले किए जाएंगे।
1: भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता और ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक हासिल किया। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
3: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो।

0: इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कही। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री जोशी ने ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे मंत्रालय की कार्यप्रणाली, नीतियों और जारी कार्यक्रमों की व्यापक समझ के लिए बैठक कर रहे हैं।
2: आज सुबह चार्ज लिया हूँ, पूरा डिटेल्स हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया। मुझे विषय नया है और सीनियर ऑफिसर्स से मैंने डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूँ। बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूँ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा, निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
3: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कृतज्ञ राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि करगिल विजय दिवस पर देश अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन करता है। उन्होंने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प मजबूत करने का आग्रह किया। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने आज इम्फाल में करगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय

0: सशस्त्र बलों के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होलोबॉक्स का उद्घाटन किया गया। ये आगंतुकों को वाजपेयी जी के जीवन, नेतृत्व और विरासत का जीवंत अनुभव प्रदान करेगा। उद्घाटन समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य उपस्थित थे। वर्ष 1999 का करगिल युद्ध तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान हुआ था, इसलिए संग्रहालय करगिल विजय दिवस पर एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दोहराया कि पाकिस्तान के साथ वार्ता केवल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पर केंद्रित होगी, इसके अतिरिक्त कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। रक्षा मंत्री लद्दाख के द्रास में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।
1: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है, और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युवा केवल विकसित भारत की ताकत ही नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े लाभार्थी भी हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब युवाओं की ऊर्जा देश की चुनौतियों के समाधान में लगती है तो देश का भविष्य और उज्ज्वल होता है। आज सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों 400 से अधिक युवाओं ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है।
2: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले, बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है। और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डीडे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोमा बंजीगिलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं विशेष शुक्ला।
3: मीराबाई चानू ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले ऋषिकांत सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से क्लीन स्वीप करते हुए जीत ली है। हरारे में भारत के 193 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे 20 ओवर में 7 विकेट 157 रन ही बना सकी। अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व स्क्वैश जूनियर इंडिविजुअल चैंपियनशिप में महिलाओं का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई केंद्रीय मंत्री और बड़े खिलाड़ियों ने अनाहत सिंह को बधाई दी है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने और अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर भारतीय भारोत्तोलक ऋषिकांत सिंह चानम्बम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री चानम्बम के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट प्रदर्शन ने देश को अपार प्रसन्नता दी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का

0: मान व्यक्त किया है। उधर बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण कल से ओडिशा में मॉनसून सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के असर से कल से उड़ीसा में बड़े पैमाने पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक और केंदुझर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जैसे जैसे ये सिस्टम और मजबूत होगा, भारी बारिश का दायरा मयूरभंज और सुंदरगढ़ तक फैलने की उम्मीद है। एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने मयूरभंज और जगतसिंहपुर जिले में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, हायर सेकेंडरी संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया है। मछुआरों को अगली सूचना तक समुन्द्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi announces setting up of high-powered task force on examination reforms to be headed by technology expert Nandan Nilekani. New law to be introduced in Parliament tomorrow to deal with examination irregularities. Union Minister Prahlad Joshi assumes charge of Education Ministry. Nation salutes indomitable courage and supreme sacrifice of its soldiers on Kargil Vijay Divas. Prime Minister Modi urges citizens to honor Kargil war martyrs and strengthen the resolve to build secure, capable and self-reliant India. Defence Minister Rajnath Singh reiterates no talks with Islamabad other than that for return of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. In weightlifting, India's Mirabai Chanu wins gold in the women's 48-kilogram event and Rishikant Singh Chanambang bags silver in the men's 60-kilogram category at Commonwealth Games. And in men's cricket, India beat Zimbabwe by 35 runs in the third T20 match to win the series 3-0 in Harare. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB director Tapan Deka, former ISRO chairman S. Somanath, IIT Chennai director V. Kamakoti, besides former education secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The Prime Minister added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament tomorrow with stringent provisions to deal with examination-related irregularities. Mr. Modi reaffirmed the government's commitment to protecting the integrity of competitive examinations and safeguarding the future of millions of students.
3: हम कल पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
2: Union Minister

श्रोताओं, राजकुमार संतोषी एक भारतीय फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता हैं जो हिंदी सिनेमा में काम करते हैं। 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 6 फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता। उन्होंने एक्शन ड्रामा फिल्म घायल से निर्देशन की शुरुआत की थी।

श्रोताओं, एक ही निर्माता निर्देशक के क्रम में आज आप सुन रहे हैं राजकुमार संतोषी की फिल्मों के गीत। श्रोताओं, उन्होंने शुरुआत की फिल्म घायल से, जिसमें सनी देओल और मीनाक्षी शोषाद्री और ओम पुरी अमरीश पुरी ने अभिनय किया था। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और समीक्षकों द्वारा सराही भी गई, जिससे संतोषी फिल्म जगत में घर घर में पहचाने जाने लगे। इस फिल्म ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए उनका पहला फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिलाया। संतोषी की अगली फिल्म विश्व स्तर पर प्रशंसित सामाजिक नाटक दामिनी, जिसमें एक बार फिर देओल, शुशाद्री और पुरी ने अभिनय किया था, एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसे संतोषी द्वारा निर्मित सर्वश्रेष्ठ फिल्म माना जाता है, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पटकथा का फिल्म फेयर पुरस्कार लगातार दूसरा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। इसी दौरान संतोषी को आमिर खान और सलमान खान अभिनीत कॉमेडी फिल्म अंदाज अपना अपना के निर्देशन के लिए भी प्रशंसा मिली, जो बॉक्स ऑफिस पर आंशिक रूप से सफल होने के बावजूद वर्षों में एक कल्ट फिल्म बन गई। बाद में उन्होंने सफल एक्शन रोमांस फिल्म बरसात का निर्देशन किया, जिसमें बॉबी देओल और ट्विंकल खन्ना ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। उनकी अगली एक्शन ड्रामा फिल्म घातक भी व्यावसायिक रूप से ब्लॉकबस्टर और समीक्षकों द्वारा सराही गई। अंदाज अपना अपना और घातक दोनों फिल्मों के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था।

0: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
0: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
1: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
0: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available.
0: Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: Nexa.
3: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं एक ही निर्माता निर्देशक के क्रम में निर्माता निर्देशक राजकुमार संतोषी की फिल्मों के गीत, और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

0: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
0: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
1: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
0: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available.
0: Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: अभी आप सुन रहे थे एक ही निर्माता निर्देशक के क्रम में निर्माता निर्देशक राजकुमार संतोषी की फिल्मों के गीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9:30 हो चुके हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीतों की महफिल। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं फिल्म प्यासा सावन के इस गीत के साथ, जिसे गाए हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर ने।

श्रोताओ, अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को फिल्म शागिर्द में। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कस्मे वादे से, गायक कलाकार आशा भोंसले।

गीतों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत। श्रोताओं, ये फिल्म है चरस और गायक

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों की महफिल, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 10 बजने को है कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से रविवासरीय संगीत सभा रिले की जाएगी।
1: आज के इस गरिमामय समारोह में हम भारत की प्रथम महिला संतूर वादिका विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल जी, जो कि सूफियाना घराने की एकमात्र ऐसी भारतीय महिला कलाकार हैं जिन्हें संतूर वादन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है, का संतूर वादन प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
2: नमस्कार। इन टुडेज प्रेस्टिजियस प्रोग्राम ऑफ द अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा, we are going to present a santur recital by India's first female santur maestro, Vidushi Dr. Varsha Agrawal, who is the only Indian female artist of the Sufiana Gharana to achieve international acclaim in santur playing.
1: Dr. Varsha ji ne gayan aur tabla ki shiksha matr 6 varsh ki aayu mein prarambh ki thi aur aage chalkar prakhyat tabla vadak Pandit Lalit Mahant ji se sangeet ka gahan margdarshan prapt kiya. आप प्रख्यात संतूर वादक पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी जी की गंडाबद्ध शिष्या है। आप आकाशवाणी और दूरदर्शन की टॉप ग्रेड कलाकार होने के साथ साथ विदेश मंत्रालय द्वारा विदेशों में संतूर वादन हेतु आमंत्रित की जाने वाली देश की पहली महिला संतूर वादिका का गौरव भी रखती है।
2: डॉक्टर वर्षा जी बिगेन हर ट्रेनिंग इन वोकल म्यूजिक एंड तबला एट द मेयर एज ऑफ 6 and later received profound musical guidance from the renowned tabla player Pandit Lalit Mahant ji. She is a Gandaband disciple of the eminent santur maestro Padma Shri Pandit Bhajan Sopori ji. Along with being a top grade artist of All India Radio and Doordarshan, she also holds the proud distinction of being the first female santur player of the country to be invited by the Ministry of External Affairs for santur concerts abroad.
1: वर्तमान में शासकीय कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्ट महाविद्यालय उज्जैन में संगीत प्राध्यापिका के रूप में सेवारत डॉक्टर वर्षा जी को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा फर्स्ट लेडी अवार्ड, मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित शिखर सम्मान सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है।
2: करंटली सर्विंग एज अ प्रोफेसर ऑफ म्यूजिक एट द गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज ऑफ एक्सीलेंसी उज्जैन, Dr. Varsha ji has been honored with several national and international accolades, including the First Lady Award by the Honorable President of India and MP Government Shikhar Samman also.
1: Vidushi Varsha Agrawal, भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत का एक ऐसा ही प्रतिष्ठित नाम है। संतूर के शततंत्री तारों पर उनकी उंगलियां जब थिरकती है तो श्रोता भाव विभोर हो उठते हैं। अपनी अनवरत साधना, लयकारी पर अद्भुत पकड़ और प्रतिष्ठित मंचों पर दी गई अपनी सुमधुर प्रस्तुतियों के माध्यम से उन्होंने संतूर वादन के क्षेत्र में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है।
2: विदुषी वर्षा अग्रवाल इज वन सच एमिनेंट नेम इन द वर्ल्ड ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। व्हेन हर फिंगर्स डांस ऑन द 100 स्ट्रिंग्स ऑफ संतूर, द लिसनर्स आर लेफ्ट स्पेलबाउंड। थ्रू हर रिलेंटलेस डेडिकेशन, रिमार्केबल कमांड ओवर रिदम एंड मेलोडियस परफॉर्मेंसेस ऑन प्रेस्टिजियस स्टेजेस, she has left an indelible mark in the field of santur playing.
1: Vidushi Dr. Varsha Agrawal apne santur vadan ki shuruaat raag jhinjhoti se kar rahi hain. Isme ve aalap, jod aur jhala ki pashchat vilambit gat jo trital mein hai, madhya gat

0: तालमे और द्रुतगत तीन तालमे प्रस्तुत करेंगी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित हितेंद्र दीक्षित।
1: विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल इज बिगनिंग हर संतूर रेसाइटल विद राग झिंझोटी। इन दिस आफ्टर द आलाप जोड़ एंड झाला शी विल प्रेजेंट अ विलंबित गत इन तीन ताल, अ मध्य गत इन एक ताल एंड अ द्रुत गत इन तीन ताल। अकंपनिंग हर ऑन द तबला इज पंडित हितेंद्र दीक्षित।

सागर झंझोटी में अभी आपने सुना विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल का संतूर वादन। विदुषी वर्षा अग्रवाल अब प्रस्तुत करने जा रही है राग किरवानी। इसमें वे आलाप के पश्चात मध्य

0: रूपक ताल में और द्रुतगत तीन ताल में प्रस्तुत करेंगी।
1: यू जस्ट लिसन टू द संतूर रेसाइटल इन राग झिंझोटी बाय विदुषी वर्षा अग्रवाल। विदुषी वर्षा अग्रवाल इज नाउ गोइंग टू प्रेजेंट राग किरवानी। इन दिस आफ्टर द आलाप शी विल प्रेजेंट अ मध्यगत इन रूपक ताल एंड अ ध्रुतगत इन तीन ताल।

0: ये था विदुषी वर्षा अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत राग किरवानी। विदुषी वर्षा अग्रवाल अपने कार्यक्रम का समापन एक मिश्र राग आधारित मधुर धुन से कर रही हैं।
1: दैट वॉज राग किरवानी प्रेजेंटेड बाय विदुषी वर्षा अग्रवाल। विदुषी वर्षा अग्रवाल इज कंक्लूडिंग हर परफॉर्मेंस विद अ मेलोडियस धुन बेस्ड ऑन अ मिश्र राग।

0: विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत ये थी मिश्र राग पर आधारित मधुर धुन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित हितेंद्र दीक्षित। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा संपन्न होती है।
1: That was a melodious धुन based on a मिश्र राग presented by विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल। Accompanying her on the tabla was Pandit Hitendra Dikshit. This program was presentation by All India Radio, Indore. With this, today's Akhil Bharatiya Ravivasariya Sangeet Sabha concludes.

0: का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि की 11 बजने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
2: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कही। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों में कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण नौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मीराबाई चानू सेखोम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसमें 85 किलो स्नैच और 105 किलो क्लीन एंड जर्क वजन शामिल हैं। इससे पहले श्रीकांत सिंह चानमम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। इसमें 121 किलो स्नैच में और क्लीन एंड जर्क में 143 किलोग्राम वजन शामिल हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय भारोत्तोलक मीरा

0: Zimbabwe by 35 runs in the third and final T20 international to clean sweep the series 3-0 in Harare. Chasing a target of 193 runs set by India, Zimbabwe managed to score 157 for 7 in their allotted 20 overs. Early opting to bat, India posted 192 for the loss of 5 wickets in their allotted 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर अपनी पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।